भोर सुहानी आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। जिंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उम्मीद के रास्ते हमेशा कई होते हैं। अंधेरा कभी रोशनी को रोक ही नहीं पाया, ना रोक सकता है। बस खुद पर विश्वास होना चाहिए और खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि आपकी मेहनत ही एक दिन आपका सितारा बनकर चमकेगी।

हर सपना किसी खास पल और जगह से शुरू होता है। सपनों का इंतजार मत करो, जहां हो वहीं से शुरुआत करो। अपने सफर पर भरोसा रखो, क्योंकि मेहनत और उम्मीद आपको वहीं ले जाती है जहां सपने सच होते हैं। कभी कभी वही जगह जहां आप आज खड़े हैं, कल आपकी सबसे बड़ी सफलता की कहानी बन जाती है।

धीरे धीरे समय हमें अपने अंजाम की तरफ ले ही आया है। जी हाँ, चलते चलते आपको छोड़े जा रहे हैं एक गीत के साथ जिसे गाया है जावेद अली और कैलाश खेर ने। फिल्म है दिल्ली 6। और इसी के साथ सुरभि आपसे चाहती है अनुमति भोर सुहानी को संपन्न करने की। हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून 2026 सुबह के 5:53 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

चलिए अब जान लेते हैं कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 6:05 पर अंग्रेजी समाचार सुन पाएंगे। 6:10 पर समय है कार्यक्रम अर्पण का।

7:30 पर आज सवेरे कार्यक्रम आप सुनेंगे। 8:45 का वक्त होगा म्यूजिकल दिल लगी प्रोग्राम का। दस बजकर तीस मिनट पर आप सुन पाएंगे दिल का मेल बॉक्स। ग्यारह बजकर दस मिनट पर तस्वीर में आज आप कर्नाटक के गोकर्ण का की यात्रा कर पाएंगे और तस्वीर सुनेंगे। 12:10 पर आकाशवाणी एफएम गोल्ड महिलाओं और परिवार का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। 1:10 का समय है कलाकार बेमिसाल का और 2:15 पर दोपहर समाचार आप सुनेंगे। 3:10 पर मन भावन। 4:30 का समय है परिक्रमा का और 5:10 पर गाते गुनगुनाते। 6:10 का समय है सदाबहार गीत कार्यक्रम का। 8:10 पर मधुरिमा सुन पाएंगे और 9:45 का समय है कार्यक्रम मंथन का। 10:30 पर आप सुनेंगे हर सिंगार। 11:45 पर गीत मेरे मन में। 6:00 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 6:00 वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख

0: अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। तीन दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग चार महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य दो पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries, and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with the Prime Minister of Canada, Mark Carney, Prime Minister of United

ये मंगल की प्रभात है, मंगल की मुक्ता के साथ है। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर ये समय है अर्पण का। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री हनुमान को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। कहते हैं वे आज भी इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं और अपने भक्त की पुकार सुनकर जीवन में सकारात्मक बदलाव ले आते हैं। तो आइए अर्पण की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करते हैं श्री हनुमान वंदन।

जीने की कला यही है कि हम क्या चुने और क्या न चुने। संत कहते हैं कि उसे चुनो जो तुम्हें तुम्हारे करीब ले आता है, और उससे बचो जो तुम्हें तुम्ही से दूर ले जाता है।

देख फरीदा जो थया दाढ़ी हुई भूर, आगे नेड़ा आए पीछे रया दूर। संत फरीद कहते हैं कि बाल

अब सफेद होने लगे हैं। जवानी से दूर और बुढ़ापे की ओर कदम तो बढ़ाने ही हैं। इस संसार में रहकर भी जिसे वैराग्य और नश्वरता के प्रति चेतनता है, वो मानव कभी भी उदास नहीं होगा, क्योंकि वो सत्य को जानता है।

0: 6:29 और ठीक 46 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हैं। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण। जुड़े रहिए आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल के साथ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: कबीरा हरि के नाम बिन झूठे सकल प्रपंच, ईश्वर के नाम और सच्ची भक्ति के बिना संसार की हर वस्तु मिथ्या है। सच्चा ज्ञान ही सच्चे आनंद के द्वार खोल सकता है। इसीलिए तो हम कहते हैं, करते रहिए अर्पण मुक्ता के साथ।

परमात्मा का नाम जिसकी जुबान पर है, परमात्मा के होने का एहसास जिसे हर क्षण है, उस इंसान के भटकने का कहीं कोई बात रही नहीं जाती। वो इंसान हर घटना में, हर क्षण में, हर बात में ये मानता है कि इसमें परमात्मा का वास है, और जहां परमात्मा का वास है वहां कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। इसे विश्वास की ताकत कहा जाता है। संत कहते हैं कि विश्वास जब दृढ़ हो जाता है तब चमत्कार अपने आप होने शुरू हो जाते हैं।

6:44 और ठीक 33 सेकंड हो चले हैं। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर अब समय है श्री रामचरितमानस के पाठ का। आइए मिलकर श्रवण करें।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित सहस्रों राजाओं से भी जब शिव का धनुष टस से मस ना हुआ तो ऐसा लगा कि जनक जी की मनोहरिणी कन्या का वरण करने वाले की ब्रह्मा ने सृष्टि ही नहीं की। प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, अतः क्या करूं, कन्या कुमारी ही रहे। राजा जनक का नैराश्यपूर्ण ये कथन सुनकर लक्ष्मण को क्रोध हो आया। जहां एक भी रघुवंशी होता है वहां कोई भी ऐसे वचन नहीं बोलता जैसे अनुचित वचन जनक जी ने कहे हैं। श्री राम के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके प्रताप के बल से मैं धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना कर पाया तो फिर कभी धनुष और तर्कस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण के क्रोध भरे वचन सुनकर पृथ्वी डगमगा उठी, दिक्पाल कांप उठे, किंतु सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और राजा जनक सकुचा गए। श्री राम ने अनुज को शांत होने का संकेत करके अपने पास बिठा लिया। तब मुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रेम सनी वाणी में कहा, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़कर जनक जी का संताप मिटाओ।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तन्त्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्तवार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानाम् उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
1: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, इससे

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त

0: संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो कार्डो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दामुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल है। आइए अब सुनते हैं योग पर आधारित हमारी विशेष श्रृंखला। आज का आसन है वृक्षासन।
1: आप सभी को सादर प्रणाम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखन, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग अभ्यास बताऊंगी जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। केवल बच्चों के लिए ही नहीं, परंतु हर वर्ग के लोगों के लिए यह आसन जरूरी है। आज हम करेंगे वृक्षासन। वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था में हमारा शरीर एक पेड़ का आकार ले लेता है।

0: यानी बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। इसीलिए इस आसन को वृक्षासन कहते हैं। आजकल लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है, यानी किसी भी कार्य में ध्यान ना लगना। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी काम लगन से तो करना चाहते हैं, पर लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की कमी से उस कार्य को परिपूर्ण रूप से नहीं कर पाते और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी हमें आगे फेस करना पड़ता है। वृक्ष आसन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी भी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों और दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस ले आएं। शरीर को शिथिल करें और इसी आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से भी दोहराएं। दोस्तों, यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। यदि आप इस आसन को 3 से 4 बार एक सेशन में दोहराते हैं तो यह धीरे धीरे आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है और शरीर को संतुलित बनाता है, सहनशीलता और जागरूकता भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वृक्ष आसन का अभ्यास कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, यदि आपको कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या मोटापा बहुत ज्यादा है, चक्कर आते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ना करें। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे योग पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आज का आसन।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सात 7:15 और ठीक 55 सेकंड। जनाब, अगर सब कुछ मन का चाहा मिलने लगे तो फिर क्या ख्वाब और क्या जिंदगी। खुशी की कीमत तभी तो है जब दुख देखा हो। जी हाँ, हर वक्त का शुक्रिया करते हुए करते हैं गोल्ड सुप्रभात मंगल की मुक्ता के साथ।

0: प्रकृति है अपने सबसे खूबसूरत रूप पर सुबह के इस वक्त, और अगर बादलों और सूरज का ये खेल आप देखना चाहते हैं तो अपनी खिड़की से बाहर तो झांकिए, अपनी बालकनी तक तो आइए। आज का मौसम कैसा रहने वाला है, दिन कैसा होगा, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।
1: जानते हैं कुवैत जैसे देश की GDP से

0: करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है, वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सात बजकर 23 मिनट और ठीक 24 सेकेंड और ठीक 2 घंटे पहले हुआ था सूर्योदय, यानी सूर्योदय का समय था आज 5 बजकर 23 मिनट का और सूर्यास्त होगा 7 बजकर 20 मिनट पर। फिलहाल जब मैं स्टूडियो की खिड़की से बाहर देखती हूँ, 1 मिनट पहले देखा तो ऐसे लगा अरे बारिश होने वाली है, फिर 1 मिनट के बाद देखा तो अरे धूप आ गई है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है। हालांकि मौसम विभाग तो कह रहा है कि आज सारा दिन सनी डे है, यानी धूप खिली रहेगी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ये बादल आने देंगे सूरज को सामने। और ये जो मौसम है इस वक्त, भले ही कुछ देर के लिए है, इसका आनंद जरूर लीजिए। तापमान भी ठीक रहने वाला है आज। आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। और इन सबके बीच में अगर हम दिल्ली की वायु की गुणवत्ता की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें, तो वो दिखा रहा है तकरीबन 130, यानी 100 से 150 के बीच में खराब की श्रेणी होती है। 130 है, मैनेजेबल है, आप इस मौसम को छोड़िएगा मत। और इस मौसम का डबल लुत्फ अगर आपको उठाना है तो योग जरूर कीजिए और ऐसे बादलों के साथ, ऐसी हवा के साथ खुद से मिल जाइए, क्योंकि जिंदगी एक सफर है सुहाना।

वैसे देखा जाए तो अनिश्चितता में आनंद तो होता है, अगर पता हो कि ये होना ही है तो मजा क्या आएगा। एक अनिश्चितता बनी रहनी चाहिए और एक एक्साइटमेंट जो है उसे पॉजिटिविटी लेना चाहिए जीवन में। अपने कर्म करते रहिए, कोशिश करते रहिए और उसके बाद जो नतीजा आएगा वो छोड़ दीजिए हालात के ऊपर और उसे स्वीकार करने का जज्बा भी बना कर रखिए। गोल्ड सुप्रभा सुन रहे थे अभी आप, और अब समय हो चला है समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का। मुक्ता को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आदाब और सुप्रभात। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुबह की ताजगी से भरा आपका अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे। आधे घंटे के सफर में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सुर्खियां, मौसम का हाल, इतिहास के झरोखे और वह तमाम जानकारी जिनसे सीधा है आपका सरोकार। हमेशा की तरह कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे प्रमुख हस्तियों की और आज हम रूबरू होंगे इतिहास के कुछ महानायकों और कला जगत के बड़े फनकारों से। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज सवेरे का यह सुरीला और ज्ञानवर्धक सफर। कार्यक्रम आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जया भारती, अपनी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन के साथ। गुड मॉर्निंग सुभद्रा।
1: गुड मॉर्निंग जया। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस टुडे। दिस इज 16th ऑफ जून फॉर अनदर इंटरेस्टिंग एडिशन ऑफ आवर मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। So, Jaya, let it all begin with some news headlines.
0: बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष

0: इस सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की यह 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: Earlier yesterday, India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas, including

0: Bharat Youth Parliament is a movement that channels the energy, ideas and aspirations of India's youth into the national conversation. In the FIFA World Cup 2026, tiny Cape Verde makings its historic first appearance at the World Cup, produced an extraordinary performance to secure a 0-0 draw with global heavyweight Spain. Cape Verde's 40-year-old goalkeeper, Wasinha, delivered a heroic performance as his side held Spain to a 0-0 draw. Cape Verde have produced the biggest shock of the tournament so far. Earlier, Belgium and Egypt also drew 1-1 in their Group G opening match at Seattle Stadium.
1: अब चलते हैं प्रमुख महानगरों की ओर और जानते हैं वहां का हाल। तो सबसे पहले शुरुआत चेन्नई से करें सुभद्रा।
0: यस जया, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय अनाउंस द एक्सपेंशन ऑफ द फ्री breakfast scheme for students up to class 8 in government and government-aided schools. The expanded program would be launched on 17th of September. The latest phase of expansion extends the nutritional support to middle school students as well. While close to 20 lakh students are served breakfast daily under the existing scheme, an additional 15 lakh students are expected to benefit after the expansion. We have another news from Chennai. The Chief Economic Advisor V. Anantha Nageshwaran said India must continue to grow faster in an environment when the US and Iran make a peace deal. In his virtual address at an event in Chennai, he said that the Strait of Hormuz, a key checkpoint, can raise energy costs, fertilizer prices and disrupt free trade. He described the deal as welcome for an oil importing, natural gas importing and fertilizer importing country.
1: और अब समय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का। दिल्ली सरकार ने यमुना तट स्वच्छता अभियान 2026 के अंतर्गत कल राष्ट्रीय राजधानी के 28 प्रमुख घाटों पर विशाल सफाई अभियान चलाया। इस जन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मां यमुना को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाना था। अभियान में 15,000 से अधिक नागरिकों, स्वयंसेवकों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न सरकारी विभागों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभियान के दौरान 116 से अधिक मीट्रिक टन कचरे को एकत्रित कर वैज्ञानिक तरीके से इसका निस्तारित किया गया। दिल्ली से एक और खबर है हमारे पास कि राजधानी में जल्द ही एक पेड़ मां के नाम दिल्ली मेगा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में इस अभियान की तैयारियों को लेकर आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि अभियान का पहला चरण इस महीने की 22 तारीख को डिजिटल शुभारंभ के रूप में आयोजित किया जाएगा।
0: Getting to Bengaluru now, the Karnataka Power Transmission Corporation Limited has launched a pilot project to modernize the power transmission network in the state, as part of which it has implemented dynamic line rating technology on the 220-kilowatt Puttanahalli Sahakarnagar transmission corridor in Bengaluru. This initiative will enhance transmission capacity by up to 25% without constructing new towers or acquiring additional land. The dynamic line rating or DLR system will replace the conventional static line rating or SLR. These sensors continuously monitor ambient temperature, wind speed, solar radiation, and conductor sag. Monitoring these critical parameters will assist grid operators to dynamically assess and optimize transmission line capacity based on actual weather conditions.
1: और अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 जून से 10 जुलाई तक चलेगा। व्यापार सलाहकार समिति की बैठक में कल इन तिथियों को अंतिम रूप दिया गया। राज्य सरकार 3 सप्ताह के इस सत्र में महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। वहीं विपक्ष कृषि ऋण माफी के मुद्दे पर सरकार को निशाना बना सकता है। आरबीआई ने विभिन्न क्षेत्रों में युवा पेशेवरों के रूप में नियुक्ति के लिए भी आमंत्रित किए हैं। तो ये भी खबर है मुंबई से कि मुंबई स्थित अपने विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों और विभागों में युवा पेशेवरों यानी कि यंग प्रोफेशनल्स के रूप में नियुक्ति के लिए आरबीआई ने योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार इस नियुक्ति का उद्देश्य युवा पेशेवरों को रिजर्व बैंक के कामकाज का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना और अल्प से मध्यम अवधि के नीतिगत कार्यों से जुड़ने का अवसर देना है। विस्तृत विज्ञापन आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और आवेदन की अंतिम तिथि 6 जुलाई

0: 2026 है।
1: Hyderabad News Now, Jaya. The Women and Child Welfare Development of Telangana has signed a Memorandum of Understanding, MOU, with the voluntary organization Taruni to curb child marriages and minor pregnancies across the state. The agreement was formalized at the Secretariat in the presence of Minister Dhanasari Anusuya, also known as Sita Akka. Minister Sita Akka emphasized that child marriages is not just a family issue but a social concern that affects girls' education, health and financial independence. The state has been running campaigns under the slogan Child Marriage, End of Childhood, which will now be expanded through social media and village-level awareness drives. The collaboration with Taruni, which has been working for 2 decades on girls' empowerment and the prevention of human trafficking, aims to strengthen government efforts. Special training will be provided to Anganwadi workers, supervisors, CPDOs and field staff. Jaya?
0: और अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, जहां राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी विभागों को विशेष निर्देश जारी किए हैं कि वे 21 जून को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। सभी विभागों के प्रमुखों को कार्यक्रम में कम से कम 15 प्रतिनिधि भेजने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त विभागों को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा और उनका नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और ईमेल पता स्वास्थ्य विभाग के साथ साझा करना होगा। सभी सरकारी विभागों को आयुष मंत्रालय के योग संगम पोर्टल पर पंजीकरण करने का भी निर्देश दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रतिभागियों के विवरण, कार्यक्रम स्थलों, तस्वीरों और विभिन्न योग दिवस कार्यक्रमों से संबंधित प्रतिक्रियाओं को अपलोड करने के लिए किया जाएगा और प्रतिभागियों को कार्यक्रम पूरा होने पर प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। 21 जून को कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता से भी बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लेने का आग्रह किया गया है। तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर जया और सुभद्रा के साथ। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। तो सुभद्रा, अभी मौसम सुहावना बना हुआ है अगर हम देखें तो, और अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है और शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो आज दोपहर या शाम के समय बारिश के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं जॉय सिटी कोलकाता में आज आसमान में आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा आसमान और गरज चमक के साथ बिजली कड़कने की भी चेतावनी है। आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं सुभद्रा से।
1: Yes, Chennai is expected to have a generally cloudy sky with light rain. Minimum temperature was 28 degrees Celsius, maximum will be around 39 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 20 degrees Celsius, maximum will be around 31 degrees. Hyderabad is also expected to have a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between the minimum of 27 degrees Celsius and a maximum of 38 degrees Celsius.
0: और अब श्रोताओं, वक्त आ गया है अतीत के पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की। आज 16 जून है और अगर हम कहें कि आज का दिन भारत और विश्व इतिहास में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और वैज्ञानिक बदलावों का गवाह रहा है तो ये गलत नहीं होगा।
1: यस, वी स्टार्टिंग विद द ईयर 1487, द बैटल ऑफ स्टोक फील्ड, ऑफन रिगार्डेड एज द लास्ट मेजर बैटल ऑफ द वॉर्स ऑफ द रोजेस, वाज़ फॉट इन इंग्लैंड।
0: और कई समय बाद 1858 में भारतीय विद्रोह यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ग्वालियर के पास मुरार का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोही ताकतों ने आगे बढ़ती हुई ब्रिटिश सेना का डटकर मुकाबला करने और उन्हें रोकने का प्रयास किया था। वहीं इसके कुछ दिनों बाद 1903 में डेट्रॉइट मिशिगन में फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसने आगे चलकर ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री में क्रांति ला दी।
1: And on June 16th, that is today, this day, in 1911, three successful 19th century companies decided to merge, marking the beginnings of IBM history. The Tabulating Machine Company, International Time Recording Company, and Computing Scale Company of America joined together to incorporate and form one company, the Computing Tabulating Record Company. And next is...
0: इसके कुछ दिनों बाद 1963 में आज ही के दिन सोवियत अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना टेरेश्कोवा ने वोस्तोक 6 अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा था.
1: And you know, Jaya, this is my kind of history today. 1967, the first Monterey International Pop Music Festival opened in Monterey, California, which ran for 3 days. It was attended by legends like The Who, The Grateful Dead, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, Janis Joplin, and the legend from our own land, Pandit Ravi Shankar.
0: और आज ही के दिन 1983 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और 2010 में भूटान की संसद ने तंबाकू नियंत्रण कानून पारित किया. श्रोताओं, अब समय है उन प्रमुख व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन. तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में एक अत्यंत भावुक और महत्वपूर्ण मोड़ को. आज देश के उस महान सपूत की पुण्यतिथि है जिन्होंने देश सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया. हम बात कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर राजनेता और कवि और कानूनविद देशबंधु चित्तरंजन दास की. प्रखर राष्ट्रवादी चित्तरंजन दास ने स्वाधीनता आंदोलन में जिस तरह से राष्ट्रवादियों और देशभक्तों की सहायता की उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है. गांधी जी के आह्वान पर शुरू हुए असहयोग आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास अपनी जमी जमाई वकालत छोड़कर आजादी के आंदोलन में कूद पड़े. यही नहीं, उन्होंने न केवल खुद को आजादी के आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया बल्कि अपनी सारी संपत्ति भी दान कर दी. उनकी देश प्रेम की भावना और जज्बे को देखते हुए देश ने भी उन्हें बेहद सम्मान दिया और वे देश बंधु के नाम से मशहूर हो गए.
1: And after that, let's talk about an architect. Architect, urban planner Charles Scurria left this world, that is on June 2015. In the late 60s, Scurria began his career as an urban planner, creating New Bombay, now it's called Navi Mumbai, of course, an urban area that provided housing and job opportunities for many who lived across the harbour from the original city. From 1985 to 1988, he served as chairman of India's National Commission on Urbanization, and from 1999 he served as a consulting architect to the government of Goa. Scurria taught in many universities, both in India and abroad, including MIT and Harvard University, both in Cambridge and Massachusetts, and the University of London. And of course, his many awards included the Padma Shri 1972, Padma Vibhushan 2006, two of India's highest honours. The Royal Gold Medal for Architecture he earned in 1984 from the Royal Institute of Britain, and many more coveted awards.
0: आज फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री यानी भारतीय रसायन विज्ञान के जनक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की भी पुण्यतिथि है. आचार्य प्रफुल्ल ने न केवल आधुनिक भारत में विज्ञान की नींव रखी बल्कि देश को पहला स्वदेशी उद्योग भी दिया. 2 अगस्त 1861 को बंगाल में जन्मे प्रफुल्ल राय एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि लेने के बाद भारत लौटे और प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया. साल 1896 में उन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी खोज की. उन्होंने मर्क्यूरस नाइट्राइट नाम के एक यौगिक की खोज की जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया. इस खोज ने साबित कर दिया कि भारतीय वैज्ञानिक किसी से कम नहीं हैं.
1: Birthday of Joyce Carol Oates, American novelist, short story writer and essayist, noted for her vast literary output in a variety of styles and genres. Born in Lockport, New York in 1938, Joyce began writing at the age of 14. She is a National Book Award winning author of more than 60 novels and thousands of short stories. The lady turns 88 today. And also today is the birth anniversary of Stan Laurel, iconic English actor and comedian, best remembered for teaming up with American comedian Oliver Hardy to form the legendary comedy duo Laurel and Hardy. In addition to being honored with a star on Hollywood Walk of Fame in 1960, he was also honored the following year with a Lifetime Achievement Award for his pioneering work in motion picture comedy.
0: आज ही पुण्यतिथि है रामानंद सागर के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में आर्य सुमंत की अविस्मरणीय भूमिका निभाने वाले

दिग्गज अभिनेता चंद्रशेखर वैद्य की। आज की पीढ़ी उन्हें सिर्फ रामायण के सुमंत के रूप में जानती है, लेकिन वे हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की एक बेहतरीन नायक, निर्देशक, फिल्म निर्माता और बेहद उम्दा डांसर भी थे। मुंबई में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में शुरुआत करने के बाद उन्होंने महान निर्देशक वी शांताराम की फिल्म सुरंग से बतौर मुख्य अभिनेता अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने कवि, बारादरी, काली टोपी, लाल रुमाल और कटी पतंग जैसी 250 से अधिक फिल्मों में शानदार अभिनय किया। सुनते हैं चंद्रशेखर जी के अभिनय से सजी फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का यह बेहद सुरीला और सदाबहार गीत, जिसे मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने अपनी आवाज से अमर कर दिया।

0: आज हम बात कर रहे हैं शब्दों के उस जादूगर की जिन्होंने अदबी महफिलों से लेकर बॉलीवुड के सिनेमाई पर्दे तक अपनी गजलों से मोहब्बत और संजीदगी का एक नया दौर शुरू किया था। श्रोताओं, आज आधुनिक उर्दू शायरी के आला तरीन शायर और प्रख्यात शिक्षाविद कुंवर अखलाक मोहम्मद खान की जयंती है, जिन्हें लोग अदब की दुनिया में शहरयार के नाम से जानती है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के आंवला में जन्मे शहरयार साहब ने अपनी रूहानी शायरी से करोड़ों दिलों पर राज किया। लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता तब इतिहास बन गई जब उन्होंने फिल्म निर्देशक मुजफ्फर अली की कालजयी फिल्म उमराव जान के लिए गजल लिखे, जो आज भी हर पीढ़ी की जुबान पर है।
1: जो

इसके अलावा उन्होंने गमन और अंजुमन जैसी फिल्मों में भी बेहद संजीदा गीत लिखे। उनके कविता संग्रह ख्वाब का दर बंद है के लिए उन्हें साल 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। यही नहीं, साल 2008 में वे भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले देश के चौथे उर्दू कवि बने। जब संगीत के सुनहरे दौर का जिक्र हो ही रहा है तो हम बात करते हैं दिग्गज संगीतकार, गायक और फिल्म निर्माता हेमंत कुमार मुखोपाध्याय की, जिन्हें पूरी दुनिया बड़े प्यार से हेमंत दा कहती है और जिनकी आवाज आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी है।

हेमंत दा एक ऐसे फनकार थे जिसकी आवाज को सुनकर महान संगीतकार नौशाद साहब ने कहा था कि अगर भगवान गाते तो उनकी आवाज भी हेमंत कुमार जैसी ही होती। 16 जून 1920 को वाराणसी में जन्मे हेमंत दा की आज जयंती है। शुरुआती जीवन उन्होंने कोलकाता में बिताया, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर खुद को पूरी तरह संगीत को समर्पित कर दिया। बतौर संगीतकार

इस फिल्म के शानदार संगीत के लिए उन्हें प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब हम सुनते हैं फिल्म 20 साल बाद का यह मधुर गीत, बेकरार करके हमें यूं ना जाइए।

0: आज भारतीय सिनेमा के सदाबहार सुपरस्टार मिथुन दा की भी जयंती है, जन्मदिन है।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, टाइम टू वाइंड अप द शो, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: तीसरा शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला यह पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से यह हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
3: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
4: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
3: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
2: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर

0: रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
1: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमरीकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमरीकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी

0: तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के व्यों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे। To also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at US Air Force base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honour, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said that the Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honour.
3: As a special gesture, President conferred the highest state decoration of Slovakia, Order of the White Double Cross First Class, upon Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for his role in an exceptional contribution in building India-Slovakia relationship. Minister dedicated the award to the people of India and Slovakia who have contributed in strengthening this partnership. Prime Minister also met with His Excellency Mr. Richard Rasi, Speaker of the National Council of the Slovak Republic, reaffirming the commitment to strengthen relationship between our two democracies.
2: India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The

0: major challenges remain. The full text of the agreement has not been released and disagreements persist over sanctions relief, Iran's nuclear program and future navigation rules in Strait of Hormuz. Regional tensions also remain high, particularly in Lebanon, where Israel has indicated that it will maintain military positions in certain areas despite the broader diplomatic initiative. The coming days will determine whether the framework can evolve into a durable peace agreement for the region. Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
1: In the FIFA World Cup 2026, tiny Cape Verde, making its historic first appearance at the World Cup, produced an extraordinary performance to secure a 0-0 draw with global heavyweights Spain. Cape Verde's 40-year-old goalkeeper, Vizinha, delivered a heroic performance as his side held Spain to a 0-0 draw. Earlier, Belgium and Egypt also drew 1-1 in their Group G opening match at Seattle Stadium. Egypt came close to securing their first ever World Cup victory but were denied by a quick response from Belgium's substitutes under the intense heat. Saudi Arabia and Uruguay also drew 1-1 in their opening match of Group H in Miami Stadium in the US this morning. Abdullah Al-Amri scored on a rebound in the 41st minute for Saudi Arabia, and Uruguay's Maxi Araujo responded with an equalizer in the 80th minute. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
2: Thank you, Sunil. The peace deal between US and Iran is prominently noted on the front pages of dailies. US and Iran reach deal to end war, reopen Hormuz, headlines the Indian Express. US-Iran strike tentative peace deal as Israel refuses land pullback, reads the headline in the Statesman. Prime Minister Modi will lead the main event of the International Day of Yoga 2026 celebrations in Kolkata on June 21, writes the Asian Age. In its editorial piece title Label Truth, the Tribune argues that FSSAI's action against misleading food labels is necessary, but only a first step. And that is back to you, Sunil.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Slovakia confers its highest honor, Order of the White Double Cross, first class, on Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Modi to participate in G7 summit in Avignon, France today to hold bilateral meetings with Prime Ministers of Canada and UK and UAE President. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। स्लोवाकिया ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपना आलातरीन एजाज ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास अता किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज फ्रांस के शहर एवियन में मुनाक़िदा G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो कनाडा और बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ दोतरफा मीटिंगें भी करेंगे। हुकूमत ने डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर बरामदी महसूल में इजाफा कर दिया है, जबकि पेट्रोल पर बरामदी महसूल में कोई तब्दीली नहीं की गई है। 62,370 मैट्रिक टन एलएनजी लाने वाला भारतीय जहाज दिशा बाहिफाजत आबनाए हुर्मुज से गुजर गया है। जनूबी कैलिफोर्निया में वाके अमरीकी फिजाइया के अड्डे पर B-52 बम्बार तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप में केप वर्डे ने स्पेन को बगैर किसी गोल के बराबरी पर रोक दिया, जबकि बेल्जियम और मिस्र का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। अब खबरें तफसील से। स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के आलातरीन सरकारी एजाज द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस बावकार एजाज पर स्लोवाकिया के सदर, स्लोवाकिया की हुकूमत और वहां के अवाम का तहदिल से शुक्रिया अदा किया। एजाज कबूल करते हुए उन्होंने कहा कि एजाज भारत के 1,40,00,000,000 अवाम और भारत व स्लोवाकिया के दरमियान देरीना दोस्ती के नाम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एजाज भारत और स्लोवाकिया के अवाम के दरमियान मौजूद खलूस, एतमाद और मोहब्बत के मजबूत रिश्तों का मजहर है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह एजाज दोनों ममालिक की आने वाली नस्लों को भी बाहमी दोस्ती और खसूसी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की तरगीब देगा और इस दोस्ती को आइंदा भी फरोग देता रहेगा। भारत और स्लोवाकिया ने अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे

0: अमीर शराकत दारी की शक्ल दी है। ब्रिटिसलावा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हमनसब रॉबर्ट फीको के दरमियान बातचीत के बाद फरीकैन ने अहम शोबों में बाहमी ताउन को तौसी देने की गरज से 11 माहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा शामिल हैं। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ताल्लुकात का फरोग मुश्तरका अकायद, तरजीहात और मुस्तकबिल की अलामत है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफाई शोबों में एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए हैं।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए एमओयू से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: इस मौके पर खिताब करते हुए स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फीको ने भारत की तेज रफ्तार इकतसादी तरक्की को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत ने अहम शोबों में कई तरक्की याफ्ता मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम के दौरे ब्रातिस्लावा के दौरान कई तारीखी फैसले किए गए, जिनमें भारत और स्लोवाकिया के ताल्लुकात को नुमाया तौर पर मजबूत करने की सलाहियत मौजूद है। वजीर आजम जनाब मोदी के दौरे के दौरान कुल 11 अहम मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। इन मुआहदों में दिफा, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, सियाहत, क्वांटम कम्युनिकेशन और मसनूई जहानत समेत जदीद टेक्नोलॉजी और आला तालीम जैसे शोबों में ताउन बढ़ने की तवक्को है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फीको के दरमियान बातचीत के दौरान दोनों फरीकों ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने में ताउन को मजबूत बनाने के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने का भी फैसला किया है। वजीर आजम मोदी आज ब्रातिस्लावा से रवाना होंगे और G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए फ्रांस जाएंगे। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम पुलुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी दो मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में दो रोजा दौरे पर आज फ्रांस के शहर एवियन पहुंचेंगे, जहां वो G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आजम की आमद पर फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों उनका बाजाब्ता इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद वजीर आजम सरबराह कॉन्फ्रेंस के एक वर्किंग सेशन में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू नई शराकत दारियों का कयाम और बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद की अज़र नौ तश्कील है। इस इजलास में G7 ममालिक के रहनुमा, शराकत दार ममालिक के नुमाइंदे, नीस आलमी बैंक और अफ्रीकी तरक्याती बैंक के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास के मौके पर वजीर आजम मोदी की कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी, बरतानिया के वजीर आजम कियर स्टारमर और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान के साथ दोतरफा मीटिंगें भी मुतवक्की हैं। इसके बाद वजीर आजम फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों की दावत पर फ्रांस के उस शहर का दौरा कर रहे हैं, जिसे एक नहायत अहम, नतीजा खेज और हमाजहत दौरा करार दिया जा रहा है। काबिल जिक्र बात यह है कि G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में यह भारत की 13वीं शिरकत होगी, जबकि वजीर आजम मोदी मुसलसल 7वीं मरतबा इस इजलास में शरीक हो रहे हैं। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंसों में भारत की मुसलसल शिरकत आलमी उमूर में मुल्क के बढ़ते हुए रोल और अहमियत की अक्कासी करती है। यह आलमी सतह पर अमन, सलामती, तरक्की और माहौलियाती पायदारी से मुतालिक चैलेंजों से निपटने में भारत के रोल और खिदमात के एतराफ की अक्कासी भी करती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: G7 मुल्कों के लिए भारत की स्ट्रेटजिक अहमियत अब ठोस इक्तसादी और तकनीकी शराकत दारियों की सूरत में मजीद नुमाया हो रही है। इसका सबूत हाल ही में तय पाने वाला भारत यूरोपीय यूनियन तजारती मुआहदा है, जबकि नीस में मुनक्किदा भारत इनोवेट प्रोग्राम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत का सरकारी AI पार्टनर मुल्क के तौर पर इंतखाब भी इसी से

0: भारत की सलाहियतों और मफादात से करीबी मुताबकत रखती हैं। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए भारत ने नुमाया तरक्की की है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम इक़दामात किए हैं। आकाशवाणी न्यूज आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले साल 6 और 7 मई के दरमियानी रात शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये वाज़े पैगाम दिया कि भारत जंग नहीं चाहता, अलबत्ता वो दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस ऑपरेशन ने एक नई सुर्ख लकीर खींच दी कि अगर दहशतगर्दी को हुकूमत की पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका बराह रास्त और सख्त जवाब दिया जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान लश्कर ए तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में वाक दहशतगर्दों के 9 बड़े लॉन्च पैड्स को कामयाबी से तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान 100 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। 9 और 10 मई को भारत दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने एक ही ऑपरेशन में एटमी सलाहियत रखने वाले मुल्क के 11 फजाई अड्डों को निशाना बनाया। इस कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान फदाइया के तकरीबन 20% बुनियादी ढांचे तबाह कर दिए गए। इस ऑपरेशन के बाद आलमी सतह पर भारत को वसी हिमायत हासिल हुई और मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं ने भारत के मौकिफ की तायीद की। ये भारत की बढ़ती हुई आलमी साख और बैन अल-अक़वामी बयाने पर उसकी मजबूत गिरफ्त की अक्कासी करता है। आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन, जो जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के कमांडर रह चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की कारकर्दगी की भरपूर तारीफ की।
3: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
4: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
3: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
2: एनडीए हुकूमत दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर साबित कदम है और इस पर पूरी संजीदगी और अज़्म के साथ अमल पैरा है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मा।
1: हुकूमत ने अपने ताजा तरीन 15 रोजा जायजे में डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बरामद पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आज से नाफिजुलअमल डीजल बरामदी ड्यूटी 13.05 रूपये फी लीटर से 14 रूपये फी लीटर कर दी गई है, जबकि ATF की बरामद पर महसूल 9.05 रूपये फी लीटर से बढ़ाकर 12.05 रूपये फी लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल पर बरामदी ड्यूटी 1.05 रूपये फी लीटर पर बरकरार है। घरेलू खपत के लिए क्लियर किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा ड्यूटियों की शरहों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। रकीक कुदरती गैस LNG लाने वाला जहाज दिशा बाहिफाजत आबनाए हुरमुज से गुजर गया है। LNG बरदार यह जहाज 62,370 मैट्रिक टन LNG लेकर आ रहा है। इस जहाज का इंतजाम शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया की क्यादत में कायम एक कंसोर्शियम कर रहा है। ये इन अव्वलीन तजारती जहाजों में शामिल है जहां अमरीका और ईरान के दरमियान इब्तदाई जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के बाद आबनाए हुरमुज को पार किया है। जनूबी कैलिफोर्निया के सहराए मोहावी में अमरीकी फिजाइया के फौजी अड्डे से परवाज होने के फौरन बाद एक B-52 बम्बार तैयारा गिरकर तबाह हो गया जिसमें सवार सभी 8 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी फौज ने एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इतला दी कि मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:20 पर एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर तैयारा गिरने के बाद हंगामी टीमें जाए वकूह पर पहुंची। फिजाई फुटेज में बेस के रनवे के करीब सेहरा से काले धुएं के गुबार उठते दिखाई दिए। इसके बाद एयरफील्ड को बंद कर दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्डे में स्पेन को बगैर किसी गोल के बराबरी पर रोक दिया। केप वर्डे के 40 साल गोलकीपर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इससे पहले ग्रुप

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.
1: जी हाँ, ये म्यूजिकल दिल लगी है मुक्ता के साथ।

0: जी हाँ जनाब, अगर भरे जून के मौसम में आपको इस तरह बादल दिख जाएं और हंसती हुई खिलखिलाती हुई थोड़ी बहुत हवा दिख जाए तो इसका आनंद लीजिए ना। आपके सफर को हम करेंगे आसान म्यूजिकल दिल लगी के माध्यम से।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल।

0: डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
0: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
5: अतीत चाहे दुखद ही क्यों ना हो, उसकी स्मृतियां मधुर होती हैं। प्रेमचंद की लिखी ये पंक्तियां जब विचार की तो बिल्कुल सच लगी। ऐसा होता है ना दोस्त, जब वक्त बीत रहा होता है तो कई बार उसकी कीमत हम पहचान नहीं पाते और फिर बाद में काश रह जाता है, सिर्फ एक काश। बचपन को जवानी चाहिए, जवानी को जिम्मेदारी से मुक्ति चाहिए और बुढ़ापे को फिर से जवानी, अपना बीता हुआ वक्त। इसीलिए कहते हैं कि हर लम्हा जी जाइए, क्योंकि वो अनमोल है, लौटेगा नहीं।

जी हाँ, ऐसे ही खिले खिले चेहरे बना करके रखिए, मुस्कुराती रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। म्यूजिकल दिल्लगी का ये सफर भावना आपके साथ रखेंगे जारी, हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों के बाद। फिलहाल मंगल की मुक्ता को दीजिए इजाजत, आइए हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा वैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ETF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ETF निर्यात पर शुल्क 9.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रूपये प्रति लीटर कर दिया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट UG पुनः परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस पुनर्परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमरीकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमरीकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वो जेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दामुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेड़के के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। वहीं श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। मौसम विभाग ने अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर के कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
3: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: प्राइम मिनिस्टर सेड बोथ द कंट्रीज हैव साइंड द लेटर ऑफ इंटेंट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस सेक्टर।
3: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए एमओयू से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
2: Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme, Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada, Mark Carney, Prime Minister of United Kingdom Keir Starmer and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. Government review. With effect from today, the export duty on diesel has been raised to 14.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ भावना। ये है प्रोग्राम म्यूजिकल दिल्ली। कितना अच्छा मौसम हो गया है ना इस प्यारे से दिन के लिए। ये प्यारा सा गाना बनता है आगाज इस खूबसूरत गीत के साथ।

जरा सी देर को सब कुछ भुला कर देख लेते हैं, जरा सी देर को सब कुछ भुला कर देख लेते हैं, तुम्हें हम सामने बैठा कर देख लेते हैं, तेरी सूरत की अदाओं को निहार लेते हैं, तेरी झील से गहरी आंखों में डूब लेते हैं। वो चेहरे कैसे होते हैं कि जिनसे चांद शर्माए, तेरे चेहरे से जुल्फों के बादल हटा कर देख लेते हैं, तेरे चेहरे से जुल्फों के बादल हटा कर देख लेते हैं।

बारिश का मौसम बहुत अच्छा है और ऐसे में अपनी गड्डी को लेके कहीं दूर निकल जाना या फिर छुट्टियों के दिन चल रहे हैं रेल गड्डी में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत अच्छा लगता है ना। छुट्टियां मनाना, सफर करना और सफर को एंजॉय करना, ये सब बहुत ही खास बातें हैं। लेकिन इसके लिए सफर में जो सड़कें हैं, जो मार्ग हैं, चाहे सड़क का मार्ग हो, रेल का मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, बंदरगाह, अगर आप बाय बोट जाना चाहते हैं कहीं पे, तो सारे मार्ग जो है ना वो आसान होने चाहिए, तभी हम मौसम का मजा लेते हुए सफर का आनंद ले सकते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है जब सारे परिवहन साधन जो है, चाहे कोई भी मार्ग हो, जैसे कि हमने सारे मार्ग बनाए ना चार की तरह चार, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक हो, सब जितने भी मार्ग हैं वो एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड हो कि मतलब आदमी आसानी से ट्रेन पकड़ ले, कि अगर आपको ट्रेन लेनी है तो आप मेट्रो से जाके तुरंत जो है ना मतलब रेलवे की ट्रेन ले लें, या फिर रोड्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि टाइम पर आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाए या हवाई अड्डे पहुंच जाए।

या बंदर का पहुंच जाए, तो ये सब चीजें कैसे हो सकती हैं? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना इसी पर काम कर रही है कि जीआईएस जो है वो मतलब हर उपभोक्ता को उसकी सुविधा प्राप्त हो और विकसित तकनीक हो, आप कहीं पर भी कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, आप किसी भी माध्यम से जा रहे हो लेकिन दूसरे माध्यम के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, परियोजनाओं की लागत कम हो, समय की बर्बादी कम हो, इन सबके लिए इसरो का सहायता जो है उसकी हेल्प भी इस गति शक्ति योजना में ली जाती है। तो बहुत ही खास है हमारी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, हम हमारी जो मतलब गति है उसको शक्ति मिले, हम किसी भी मार्ग से जाएं पूरे आराम के साथ, आधुनिक सुविधाओं के साथ, एक जगह से दूसरी जगह पूरे सफर का और मौसम का आनंद लेते हुए पहुंच जाएं, चाहे हम सड़क से जाएं, पानी से जाएं, हवाई जहाज से जाएं या फिर रेल से जाएं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

भाई नाम पूछना तो बनता है, बताइए आपका नाम है क्या? जो लोग दूसरे देशों से अपने देश में बहुत सारी सहायता राशि पहुंचाते हैं, क्योंकि इससे वो केवल अपने परिवार का भला नहीं करते। हाँ, ये सच है कि डायरेक्ट रूप से तो वो अपने परिवारों को पैसे पहुंचाते हैं रेमिटेंसेस के रूप में, लेकिन ये देश के भी काम आता है और देश की आर्थिक मदद करने में भी वो लोग सहायता करते हैं, मदद करते हैं। तो ये सब है वो भारतीय जो दूसरे देशों में रहते हैं। आज है परिवार प्रेक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। ये दिन दुनिया भर के उन 20 करोड़ से भी ज्यादा प्रवासी श्रमिकों के प्रयास और बलिदानों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। वो जो भी कोशिशें करते हैं वहां से दूसरे देशों में धन कमाकर अपने देश में जो धन भेजते हैं उससे उनके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और साथ ही देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। और इसीलिए आज के दिन को मान्यता देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। वैसे इस दिवस को, यानी 16 जून को जो मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, इसको UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सार्वभौमिक रूप से मान्यता दी गई है। तो वो सभी भारतीय जो बाहर रह रहे हैं लेकिन बाहर से धन भेजकर अपने देश का, अपने परिवार का भला कर रहे हैं, वो भी सच्चे भारतीय हैं, सच्चे मिस्टर इंडिया हैं, उनको हमारा सलाम।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम है म्यूजिकल दिल लगी, मैं हूं आपके साथ भावना। समय मिला लीजिए 9:45 और 30 सेकंड हो गए हैं।

0: देखिए जादू चाहे कैसा भी हो सर चढ़कर बोलता है, और सबसे खास जादू तो इस आधुनिक जमाने में साइंस का है, विज्ञान का है। लेकिन पता है ये जादू बहुत पुराना है, अभी नया नया नहीं है। पुराने हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो विद्वान हैं, उन्होंने बहुत कुछ दिया है हमें, और इसीलिए आज हम यहाँ खड़े हैं और उन्हीं की खोज और उन्हीं की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनकी जो कहीं की निचोड़ है अपने जीवन में, उनको ही सत्य मानकर आगे बढ़ते हैं आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी। भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय को। आज यानी 16 जून को पुण्यतिथि इनकी हर साल मनाई जाती है। मर्क्यूरस नाइट्राइट इस स्थिर यौगिक की खोज की थी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी ने। 1901 में बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इसकी स्थापना की, जो भारत का पहला स्वदेशी फार्मास्यूटिकल उद्यम था। कितना जरूरी है ये हमारे लिए, है ना। उन्होंने भारत में आधुनिक रासायनिक अनुसंधान की नींव रखी और नाइट्राइट्स के मास्टर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। तो कितने खास हैं हमारे वैज्ञानिक, और उन्हीं में से एक हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 16 जून को हर साल इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है।
1: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मम्मी ये जहाज कहाँ जा रहा है?
3: बेटा अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
4: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
3: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
4: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आज 16 जून है और आज के दिन देशबंधु चितरंजन दास जी की भी पुण्यतिथि मनाई जाती है। जाने माने स्वतंत्रता सेनानी, वकील, राजनेता, उनकी राष्ट्र सेवा के लिए ही उनको देशबंधु की उपाधि दी गई थी। म्यूजिकल दिल लगी में भावना का सफर आज जी यहीं तक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, थोड़ी देर में होंगे समाचार और 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स, ये प्रोग्राम लेकर मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन पहले समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की यह 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यह वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NEET UG पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस पुनर्परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने

0: की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुख और समृद्धि के दरवाजे धैर्य, विवेक और दूरदर्शिता से किए गए कार्यों से ही खुलते हैं। संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक निर्णय में पूर्ण विवेक आवश्यक है, क्योंकि सोच समझकर उठाया गया कदम सफलता की नींव बनता है। उन्होंने कहा कि बिना विचार किए गए जल्दबाजी में कोई निर्णय या कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घोर विपत्तियां आ सकती हैं। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक निर्णय में विवेक का प्रयोग करने पर बल दिया। फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोल पीकर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी The news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a 2-day visit to participate in the G7 summit in the third leg of his 2-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme, Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with the leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada, Mark Carney, Prime Minister of United Kingdom, Keir Starmer, and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas, including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future."
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: A liquefied natural gas LNG carrier, Disha, safely transited through the Strait of Hormuz. The LNG carrier carrying 62,370 metric tons of LNG is one of the first commercial vessels to transit the strait since the announcement of a preliminary ceasefire deal between the United States and Iran. Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, said the vessel is expected to arrive at Dahej in Gujarat on the 18th of this month. Government has increased the special additional excise duty SAED on the export of diesel and aviation turbine fuel ATF in its latest fortnightly review. With effect from today, the export duty on diesel has been raised to 14 rupees per litre from 13 rupees 5 paise per litre, while the levy on ATF exports has been increased to 12 rupees 5 paise per litre from 9 rupees 5 paise per litre. The export duty on petrol remains unchanged at 1 rupee 5 paise per litre. Loksabha Speaker Om Birla will inaugurate the Viksit Bharat Youth Parliament 2026 in New Delhi at the national level today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said the initiatives reimagine

0: Religions, youth engagement with democratic processes, offering young citizens a hands-on understanding of governance, policy deliberation, and parliamentary functioning. A B-52 bomber crashed shortly after takeoff at a U.S. Air Force base in Southern California's Mojave Desert last night, killing all 8 people aboard. Aerial footage showed a plume of black smoke rising from the desert near the runway on the base. It is not immediately clear what caused the crash. Domestic benchmark equity indices, Sensex and Nifty, opened higher this morning following a preliminary agreement between United States and Iran to end the West Asia conflict. Sensex rose over 315 points to touch 76,579 in early trade, while Nifty gained around 77 points to trade at 23,931. In the FIFA World Cup 2026, tiny Cape Verde makes its historic first appearance at the World Cup, produced an extraordinary performance to secure a 0-0 draw with global heavyweight Spain. Cape Verde's 40-year-old keeper, Wozinha, delivered a heroic performance. Cape Verde have produced the biggest shock of the tournament so far. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियो पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध और अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। G7 शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो हर साल कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमरीका जैसे G7 सदस्य देशों के नेताओं के लिए आयोजित किया जाता है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों

0: सबके बीच विश्वास, स्नेह और सहयोग का प्रतीक है और आने वाली पीढ़ियों को इस मित्रता को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही।
1: प्रधानमंत्री की ब्रातिस्लावा यात्रा के दौरान कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिनसे भारत और स्लोवाकिया के रिश्ते काफी मजबूत हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान कल 11 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उम्मीद है कि इन समझौतों से रक्षा, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, पर्यटन, क्वांटम कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने आतंकवाद से निपटने में सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त कार्य समूह बनाने का भी फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी आज ब्रातिस्लावा से रवाना होंगे और G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस जाएंगे। स्लोवाक रिपब्लिक के ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। तरल प्राकृतिक गैस LNG ले जा रहा टैंकर दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला यह पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम इसका प्रबंधक है।
2: अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से यह होर्मुज जलडमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। इस जहाज के 18 जून तक गुजरात के दहेज पत्तन पर पहुंचने की आशा है। अब तक भारतीय ध्वज वाले 10 और विदेशी ध्वज वाले 5 जहाज इस जलमार्ग को सुरक्षित रूप से पार कर चुके हैं। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन महानिदेशालय के माध्यम से इस क्षेत्र में कार्यरत भारतीय नाविक और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों, जहाजरानी कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ लगातार संपर्क में है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल के सैन्य हमले शुरू होने के बाद यह रणनीतिक जलमार्ग प्रभावी रूप से बंद हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और क्षेत्रीय जलमार्ग बाधित हो गया। विश्व दर्पण के लिए मैं जया भारती।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बमवर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग भी बदल दिया गया। दुर्घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: फीफा विश्व कप में केप वर्डी की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डी के गोलकीपर वोजिना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। न्यूजीलैंड और ईरान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। अमरीका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल

मीडिया पोस्ट में बताया कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद एक प्रख्यात दार्शनिक और विचारक थे। उन्होंने विश्व में वेदांत और योग की शिक्षाओं का प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा में उनके ऐतिहासिक संबोधन के लिए जाना जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हुर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बमवर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स, जिसमें हम आपकी ईमेल्स, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस को शामिल करते हैं। तो हमारा ईमेल आईडी जिनके पास नहीं है वो नोट कर लें, fmgoldairdelhi@gmail.com। जी हाँ, fmgoldairdelhi@gmail.com। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। तो लीजिए, पहला ही ईमेल हमें मिल गया है गांव फरांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डूडी का संदेश हमें मिला है। कोई भी गीत, ये इन्होंने लिखकर भेजा है। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, अनिल जैन, संजय ढिंगिया, राधा नामदेव, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई का संदेश हमें मिला है। ये जंगली फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं, तो ये रहा फिल्म जंगली से प्यारा सा गीत।

जनाबे आली, आपकी संदेश, आपके मैसेजेस हमें लगातार मिल रहे हैं। हमारी तरफ से राम राम स्वीकार करें, प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद आ रहा है। ये हमें लिखकर भेजा है आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राज जी ने। वेद प्रकाश चौहान इनके साथ हैं, सुखबेर सूबेदार अमर सिंह जी भी इनके साथ हैं, अपनी पसंद का गीत भी इन्होंने लिखकर भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरजिंदर शिंदा जी हैं पंजाब से, गांव नथाना पंजाब से। हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, और खुश रहो खुशियां बांटो, ये इन्होंने हमें लिखकर भेजा है। इसके अलावा संदीप मक्कड़ जी हैं, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल सानी, ये पिंगावाला चौक गुरैया जलंधर से अपना संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। ये कौन है? ये है शंभू दयाल खटक, बिमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, ये सब गांव जाखौद राजस्थान से अपना संदेश हमें भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारे प्यारे से संदेश हमें मिल रहे हैं। कंवर कॉलोनी बड़वाह, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली का संदेश हमें मिला, और ये गाना सुनना चाहते हैं। ये

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
4: दशमलव एक मेगा हर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम लेकर मैं भावना आपके साथ हूं। और हमारे साथ हैं इस वक्त मेल के जरिए राजेंद्र जटोलिया, उषा जटोलिया, चारू जटोलिया, दिल्ली नांगलोई से इनका संदेश हमारे पास आया है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। DK हैं ये, DK कौन है? कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु, और नई दिल्ली से इनका संदेश हमें मिला है। अपनी पसंद का गीत इन्होंने लिंक कर हमें भेजा है। कोशिश करेंगे हम आपका गीत सुनवाने की। हरियाणा रोहतक से अंकित कांगड़ा है, मोनी कांगड़ा है, प्रिंस बोट है, सीताराम कांगड़ा है, साहिल कांगड़ा है, इनका भी संदेश हमें मिला है। और कदमा जमशेदपुर से चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल, इनका संदेश आया है। हेमंत कुमार का आज जन्मदिन है। जी हाँ, गायक और संगीतकार हेमंत कुमार का आज जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष पर फिल्म शर्त का ये गीत ये सुनने की शर्त रख रहे हैं, मतलब इच्छा जता रहे हैं। तो ये हमने आपकी इच्छा पूर्ण कर दी। ये रहा आपकी पसंद का गीत।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम में एक बार फिर स्वागत है आपका। भूषण खेड़ा जी का हमारे पास संदेश आया है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सब कुछ लेकर भेजा है इन्होंने। फाजिल्का पंजाब से ये खेड़ा परिवार पूरा हमारे साथ जुड़ा है। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा और अपनी पसंद का गीत भी इन्होंने लिखकर भेजा है। इसके अलावा हमारे साथ फागुराम यादव जी जुड़े हैं, ज्योति यादव।

तेजस्वी यादव संबलपुर कांकेर से ये हमारे साथ जुड़े हैं। और कौन है जो हमारे साथ जुड़े हैं? अनिल मोहन जी जुड़े हुए हैं, टिल्लू नायक है, उषा मोहन है, मधु नायक है, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से इनका संदेश हमें मिला है। डीकेपी परिहार जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और नमस्कार इन्होंने मुझे लिखकर भेजा है, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम इन्होंने लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भोपालगढ़ राजस्थान से इनका संदेश हमें मिला है। और इसके अलावा सहारनपुर से आशा नारंग और सुरेश नारंग जी का संदेश हमें मिला है और गाना सुनना चाहते हैं ये।

राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से हमें प्रवीण हागुणे, योगिता हागुणे, कुमारी प्रियाली हागुणे, पार्थ हागुणे और पूरा हागुणे परिवार से संदेश मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये महाराष्ट्र से हमें संदेश मिला है। अगला संदेश है कम

हाँ ये कहाँ से आए, एक मिनट इसे देखते हैं। गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही साहब हैं, शाहीन फातिमा हैं, अनु खान हैं, अदनान खान हैं, फैजान खान हैं, प्यार भरा आदाब इन्होंने हमें लिखकर भेजा है, आपको भी आदाब। इसके अलावा हमारे साथ कौन जुड़े हैं, तुलसी मस्कीन साहब हैं, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, वीना मस्कीन, मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से, नहीं नहीं ये तो गोवर्धन बिहारी कॉलोनी से जुड़े हैं, लेकिन इन्होंने ही हमें नीचे लिखकर भेजा है चंडीगढ़ से। इनके साथ और भी लोग जुड़े हैं, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना, यानी वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। और ये कहते हैं कि हम 30 साल पुराने श्रोता हैं, कोई नाराजगी, अभी तक कोई रिस्पांस क्यों नहीं। अरे रिस्पांस मिल तो गया, क्यों इतनी नाराजगी, हम क्यों आपसे नाराज होंगे, हम तो खुश हैं आपका संदेश पढ़ के। अरविंद कुमार, गुड़िया रानी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी, बेनी पट्टी, मधुबनी बिहार से इनका संदेश मिला है और ये गाना सुनना चाहते हैं फिल्म अनीता से, ये

इसी के साथ दिल का मेल बॉक्स यहीं पर मुझे संपन्न करना होगा, लेकिन 11:10 पर तस्वीर प्रोग्राम में मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी, लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियां पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
0: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि लोकतंत्र देश की कार्य संस्कृति और विचार प्रक्रिया का अभिन्न अंग बना हुआ है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में बढ़ोतरी की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रूपये से बढ़ाकर 14 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमानन ईंधन के निर्यात पर शुल्क 9.05 रूपये से बढ़ाकर 12.05 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। अमरीका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। इस बीच LNG ले जा रहे भारतीय टैंकर दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। इसमें 62,370 मीट्रिक टन LNG है। इसके 18 जून तक गुजरात के दहेज पत्तन पर पहुंचने की उम्मीद है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस निर्णय का स्वागत किया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है प्रोग्राम तस्वीर, जिसमें हम हर बार आपको एक नई जगह घुमाने ले जाने की कोशिश करते हैं रेडियो तरंगों के माध्यम से। मैं हूं आपके साथ भावना, और आज हम जहां जा रहे हैं वो है कर्नाटक का एक छोटा सा तटीय शहर गोकर्ण, एक छिपा हुआ रत्न जहां आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य दोनों मिलते हैं।

गोकर्ण के सबसे प्रसिद्ध समुद्र तटों में से एक है यहाँ पर ओम बीच। और इस ओम बीच का नाम कैसे पड़ा? इसके आकार से, शुभ ओम चिन्ह से मिलता जुलता है इस समुद्र तट का आकार, और इसीलिए इसका नाम पड़ा ओम बीच। सुनहरी रेत का ये जो किनारा है, खूबसूरत मनोरम किनारा, ये देखने में तो बेहद खूबसूरत है ही, लेकिन जल क्रीड़ा प्रेमियों के लिए भी प्रमुख केंद्र है। यानी कि देखने में खूबसूरत है, सुनहरी रेत है यहाँ पर, इसके अलावा आप यहाँ पर वॉटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जल क्रीड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके साथ कोई एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर ये सब करते हुए, मतलब सब चीजों का आनंद लेते हुए, आप पैरासेलिंग और बनाना बोट राइड जैसी गतिविधियों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। बहुत खूबसूरत है यहाँ का मौसम भी। आप सोचिए कि खूबसूरत मौसम है, हल्की हल्की सी किरणें जो है वो रेत पर भी पड़ रही हैं, चमकीला रेत और नीला नीला पानी दोनों आपके पास हैं, तो फिर क्यों ना आप ऐसे मौसम में, ऐसी फजा में खो जाएंगे।

गोकर्ण का महाबलेश्वर मंदिर ये भी देखने लोग दूर दूर से आते हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो यहाँ गर्भगृह में आत्मलिंग स्थापित है जो पूजनीय है, और ये आत्मलिंग चुंबक की तरह अपने भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है। और दूसरा कारण है यहाँ की द्रविड़ वास्तुकला जो इस मंदिर को और भी खास बनाती है। महाबलेश्वर मंदिर के अलावा यहाँ का कुडले बीच भी लोगों को बहुत पसंद आता है। यहाँ पे शांत वातावरण की तलाश करने वाले जितने भी लोग हैं वो यहाँ पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर खास है यहाँ नारियल के पेड़ों से घिरा सुनहरी मुलायम रेत से सराबोर कुडले बीच। जी हाँ, खासियत मतलब अगर शब्दों में हम बयां करना चाहें तो बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। नारियल के पेड़ हैं चारों तरफ और बीच में सुनहरी रेत है। ये कैसे कहें, इसको बयां करना थोड़ा मुश्किल है। एक अलग तरह का एहसास है जो यहाँ पहुंचकर ही आपको महसूस होगा। जब आप सुनहरी रेत पर लेटकर ऊपर की ओर देखेंगे ना, आसमान की तरफ, और बीच में आपको वो नारियल के पेड़ जो है वो नारियल से भरे हुए दिखाई देंगे, तो एक अलग तरह की अनुभूति होती है। और यहाँ पर ना सूर्यास्त देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस बीच पर कई तरह की छोटी बड़ी दुकानें भी हैं जहाँ पर आपको खाने पीने के लिए सामान मिल जाएगा, आपको पेय पदार्थ मिल जाएंगे, तो उनको पीते हुए आराम से बीच पर लेटिए और आनंद लीजिए। और हाँ, सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब आप अकेले ना हो, आपका अपना आपके साथ हो।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल।

0: डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
0: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। ये है प्रोग्राम तस्वीर, मैं हूं आपके साथ भावना। और आज हम रेडियो तस्वीर बना रहे हैं कर्नाटक के खूबसूरत तटीय शहर गोकर्ण की। खूबसूरत नजारे, इतने खूबसूरत कि आंखों में बस जाएं, दिल में उतर जाएं।

आप भी बात मानिए और हाफ मून बीच जरूर पहुंच जाइए अगर आप इस वक्त यहाँ हैं गोकर्ण में कर्नाटक के, क्योंकि पता है ओम बीच जिसको हमने शुरू में ही आपको बताया था, वहां से पैदल चलकर ही हाफ मून बीच जो है पहुंचा जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत है ये बीच, हरे भरे पेड़ जो हैं वो यहाँ की सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। बहुत ही मन

है वो अर्धचंद्रा आकार है। इसके अलावा गोकर्ण का इसी नाम से गोकर्ण बीच जो है ये भी बहुत खूबसूरत है। बेदाग सुंदरता है यहाँ की और यहाँ पर भी शांत वातावरण है, भीड़भाड़ से दूर शांति। और यहाँ की खास बात, यहाँ की जब लहरें उठती हैं बैठती हैं, मतलब लहरों का उठान और बिठाव ये दोनों जब एक साथ मतलब होती हैं, जो आवाज़ जो ध्वनि निकलती है उसको बैठकर आराम से यहाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा। कुछ ऐसा कि बस अब यहीं रुक जाएं, थोड़ी देर कहीं भी ना जाएं, यही समुद्र की लहरों की आवाज़ों के बीच अपने आप को खो दें और यहीं पर रहें, कहीं ना जाएं, कहीं भी नहीं।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: मम्मी ये जहाज कहाँ जा रहा है?
8: बेटा अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
9: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
8: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
9: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

बहुत ही खूबसूरत है गोकर्ण और यहाँ की हर चीज, यहाँ का नाम भी खास है और यहाँ का हर काम भी है खास। यहाँ का पैराडाइज बीच जो है ना, हमने दो तरह के बीच आपको इससे पहले जो बताए, ओम बीच और हाफ मून बीच। तो हाफ मून बीच से बोट के जरिए, नाव के जरिए, और ओम बीच से घने जंगलों से होते हुए आप यहाँ पैराडाइज बीच पे पहुंच सकते हैं और बिल्कुल स्वर्ग के समान है ये बीच। कवाला केव्स हैं, ये प्राचीन चूना पत्थर की गुफाएं हैं, लाखों साल पहले ये बनी थी और भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र स्थल के रूप में इसे पूजा जाता है। यहां पर भी लोग आते हैं। कोटी तीर्थ एक जगह है, हजारों झरने जिसका मतलब होता है, और यहां पर चिंतन मनन करने लोग आते हैं। ये आर्टिफिशियल तालाब है, मानव निर्मित है और मंदिरों और प्राचीन इमारतों से घिरा हुआ है। यहां पर लोग अनुष्ठान करते हैं और इस तीर्थ में डुबकी भी लगाते हैं। निर्वाणा बीच भी बहुत खूबसूरत है गोकर्ण का, और यहाँ का भद्रकाली मंदिर, इसके तो क्या ही कहने। भद्रकाली मंदिर जो है, मतलब जो नकारात्मक ऊर्जा है उनसे बचाता है। माँ भद्रकाली की प्रतिमा है यहाँ पर, जिसकी पूजा अर्चना की जाती है। बहुत ही खास ये जगह मानी जाती है भक्तों के लिए। तो अब आप ये बताइए कि आप कब मन बना रहे हैं यहाँ आने का?

आज की तस्वीर आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि पसंद आई होगी। गोकर्ण की ये यात्रा आपके मन को भाई होगी। 12:10 पर घर आंगन होगा आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का। मैं भावना चलती हूँ, लेती हूँ आपसे विदा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Garden. घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। और कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत विचार के साथ करते हैं। स्वतंत्र होने के लिए सबसे पहले दो चीजों से मुक्त होना पड़ता है, बुरे भविष्य का डर और दुखद अतीत की यादें। हम में से कई लोग बीते हुए कल की गलतियों या दुखों को ढोते रहते हैं और साथ ही आने वाले कल की अनिश्चितताओं से डरते हैं और आज को जीना भूल जाते हैं। लेकिन जीवन का सबसे सुंदर सच ये है कि अतीत एक सीख है, सजा नहीं, और भविष्य एक संभावना है, भय नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफर। एक नई ऊर्जा, नई सोच, ढेर सारी खुशियां और भीगे हुए मौसम के साथ।

अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को, फिल्म थी धरती। और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज हमारे देश में बड़े बड़े अस्पताल, टीकाकरण अभियान और स्वास्थ्य सेवाओं की जो मजबूत नींव दिखाई देती है, उसकी शुरुआत किसने की होगी? चलिए आज आपको हम मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने राजमहलों की सुविधाएं छोड़कर देश के स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर की। जरा कल्पना कीजिए, नया नया आजाद हुआ भारत, सीमित संसाधन, बीमारियों का प्रकोप और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी। ऐसे समय में किसी को आगे आकर यह कहना था कि एक स्वस्थ राष्ट्र ही एक सशक्त राष्ट्र बन सकता है, और यह जिम्मेदारी निभाई राजकुमारी अमृत कौर ने। उन्होंने मलेरिया और क्षय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के खिलाफ अभियान चलाए, मातृ और शिशु स्वास्थ्य को विशेष महत्व दिया और स्वास्थ्य सेवाओं को गांव गांव तक पहुंचाने के प्रयास किए। देश का सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसके निर्माण के पीछे किसका महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों? राजकुमारी अमृत कौर का। उन्होंने अथक प्रयास किए, इस संस्थान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया ताकि भारत में विश्व स्तरीय चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके। लेकिन उनका योगदान यहीं तक सीमित नहीं था, वे महिलाओं की शिक्षा, उनके अधिकारों और समाज में उनकी भागीदारी की भी प्रबल समर्थक थीं। उनका मानना था कि यदि महिलाएं स्वस्थ और शिक्षित होंगी तभी राष्ट्र सशक्त बनेगा। आज जब हम स्वस्थ भारत की बात करते हैं तो हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने इस सपने की पहली ईंट रखी थी। एक स्वस्थ राष्ट्र केवल अस्पतालों से नहीं बनता है, बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व, संवेदनशील नीतियों और सेवा के संकल्प से बनता है। राजकुमारी अमृत कौर ने हमें यही विरासत दी और इस विरासत को आगे बढ़ाना अब हमारी जिम्मेदारी है।

अभी हम सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, ये गीत फिल्म थी अनाड़ी। और दोस्तों, जब भी पश्चिम बंगाल का नाम आता है, मन में रसगुल्ले, दुर्गा पूजा और रविंद्र संगीत की छवि उभर कर आती है। लेकिन पश्चिम बंगाल का लगभग हर डिस्ट्रिक्ट भारत को एक अनमोल कला विरासत के रूप में दे चुका है। यह केवल एक राज्य नहीं बल्कि चलता फिरता कला संग्रहालय है। चलिए आज एक छोटी सी कलात्मक यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले चलते हैं पश्चिम मेदिनीपुर। यहाँ की मधुर चटाइयाँ केवल बैठने के लिए नहीं होती बल्कि बुनाई की बेमिसाल कला का प्रतीक है। और पास ही है पिंगला का पट्ट चित्रकला, जहां कलाकार गीत गाते हुए चित्रों के माध्यम से कहानियां सुनाते हैं, मानो कैनवस बोल उठता हो। अब रुख करते हैं पूर्व मेदिनीपुर का, जहां शंख शिल्प पीढ़ियों से जीवित है। इन्हीं शंखों से बंगाली विवाहित महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक शंखा चूड़ियां भी बनाई जाती हैं, जो सौभाग्य और संस्कृति का प्रतीक मानी जाती हैं। और अगर बात सुई धागे से भावनाएं बुनने की हो, तो वीरभूम की कांथा कढ़ाई को कोई मुकाबला नहीं। आज यही पारंपरिक कढ़ाई खूबसूरत कांथा सिल्क साड़ियों के रूप में भी दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। पुरुलिया के छऊ मुखौटे भी कम आकर्षक नहीं है। रंग बिरंगे ये मुखौटे केवल सजावट नहीं है दोस्तों, बल्कि लोक नृत्य की आत्मा है। नदिया के घूर्णी गांव की मिट्टी की गुड़िया दुनिया भर में अपनी जीवंत अभिव्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा लगता है जैसे मिट्टी में सांसें भर दी गई हों। हुगली के जूट शिल्प ने पर्यावरण के अनुकूल हस्तकला को नई पहचान दी है। कूच बिहार की शीतल पाटी एक ऐसी चटाई है जो गर्मियों में शीतलता का एहसास कराती है और कारीगरों के धैर्य की कहानी कहती है। दक्षिण दिनाजपुर में गोमिरा लकड़ी के मुखौटे लोक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का अद्भुत संगम है। और पहाड़ों की गोद में बसे दार्जिलिंग को हम कैसे भूल सकते हैं। वहां के तिब्बती हस्तनिर्मित कालीन अपनी बारीक बुनाई और सुंदर डिजाइन के लिए विश्व भर में सराहे जाते हैं। सोचिए एक राज्य और कितनी विविध कलाएं। इन कलाओं को बचाना केवल कलाकारों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सभी का कर्तव्य है, क्योंकि जब कोई कला खो जाती है तो उसके साथ इतिहास का एक अध्याय भी हमेशा के लिए बंद हो जाता है। मिट्टी की खुशबू, रंगों का संसार, बंगाल की हर कला में बसता है प्यार। जिलों की पहचान, विरासत का मान, इन्हें संजोना ही है सच्चे भारत की शान। और इसी राज्य के वाइब के साथ सुनते हैं खूबसूरत सा गीत।

अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोंसले को, फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी। और आजकल जरा सी थकान हुई नहीं कि मल्टी विटामिन, बाल झड़ने लगे तो सप्लीमेंट, इम्यूनिटी बढ़ानी है तो गोलियां। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति ने हमें पहले से ही कितनी अद्भुत दवाइयां दे रखी हैं? तो आइए जानते हैं कौन से फल और सब्जियां हमें किन समस्याओं से बचाने में मदद कर सकती है। संतरा, मौसमी और नींबू, इनमें

भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और सर्दी जुकाम से लड़ने में मदद करता है। गाजर, इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन आंखों की रोशनी और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। और टमाटर, इसमें पाया जाने वाला लाइकोपीन हृदय स्वास्थ्य के लिए यानी आपके हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और शरीर के हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करता है। केला पोटेशियम का बेहतरीन स्रोत है, यह रक्तचाप को संतुलित रखने और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में सहायक है। सेब, फाइबर से भरपूर यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने में मदद करता है। पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें आयरन और फोलेट प्रचुर मात्रा में होते हैं जो शरीर में रक्त निर्माण और ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक है। चुकंदर, शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने में मददगार माना गया है और सहन शक्ति बढ़ाने में भी लाभकारी है। आंवला विटामिन सी का खजाना, यह इम्यूनिटी, त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। पपीता, इसमें मौजूद एंजाइम पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और कब्ज की समस्या से राहत दिला सकते हैं। अनार, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो रक्त स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। लहसुन, पारंपरिक रूप से हृदय स्वास्थ्य और संक्रमण से बचाव में उपयोगी माना जाता है, लेकिन एक बात याद रखिए श्रोताओं, कोई भी एक फल या सब्जी किसी बीमारी का चमत्कारी इलाज नहीं है। असली ताकत है विविधता में, यानी आपकी थाली जितनी रंग बिरंगी होगी उतना ही बेहतर पोषण मिलेगा। और हाँ, यदि डॉक्टर ने किसी विशेष कमी के कारण सप्लीमेंट लेने की सलाह दी है तो उसे नजरअंदाज ना करें, लेकिन बिना आवश्यकता के केवल विज्ञापनों के प्रभाव में आकर सप्लीमेंट्स पर निर्भर होना ठीक नहीं है। शायद इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति हर मौसम में वही देती है जिसकी हमारे शरीर को उस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो अगली बार जब भी आप बाजार जाएं तो दवाइयों को नहीं, मौसमी फल, ताजी सब्जियां और संतुलित भोजन की टोकरी भर कर लाइए। सेहत किसी कैप्सूल में बंद नहीं होती है, वह हमारी रोजमर्रा की थाली में परोसी जाती है। प्रकृति के करीब आइए, प्राकृतिक पोषण अपनाइए और स्वस्थ जीवन को सेलिब्रेट कीजिए।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम को, फिल्म थी दाग। और दोस्तों, जब घर में मेहमान आते हैं और कोई पूछता है बेटी जरा चाय बना दो, तो यह बिल्कुल सामान्य सा लगता है। लेकिन अगर वही बात बेटे से कही जाए तो कई लोग हैरानी से देखते हैं, आखिर क्यों? क्या खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े समेटना या घर को व्यवस्थित रखना केवल बेटियों की जिम्मेदारी है? नहीं, ये जीवन जीने का कौशल है जो हर इंसान को आना ही चाहिए। दोस्तों, समय बदल रहा है। आज के दौर में महिलाएं घर के साथ बाहर भी अपनी पहचान बना रही हैं। ऐसे में घर की जिम्मेदारियां भी साझी होनी चाहिए और इसकी शुरुआत बचपन से ही होनी चाहिए। अगर बेटा अपना बिस्तर खुद ठीक करना सीखता है, अपनी प्लेट सिंक तक रखना सीखता है, अपनी अलमारी व्यवस्थित रखना सीखता है, तो वो केवल घर का काम नहीं सीख रहा होता है, बल्कि वो अनुशासन, आत्मनिर्भरता और दूसरों के श्रम का सम्मान करना सीख रहा होता है। और हाँ, जैसे जैसे बेटा बड़ा हो, उसे खाना बनाना भी सिखाइए। चाय बनाना, दाल चावल पकाना, अपने पसंद का एक सिंपल सा भोजन तैयार करना, ये केवल रसोई के काम नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है, ताकि भविष्य में वो अपने रोजमर्रा के कामों के लिए किसी पर निर्भर ना रहे। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक रूप से सक्षम होना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को स्वयं संभाल पाने की क्षमता भी है। उसे बचपन से ही ये समझाइए कि घर के काम कभी भी जेंडर आधारित नहीं होते हैं। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना या घर को व्यवस्थित रखना, ये महिलाओं के काम नहीं है बल्कि घर के काम हैं, जिनकी जिम्मेदारी घर के हर सदस्य की होती है। और यही सीख आगे चलकर उसे महिलाओं का सम्मान करना भी सिखाएगी। बेटों को विशेषाधिकार नहीं, संस्कार दीजिए। उन्हें अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारियां भी सिखाइए, क्योंकि एक

अच्छा बेटा केवल परिवार का सहारा नहीं बनता है, वो एक बेहतर समाज की नींव भी रखता है। हम सचमुच समानता अगर चाहते हैं तो उसकी शुरुआत घर से करनी होगी। बेटियों को सपने देखने की आजादी दें और बेटों को संवेदनशील बनने की शिक्षा दें, क्योंकि समानता की सीख किताबों से कम, घर के माहौल से अधिक मिलती है। और दोस्तों, आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमें ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है

अभी हम सुन रहे थे अलका याग्निक को, फिल्म थी जख्म। और दोस्तों, खेल के मैदान में जब कोई खिलाड़ी जीत का जश्न मनाता है, कोई रिकॉर्ड टूटता है या हार के बाद आंखों में आंसू छलकते हैं, तो उन भावनाओं को हमेशा के लिए सहेज लेता है एक कैमरा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन यादगार तस्वीरों के पीछे होता कौन है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही रोमांचक और चुनौतीपूर्ण करियर की, जिसका रिश्ता खेल और पत्रकारिता दोनों से है, यानी स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिज्म। स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट का काम सिर्फ तस्वीरें खींचना नहीं होता है, बल्कि खेल की कहानी को एक फ्रेम में बयां करना होता है। एक बेहतरीन स्पोर्ट्स फोटो कभी कभी हजारों शब्दों से ज्यादा असर छोड़ देती है, चाहे क्रिकेट में उड़ती हुई गेंद हो, फुटबॉल में गोल का निर्णायक पल, या एथलेटिक्स में फिनिश लाइन पार कर

ता खिलाड़ी, हर तस्वीर एक कहानी कहता है, लेकिन इस प्रोफेशन में आने के लिए सिर्फ कैमरा चलाना या जानना काफी नहीं है दोस्तों। सबसे पहले जरूरी है फोटोग्राफी की तकनीकी समझ, जैसे कैमरा सेटिंग्स, शटर स्पीड, लेंस का चुनाव और सही एंगल की पहचान। खेलों की जानकारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब आपको खेल के नियम और उसकी गति समझ में आ जाती है, तभी आप सही पल को कैमरे में कैद कर पाते हैं। अब सवाल है कि इस क्षेत्र में शुरुआत कैसे करें। आप फोटोग्राफी या मास कम्युनिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके अलावा कई युवा फ्रीलांस फोटोग्राफर के रूप में भी शुरुआत करते हैं और स्थानीय खेल प्रतियोगिताओं को कवर करके आप अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। हालांकि यह काम जितना रोमांचक है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। कभी घंटों धूप में खड़े रहना पड़ता है, कभी बारिश में मैच कवर करना पड़ता है, तो कभी एक तस्वीर के लिए सही मौके का लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जब आपकी तस्वीर किसी ऐतिहासिक पल की पहचान बन जाए तो सारी मेहनत सफल लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको खेलों से है प्यार, कहानियां कहना है पसंद और कैमरा आपका साथी है, तो स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिज्म आपके लिए एक शानदार करियर साबित हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग खेलते हैं इतिहास बनाने के लिए और कुछ लोग उसे कैमरे में कैद करके अमर कर देते हैं।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को, फिल्म थी माया। और दोस्तों, हमारे अधिकारों की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? जी हाँ, उनकी जानकारी, क्योंकि हमारे अधिकार तभी हमारा साथ देते

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी चोरी चोरी। और दोस्तों जरा सोचिए, अगर पेड़ों की उम्र ना बढ़े तो घनी छांव कहाँ से आए, अगर नदी आगे ना बढ़े तो सागर तक कैसे पहुंचे, फिर इंसान अपनी उम्र बढ़ने से इतना क्यों घबराता है? शायद इसलिए क्योंकि समाज ने हमें ये विश्वास दिला दिया है कि जवान दिखना ही सफलता है, झुर्रियां समस्या है, सफेद बाल कमजोरी है और बढ़ती उम्र मानो जीवन का ढलान। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। उम्र केवल कैलेंडर के पन्नों पर बदलती संख्या नहीं है, यह अनुभवों का खजाना है, रिश्तों की गहराई है और जीवन को समझने की परिपक्वता है। 20 साल की उम्र में हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, 40 की उम्र में उसे समझना शुरू करते हैं और 60 की उम्र में जीवन का वास्तविक अर्थ जानने लगते हैं। सोचिए, अगर उम्र बढ़ना बुरा होता तो हम अपने बच्चों के जन्मदिन क्यों मनाते, हर साल केक क्यों काटते? सच तो यह है कि हम उम्र बढ़ने से नहीं बल्कि उससे जुड़े बदलावों से डरते हैं। लेकिन बदलाव तो जीवन का दूसरा नाम है। विज्ञान भी यही कहता है कि स्वस्थ जीवन शैली, सकारात्मक सोच, नियमित व्यायाम और सामाजिक जुड़ाव बढ़ती उम्र का बोझ नहीं है बल्कि एक सुंदर यात्रा बना सकते हैं। इसलिए अगली बार कोई आपके सफेद बाल दिखे तो उसे छिपाने से पहले ये याद कर लीजिए कि यह आपके अनुभवों का पदक भी हो सकता है, क्योंकि उम्र का बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों, लेकिन उसे गरिमा, उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जीना पूरी तरह हमारे हाथ में है। तो आइए बढ़ती उम्र से डर ना छोड़ें, उसका स्वागत करें, क्योंकि जीवन की सबसे खूबसूरत कहानियां अक्सर उसके बाद के अध्यायों में लिखी जाती है।

0: इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फ्रित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है दोपहर के 1:11:05। मैं आपका रेडियो हम सफर राम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में। आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मशहूर संगीत निर्देशक, पार्श्व गायक और फिल्म निर्माता हेमंत कुमार के बारे में। जी हाँ, वही हेमंत कुमार जिनका पूरा नाम हेमंत मुखोपाध्याय था और उनके लिए मशहूर गीतकार सलील चौधरी और मशहूर पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने कहा था कि इनकी वाणी ईश्वर की वाणी है, यानी इनकी आवाज भगवान की आवाज है।

प्रदेश के वाराणसी शहर में आज ही के दिन यानी 16 जून 1920 को हुआ था, लेकिन मूल रूप से हेमंत कुमार का परिवार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बाद में हेमंत कुमार कोलकाता आ गए और यहीं पर उन्होंने मित्रा इंस्टीट्यूशन में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। स्कूल के दिनों में ही उनकी मुलाकात सुभाष मुखोपाध्याय से हुई, जो कि आगे जलकर एक प्रसिद्ध कवि बने। हेमंत कुमार ने इंजीनियरिंग करने के लिए जादवपुर स्थित बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया, लेकिन कुछ समय के बाद ही उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी और फैसला किया कि वो अपना करियर संगीत के क्षेत्र में ही बनाएंगे। और 1930 के दशक के अंत तक उन्होंने खुद को पूरी तरह से संगीत के लिए समर्पित कर दिया।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। दोस्तों, हेमंत कुमार ने पार्श्व गायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत सन 1940 में बंगाली फिल्म राजकुमार निर्वासन से की, जिसमें उन्होंने मशहूर संगीतकार एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में कई गीत गाए। हेमंत कुमार ने रविंद्र संगीत के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाई और अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस शैली में उनका पहला गाना रिकॉर्ड किया गया बंगाली फिल्म प्रिया बांधवी के लिए। सन 1940 के दशक में ही हेमंत कुमार इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से सक्रिय रूप से जुड़ गए, जहां उन्होंने अपने साथी सदस्य और संगीतकार सलील चौधरी के साथ एक महत्वपूर्ण सहयोग स्थापित किया। सलील चौधरी द्वारा रचित और लिखित उनके गीत गायनेर बधु यानी ग्रामीण दुल्हन की रिकॉर्डिंग हेमंत कुमार के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई।

मशहूर फिल्म निर्देशक हेमेन गुप्ता ने अपनी फिल्म आनंद मठ के लिए संगीत के रूप में एक संगीतकार के लिए हेमंत कुमार को निमंत्रण दिया और उनके कहने पर सन 1951 में हेमंत कुमार मुंबई चले आए और फिल्मिस्तान स्टूडियो में शामिल हो गए। हेमंत कुमार ने फिल्मिस्तान में कई अन्य प्रोडक्शन के लिए भी काम किया, उन्हें संगीत भी दिया और 1952 में आई फिल्म आनंद मठ का गीत वंदे मातरम तो हेमंत कुमार के संगीत की एक अनुपम सौगात है। हेमंत कुमार ने इसे एक जोशीली युद्ध धुन में ढाला था और इस गीत को आवाज दी थी लता मंगेशकर ने।

0: हेमंत कुमार जहां एक तरफ मशहूर संगीतकार के रूप में अपनी एक अनूठी छवि बना चुके थे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पार्श्व गायक के रूप में भी अपनी एक ऐसी पहचान बनाई जो आज भी लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ती है। हेमंत कुमार अपने समय के कई मशहूर अभिनेताओं की आवाज बने, जिसमें देवानंद, सुनील दत्त, प्रदीप कुमार, विश्वजीत, धर्मेंद्र आदि शामिल हैं। हेमंत कुमार ने सन 1950 के दशक में ही अपने स्वयं के बैनर तले फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा। उन्होंने हेमंत बेला प्रोडक्शंस की नींव रखी और अपनी पहली फिल्म बनाई नील आकाशेर नीचे। ये बंगाली फिल्म थी जो कोलकाता के एक चीनी स्ट्रीट हॉकर के संघर्षों पर आधारित थी और इस फिल्म के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक भी मिला।
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लो।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मशहूर पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक हेमंत कुमार के बारे में। दोस्तों, बात करें हेमंत कुमार की उपलब्धियों की तो उसकी एक लंबी कतार है। हेमंत कुमार को सन 1956 में फिल्म नागिन के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हेमंत कुमार द्वारा बनाई गई फिल्म नागिन की धुन इतनी मशहूर है जो आज भी आपको किसी न किसी छोटे बड़े प्रोग्राम में जरूर सुनाई पड़ जाएगी।

इसके बाद हेमंत कुमार को सन 1971 में फिल्म निमंत्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया। सन 1986 में उन्हें संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और सन 1988 में कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें मानद डी लिट की उपाधि भी प्रदान की गई। हेमंत कुमार को पद्म भूषण और

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

भारतीय संगीत में अपनी आवाज और अपने संगीत का जादू बिखेरने वाले हेमंत कुमार 26 सितंबर 1989 को ढाका में एक संगीत कार्यक्रम से लौटने के बाद बीमार पड़ गए और कुछ ही समय बाद दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। हेमंत कुमार के संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए और उनकी याद में कोलकाता मेट्रो स्टेशन में एक स्टेशन का नाम हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो स्टेशन रखा गया और मुंबई में एक चौक का नाम भी उनके नाम पर हेमंत कुमार चौक रखा गया। दोस्तों, आज हेमंत कुमार भले हमारे बीच ना हो, लेकिन अपने संगीत और अपने गीत के लिए वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहे।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम आपसे विदा चाहते हैं। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के शहर एविया में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी नुमाइश की सताइश की है और ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में आर्ट और कल्चर के रोल पर जोर दिया है। सरकार ने नीट UG के दोबारा इम्तिहान से कबल टेलीग्राम ऐप पर 22 जून तक पाबंदी आयद की है, जबकि मैसेज एडिट करने की सहूलत 30 जून तक मौतल रहेगी। खांसी की रोकथाम के सिर्फ लाइसेंस वाले दवा फरोश ही फरोख्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस दरखास्त पर मरकज और रियासतों से जवाब तलब किए हैं जिसमें आधार को सिर्फ शिनाख्ती सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की अपील की गई है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की सिर्फ गैर मुस्तकिल सीटों की तौसी की तजवीज को मुस्तरद कर दिया है और इस तरह की असलाहत को नाकामी के मुतरादिफ करार दिया है। और न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खवातीन

0: Thursday morning, the Prime Minister is scheduled to hold meeting with leading chief executive officers, with discussions expected to continue till the afternoon. Later, he will participate in the Vivatech Summit, one of Europe's leading technology and innovation events, where he is expected to deliver an address. In the evening, Prime Minister will attend a community event and interact with members of the Indian diaspora. The program will also feature cultural performances, showcasing India's rich heritage and strengthening people-to-people ties between India and France. Mahesh Sobre, Akashwani News, Paris, France.
1: Moving on, Lok Sabha Speaker Om Birla has emphasized the importance of greater public participation in democracy. Interacting with participants of the Vikasit Bharat Youth Parliament 2026 in New Delhi, Mr. Birla said, despite being the world's largest population with diverse cultures and varied geographical conditions, the country has emerged as the world's largest democracy after independence with increasing public participation. The Lok Sabha Speaker said that India's democracy is not merely a system of governance, but a vibrant tradition of dialogue, consensus, participation and public involvement. He added that the Youth Parliament is a powerful platform for this democratic culture, which instills in the youth the values of leadership, a sense of duty, logical thinking and placing national interest above all. Prime Minister Narendra Modi today said the last decade has witnessed a record infrastructure upgrade across the country. Sharing a post of MyGov on his social media account, Mr. Modi said, the government is committed to building next-generation infrastructure for the people of the country to realize the vision of a Vikasit Bharat. The MyGov post highlighted the country's infrastructure transformation over the last 12 years. The Ministry of Petroleum and Natural Gas has clarified that no proposal is currently under consideration by the Ministry on a proposed Middle East-India deepwater pipeline. In a statement, the Ministry said it noticed a series of media reports suggesting that the government is actively pursuing a deep-sea energy pipeline, sometimes referred to as the Middle East-India deepwater pipeline, connecting Gujarat to Oman and other Gulf countries. It added that there are no active discussions or negotiations with Oman or any other Gulf countries on this project at any level in the ministry. The government has debunked a message circulating on social media which claimed that the use of E20 fuel could lead to rejection of vehicle insurance claims. The fact-check unit of the Press Information Bureau has informed that the claim is fake. According to PIB, motor insurance policies remain valid with the use of E20 fuel. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Ahead of the re-examination of the National Eligibility Cum Entrance Test NETUG 2026, which is scheduled for the 21st of June, the government has restricted online messaging and social media app Telegram till the 22nd of this month. The National Testing Agency, NTA, has welcomed the Ministry of Electronics and Information Technology's directions for restricting Telegram access in India for a defined and limited period. In a statement, NTA said the restriction will cover the day of the NETUG 2026 re-examination and its immediate aftermath. The agency added that the platform has also been directed to disable the message editing feature for already posted messages until the 30th of this month. The government has notified an amendment to the Drugs Rules 1945, saying that exemption given for sale of cough syrups in small villages has been withdrawn. Now, sale and dispensing of cough syrups in smaller villages will be required to take place only through duly licensed pharmacies.
2: The Ministry of Health and Family Welfare has issued a gazette notification saying that the word syrup from Schedule K of the drugs rules under the heading class of drugs has been omitted. Now, with the omission of the word syrup, the exemption will no longer be available for cough syrups. Earlier, the sale of cough syrups in villages with a population of less than 1,000 was permitted without requiring compliance with certain retail sale licensing provisions. The amendment was made to strengthen regulatory oversight of syrup formulations and to align the exemption framework with contemporary public health and safety requirements. The measure is expected to promote responsible distribution and sale of cough syrups while ensuring greater compliance with regulatory standards across the country. Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
1: The special investigation team SIT constituted for the allegations of misappropriation of donations and valuables at the Ram Temple in Ayodhya began its probe today. The SIT was constituted by the state government after allegations surfaced regarding irregularities in the handling of donations and valuables offered at the Ram Temple. Authorities have not yet made any findings public and the probe is at a preliminary stage. India has cautioned that efforts to reform the United Nations Security Council could fail if the expansion is limited to only non-permanent category of membership. India's permanent representative to the UN Ambassador Harish Parvathaneni made these remarks while addressing the Intergovernmental Negotiations meeting on Security Council reforms. Mr. Parvathaneni said UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the five permanent members.
3: Reflecting expansion of the category of two-year term non-permanent category as a convergence portrays only a part of the picture. Groups and member states add qualifiers and attach other interlinked parameters as they endorse expansion in the non-permanent category. UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the P5. Groups and member states have waited this long for real and meaningful reforms.
1: In women's hockey, India has stormed into the semi-finals of the FIH Hockey Nations Cup in Auckland, New Zealand. India defeated Japan 2-1 in their second Pool A match. India will next face Uruguay in their last Pool A match of the tournament on Thursday. In the FIFA World Cup 2026, there were four draws on a single day at the World Cup for the first time since 15th of June 1958, exactly 68 years ago. In the first fixture, debutant Cape Verde produced one of the biggest upsets, keeping world number two ranked Spain restricted to a goalless draw at Atlanta. In the second fixture, Belgium and Egypt drew 1-1 in their Group G opening match at Seattle Stadium. In the third fixture of the day, Uruguay played a 1-1 draw against Saudi Arabia in their opening clash at Miami. In the last fixture, Iran secured a hard-fought 2-2 draw against New Zealand in their opening match at SoFi Stadium in Los Angeles. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to participate in G7 summit in Avignon, France this evening. Prime Minister Modi praises Varanasi exhibition in Bratislava, emphasizes role of art and culture in strengthening ties. Government bans messaging app Telegram till the 22nd of this month, ahead of NEET UG retest, message editing feature to remain disabled till June the 30th. Supreme Court seeks responses from centre and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storm into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. And with that, we end the midday news.
4: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की, संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया, संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियो में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
5: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
4: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
5: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
4: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री

0: मंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
2: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
1: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित

0: रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
1: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्यभर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और अब वक्त है कार्यक्रम किसान की बात।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: नमस्कार, सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं प्रतिमा शर्मा।
2: और मैं हूं रजनीश।
1: रजनीश, अगर हम सबसे पहले सोच ये देखें कि किसान भाइयों के लिए सबसे जरूरी क्या है। सबसे जरूरी है खेती में अच्छी पैदावार और कम लागत में ज्यादा उत्पादन।

0: हर किसान भाई की प्राथमिकता होती है और यही प्राथमिकता हमारी सरकार की भी है कि किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा उनकी जो लागत लगाते हैं उसका उत्पादन करें और उसकी कई गुना बढ़कर उन्हें पूंजी मिल सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रतिमा जी। और आप देखिए कि जब आमदनी की बात करते हैं तो बहुत जरूरी है कि वो आमदनी कैसे बढ़े हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। और कहते हैं ना कि अगर बुनियाद अच्छी होगी तभी इमारत अच्छी होगी। तो अगर हम खेत खलियान की बात करें तो अगर बात मिट्टी से की जाए तो मुझे लगता है कि मिट्टी अगर सही होगी तभी मुझे लगता है कि उत्पादन अच्छा होगा।
0: बहुत अच्छी बात कही। और लेकिन कई बार बिना मिट्टी की जांच किए उर्वरकों का प्रयोग करने से न केवल लागत बढ़ती है किसानों की बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये भी सुझाया जाता है, अक्सर हमारे कार्यक्रमों में हमारे जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो कहते हैं कि जब भी आप उर्वरकों का प्रयोग करें तो संतुलित मात्रा में करें, मिट्टी की जांच करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी मिट्टी में बहुत सारे जो पोषक तत्व होते हैं वो अच्छी मात्रा में होते हैं और आप उसके प्रतिकूल अगर डाल दें तो सोचिए आपका नुकसान हो सकता है मिट्टी।
1: तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मुझे लगता है कि आज का विषय भी यही होने जा रहा है।
0: जी, हमारा आज का विषय है संतुलित उर्वरक प्रबंधन में मिट्टी की जांच का महत्व। और साथ ही हम खेत बचाओ अभियान पर भी बात करेंगे क्योंकि 1 जून से लेकर 30 जून तक खेत बचाओ अभियान भी चल रहा है, तो हम बीच में इस पर भी बात करेंगे। और आज हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश चंद मीणा, प्रधान वैज्ञानिक मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्कार मैडम, आपको, किसान भाइयों को, सबको।
0: जी बिल्कुल, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमने आज का विषय बताया तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि मिट्टी की जांच क्या है और ये हमारे किसान भाइयों के लिए क्यों महत्वपूर्ण होती है।
2: बिल्कुल, देखो जैसे आपने अभी बात की कि मिट्टी की उर्वरकता, तो उर्वरकता को हम जैसे देख के नहीं पहचानते और उसका मेन मकसद है कि मिट्टी कितना पोषक तत्व उपलब्ध कराएगी हमारी जो आने वाली फसल को, ये हमें आंकना है। तो अब आंकने का इसमें एक जो सबसे बड़ा हमारे पास जो टूल है वो अपना मिट्टी परीक्षण है। अब उससे परीक्षण करके हम हर, क्योंकि सभी मिट्टियों का जो पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता अलग अलग होती है, अब वो कैसे जांचें, देख के नहीं पहचान सकते। तो जब हम मिट्टी का मतलब एक प्रॉपर नमूना लेके उसका जब टेस्ट करते हैं तो उसमें पता लगता है कि हमारे जितने कुल मिला के जो 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों को, तो उसमें कौन कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन पर्याप्त है, कौन अधिक है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा हम कमी को ही जांचें, लेकिन कभी कभी कोई पोषक तत्व जैसे मान लो हम लगातार डालते डालते और उसका बहुत मात्रा अधिक भी हो गई, तो वो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है। और उसी के आधार पे जैसे हम कहते हैं ना मिट्टी की जांच और फसल की आवश्यकता, ये दोनों का समन्वय जब तक नहीं होता है, तालमेल जब तक दोनों का नहीं बैठेगा, जब तक हम अधिक उत्पादन और कहते हैं कम लागत, तो कम लागत भी तभी होगी तब उनका हमको, कई बार क्या ना अपने जैसे फसल का हम देखें, कुछ फसल है जैसे सीरियल फसल है दाने वाली, उनकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही आप पल्स में जाओगे, आप ऑयल सीड में जाओगे, आप दूसरी क्रॉप में जाओगे, उनकी रिक्वायरमेंट एक पर्टिकुलर पोषक तत्व की कम होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने यदि टेस्ट कराया उसमें पहले से कितना है और कितना उसकी आवश्यकता है, तो वो जो गैप है वो गैप भरने के लिए हम बाहर का सोर्स लेते हैं।
0: तो रजनीश, इस विषय से संबंधित अगर हमारे श्रोता भाई कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो जरूर पूछें, इसके लिए नंबर बता दें।
1: और नंबर जो हमारा है, जो दिल्ली से बाहर के हमारे श्रोता हैं उनके लिए जो एसटीडी कोड है वो है 011 और फोन नंबर है 2342101081 और दूसरा नंबर है 2342101083। तो इस विषय से जुड़ा अगर आपका कोई भी प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो आप फोन करके पूछ सकते हैं और डॉक्टर साहब उसका सीधा आपको समाधान देंगे।
0: जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने मिट्टी की जांच के बारे में बात की, तो किसान भाई अगर मिट्टी की जांच करा लेता है तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां उसे प्राप्त हो सकती हैं, उससे क्या फायदा हो सकता है?
2: बिल्कुल मैडम, देखो जब हम मिट्टी की जांच कराते हैं तो जैसे क्या होता है ना, हम जैसे लगातार किसान भाई सदियों से खेती करते आ रहे हैं, तो खेती के में क्या होता है ना, कभी कभी हमारे जो प्रैक्टिस है, जो पद्धति हम अपना रहे हैं, चाहे अपन कोई इनपुट डालने की है, चाहे अपना वाटर मैनेजमेंट का है, हमारा वाटर की क्वालिटी क्या है, या हमारे बहुत सारे ऐसे लोकली रिसोर्स जिनका हम यूज करते हैं खेती में, तो लगातार वो कर रहा है तो उनका क्या हो रहा है कि मिट्टी पे क्या प्रभाव आ रहा है, जैसे सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक

0: हो सकता है, तो वो कहना, वो आकलन करना बहुत जरूरी है। और वो आकलन हमारा मिट्टी का, जैसे जो कहते हैं परीक्षण, वो ही आपको ये खबर देगा। तो इसलिए सबसे पहले ये कोई जरूरी नहीं है कि मिट्टी का में कमी हो गई, खराब हो गई, तभी हम उसका परीक्षण कराएं। इवन हमारी जांच वो पहले से कराएं, जिससे हम उसको बरकरार रखें। यदि अच्छा स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य भी हमेशा वो अच्छा बना रहे, तो समय समय पर उसकी जाँच कराएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि मिट्टी में क्या विकार उत्पन्न हो गए, तो उनका जो आकलन करना, उनका ये करना, ये भी हमारे मिट्टी परीक्षण से आता है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो,
2: नमस्कार जी,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं और सवाल पूछें।
2: परमवीर बोल रहा हूँ, गांधीनगर दिल्ली से। डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग किचन गार्डन अपनी छतों पे हमने काफी गमले लगा रखे, तो हम अगर मिट्टी की जांच ना कराएं, और हम ऐसी कौन सी खाद या कौन सी ऐसा केमिकल या क्या चीज डालें जो इस बैलेंस के तौर पे हमारे को हमारे पौधे और स्वस्थ रहें, फूल आए, और जो भी हमने सब्जी लगा रखी वो हमें मिलती रहे, तो इसकी जानकारी चाहिए।
0: देखो किशन भाई, जैसे आपने कहा कि हम जांच नहीं कराएं, तो देखो जब हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, संतुलित की बात कर रहे हैं, तो देखो हमको आकलन करना बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई देखो बैलेंस तो जब ही होगा ना, जब हमको पहले से मालूम होगा कि क्या कमी है या कितना कौन है। और हमारी जो फसल ले रहे हैं, जैसे चाहे किचन गार्डन है, हम सब्जी भी उगा रहे हैं, तो सब्जियों में जैसे आपके पोषक तत्व हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उसमें योगदान रहता है। अब आपने मान लो परीक्षण नहीं कराया और कहा कि भाई हम जैसे कह रहे हैं कि 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता है, 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता है, तो वो 17 के 17 डालना तो जरूरी नहीं है
1: जी।
0: क्योंकि आपको कभी कभी हो सकता है सूक्ष्म पोषक तत्वों की यदि मात्रा ज्यादा हो गई तो वो नकारात्मक भी प्रभाव डालता है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे किचन गार्डन की अभी इन्होंने बात की, और दिल्ली और उसके आसपास बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो किचन गार्डनिंग करते हैं, उनको शौक होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारी चीजें जैसे हरी मिर्च लगा ली, टमाटर लगा ली, बैंगन, वो तो आ जाते हैं, लेकिन अगर तुरई और घिया, लौकी लगाते हैं तो वो नहीं आते, इसका कारण क्या होता है?
0: देखो ये जो हमारी जितनी बेल वाली फसल है, ये बहुत सेंसिटिव फसल होती है। इनमें जैसे आपका जैसे सेलिनिटी का, हमारा जैसे दिल्ली के आजूबाजू का या दिल्ली की मिट्टी में लवणीयता का एक मेन कारक है।
1: अच्छा।
0: और उसमें यदि लवण है, इवन सॉयल कभी कभी मिट्टी में होता है, कभी पानी में भी होता है। हमारा यहाँ का पानी, जैसे आप टीडीएस की बात करो तो बहुत 2000 से भी ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है कि साल्ट है। और वो आपने जांच नहीं कराया और उसे करेंगे, तो ये जितने भी हमारी बेल वाली चीजें होती हैं, जो चाहे सब्जी हो या कोई भी फसल हो, ये बहुत सेंसिटिव होती हैं। अब इसमें मान लो आपका मिट्टी में पहले से लवणीयता है और दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, ये दोनों के लिए वो बड़ी सेंसिटिव है। अब जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, लौकी लगती तो है लेकिन वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है,
1: छोटी
0: हो जाती है, तो ये बोरोन को इंडिकेट करता है। अगर भाई आपका जैसे मान लो एक अच्छा, इवन कई बार जैसे साइज का भी होता है, कोई भी सब्जी का आपका प्रॉपर उसका साइज नहीं आ रहा, हेल्दी नहीं हो रहा, उस पर ब्राइटनेस मतलब चमक नहीं है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें पोषक सूक्ष्म तत्वों की कमी है। अब ये जो टेढ़ा मेढ़ा होना, पत्तियों का जैसे ऐसे कटोरी नुमा बनना, ये सब बोरोन को दिखाता है। तो किसान भाइयों को हम ये भी बताते हैं कि कभी कभी आप जो इंडिकेशन है उससे भी पहचान लो, लेकिन असली कंफर्म करना तो देखो परीक्षण के लिए जाना है
3: जी। क्योंकि बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आप देखा परीक्षण के लिए तो जाना है, लेकिन अब ये बात है कि जाना कब कब है, कौन सा वो समय है कि जब जब मिट्टी की जांच की हर महीने कराना है या 6-6 महीने बाद, तो सही समय क्या है कि जब किसान भाई अपने खेत की मिट्टी लेके जाएं और जांच कराएं, तो समय बताइए।
0: बिल्कुल, देखो हम किसान भाइयों को ये एडवाइस करते हैं कि जब भी आपका खेत खाली होने जा रहा हो
3: जी।
0: जैसे आपको जब भी फसल बोया, फसल में क्या होता है ना कि जब फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी हो जाती है, जैसे किसान को लगता है कि अब 10 से 15 दिन बाद हम फसल काटने जा रहे हैं, तो उस टाइम तक क्या ना, जो पहले जितने भी उर्वरक आपने डाले उनका जो उसमें प्रभाव होता है वो बराबर हो जाता है, मतलब यूनिफाइड और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद आप सैंपल ले सकते हो, और सैंपल अगली फसल मतलब बोने का आपको कम से कम 1 वीक 10 दिन का टाइम चाहिए, जिससे लैब इतने दिन में टेस्ट करके आपको उसकी परीक्षण रिपोर्ट दे दे। कभी कभी क्या होता है, किसान भाई को सोइंग करना है 1-2 दिन में, और उससे पहले वो यदि लैब जाता है तो टाइम पे परामर्श नहीं आती। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम सैंपल कब लें, तो सैंपल सैंपल लेने का तरीका, मतलब समय जो सबसे बढ़िया है वो ये है कि खड़ी फसल में ले सकते हैं, लेकिन कब ले सकते हैं? जब वो हार्वेस्टिंग के टाइम तैयार हो रही हो। ऐसा नहीं कि अभी बुआई किया हो, अभी फर्टिलाइजर डाला है, ये डाला है, उसके बाद हम नमूना नहीं ले सकते, और खाली खेत में से भी नमूना ले सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि आने वाली जो फसल बोने से कम 10 दिन पहले आप नमूना लेके लैब को दे दें, क्योंकि 10 दिन का समय कम से कम लैब को चाहिए जिससे

0: या कौन कौन सी फसल ली, उसके आधार पे तीन साल में क्या चेंज हो गया, ये भी उनको देखना चाहिए।
1: जी जी। तो डॉक्टर महेश, ये भी बताएं कि हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो अनुमान के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करते हैं कि इतना डाल देंगे तो बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाएगा, तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं मिट्टी को और हमारे किसान भाइयों को भी?
0: देखो, अभी आपने जो सवाल जो खड़ा किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और जितने भी आज जो भारत सरकार के जो भी अभियान है, जो स्कीम है, वो इसी के आजू बाजू है। मतलब ये हम ये बताना चाहते हैं किसान को कि अनुमान लगाना छोड़ दो, क्योंकि इससे आपको कहीं फायदा होने वाला नहीं है। किसान भाई क्या करता है ना, अपना जो आपने सही बोला कि आज भी जो है वो अनुमान से चलता है कि इस बार मैंने पिछली बार एक बैग डाला, इस बार मेरे को हाफ बैग इसमें प्लस कर देता हूं तो मेरे को हो सकता है कि ज्यादा वो मिले। अब वो ये नहीं समझ रहा कि जितना वो जैसे जैसे एक पर्टिकुलर, और ज्यादा वो यूरिया ही बढ़ाता है। आप यदि किसान भाई को पूछेंगे, बाकी और SSP DAP पोटास या सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा नहीं बढ़ा रहा, इवन डाल ही नहीं रहा, वो एक यूरिया पे फोकस करके चल रहा है, और जिसका इतना नकारात्मक प्रभाव है, जो हमारी प्राकृतिक उर्वरकता जो मिट्टियों की थी वो धीरे धीरे इसी के कारण खत्म हुआ, और इसी के कारण आज हम किसी भी हमारे देश की कहीं की भी मिट्टी आप जांच कराओ, और वो उसमें यदि प्रॉपर यदि किसान ने उसका उर्वरक और खादों का उपयोग नहीं किया तो 5 से 6 पोषक तत्वों की कमी आ रही है। उसका कारण यही है जो आप कह रहे हो ना, अनुमान से हर काम अनुमान से करता चला गया, और धीरे धीरे माइंड होके इसमें बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, विकार उत्पन्न होते जा रहे हैं।
2: तो कहने का मतलब है कि अभी अंदाज का जमाना नहीं है, अभी सटीक खेती करनी है।
1: सही, अनुमान नहीं बल्कि आपको कितनी मात्रा है उसका मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है।
2: तो डॉक्टर साहब, एक सवाल और मेरे जहन में उठ रहा था कि आपने समय तो बता दिया, लेकिन आप सही जांच हो तो उसके लिए नमूना भी सही होना चाहिए, तो नमूना किस तरह से लें मिट्टी का, कि जो हमारा जो कहते हैं ना कि रिजल्ट्स जो आउटकम्स हैं वो सही सही आए, तो सैंपलिंग कैसे करनी चाहिए?
0: बिल्कुल रजनीश जी, आपने मतलब बिल्कुल सही बात बोला है। देखो, जो परीक्षण होगा, जांच होगा, परामर्श होगी, वो तो नमूने पे ही होगी, और यदि आपका नमूना सही नहीं है तो फिर आगे का प्रोसेस सब गलत हो गया। और किसान भाई इसमें अक्सर गलती करते हैं, जैसा हमने भी पाया है, बहुत ज्यादा करते हैं। तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूं, आप जब भी नमूना लें जिसमें तीन चीजें आप पहले देख लो, एक मिट्टी का कलर, एक मिट्टी का कणाकार, एक मिट्टी का स्लोप, इनमें आपको लगता है कि सब एक जैसा है, यूनिफॉर्म है, मतलब सब कुछ ये तीनों में एक जैसा मिट्टी है, तो हाफ हेक्टर तक आप एक सैंपल ले सकते हो, आधे हेक्टर तक का। यदि आपका लगता है कि बहुत ज्यादा, इतने बड़े खेत हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी लगता है आपको ज्यादा है और सब में यूनिफॉर्म है, तो मैक्सिमम आप एक हेक्टर तक का एक सैंपल, इससे ज्यादा नहीं जाना। फिर आपको क्या है ना, जितना भी बॉर्डर है जो बेड के पास है, कभी भी सैंपल नहीं उठाना है, वहां से 2 मीटर आपको छोड़ना है। कहीं पे आपका बीच में ट्री हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, ट्यूबवेल हो सकता है, कंपोस्ट पिट हो सकता है, बहुत सारी चीजें जो खेत में हो सकती है किसान के यहाँ, उनसे भी आपको 2 मीटर हटना है। और जो ओपन एरिया बच गया वहां से कम 15 से 20 जगह से मिट्टी लेना है। और एक और इसमें फैक्टर होता है जो किसान भाइयों को, डेप्थ का, अगर मिट्टी कितनी डेप्थ से उठाना है। तो इसमें हम जितनी फसलें हैं, हम दो प्रकार की, हम दो भागों में बांटते हैं। एक होती है सीजनल फसल, जो एक सीजन में खत्म हो जाती है, दूसरी है पेरिनियल, जो वर्षों वर्षों तक चलते हैं, जैसे बाग है, मेडिसिनल प्लांट है। तो हमारी जितनी भी सीजनल फसल है जो एक सीजन में खत्म होती है, उनको 0 से 15 सेंटीमीटर का सैंपल चाहिए, जिसको 6 इंच का भी कहते हैं कई किसान भाई। तो इसमें क्या है ना, सरफेस से, इसमें भी एक गलती करते हैं कि किसान भाई मिट्टी को सरफेस से हटाते हैं, तो उसको सतह से हटानी नहीं है, लूज मटेरियल है, कोई मतलब क्रॉप पार्ट है, वीड्स है, कोई स्टोन है, ऐसी चीजें उनको हटा सकते हो, लेकिन मिट्टी नहीं हटाना। और फिर आपको 0 से 15 सेंटीमीटर की मिट्टी उठाना है, 15-20 जगह से उठा के उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको अच्छे से मिक्स करके उसमें से 300 से 500 ग्राम मिट्टी लैब को भेजना है।
2: अच्छा, जब आप लैब में जो नमूना भेजते हैं जब, तो किसी पॉलीथिन में डाल के, तो उसमें भी कुछ मार्किंग करनी होती है?
0: बिल्कुल, देखो जैसे किसान भाइयों को अक्सर अपना नाम और एड्रेस और खसरा नंबर, ये तो कॉमन चीजें हैं, ये तो लिखना ही है, लेकिन एक चीज और उसमें लिखना है कि इससे पहले लगभग 5 साल में ये खेत किस चीज के लिए उपयोग किया गया। कई बार क्या होता है ना कि जो टेस्ट वैल्यू आती है बड़ी अनयूजुअल आती है, और उसमें क्या होता है कि जो लैब का वो होता है उसको परीक्षण के आधार पर जो वैल्यू आई है उनको समझने में और
1: आसानी हो जाती है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर और जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो।
3: हेलो, नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
3: उत्तराखंड से बोल रहे हैं मैम। हमारे जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं हमारे पहाड़ में,
1: हाँ जी,
3: हम क्या बोलते हैं पहाड़ के हैं, तो हम मिट्टी की जांच कहाँ पे कराएं और कैसे कराएं?
1: अच्छा,
3: और हम जो हमारे जो सीढ़ी

0: हमारे जो खेत होते हैं 30 स्टेप से अगर हम सेंटर से मट्टी उठाते हैं या कोने से मट्टी उठाते हैं तो चलेगा क्या?
1: अच्छा, आपका नाम बता दें अपना।
0: उत्तराखंड से बोल रहे हैं हम।
1: उत्तराखंड से आपका नाम क्या है?
0: पवन। पवन,
1: पवन जी बोल रहे हैं। ठीक है पवन जी,
0: अभी हमने भुट्टे लगा रखे मैम।
1: अच्छा,
0: उसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: जी जी बिल्कुल जरूर बताइए डॉक्टर साहब।
2: हाँ, तो पवन जी आपको ये बताना चाहें कि आपकी जो सिड्डीनुमा खेती होती है इसमें जितना भी आपके कंटूर, इनको अपन कंटूर बोलते हैं, तो ये कंटूर में से हर कंटूर में से आपको मिट्टी लेना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे कुछ कंटूर हैं जो कि वहां से रन ऑफ हो रहा हो यदि पानी
3: जी।
2: जैसे आपने क्या ना, इसमें एक ही कंडीशन किसान भाई को रखना है कि जितना बरसात का पानी है उसको मिनिमम अपने कंटूर और वो सिड्डी नुमा से बाहर निकलने नहीं देना है, क्योंकि दोगे तो फिर उसमें क्या ना हर कंटूर का वेरिएशन आएगा। और आपने यदि प्रॉपर उसको मैनेज कर रखा है तो आपका जैसे जितने कंटूर हैं, जितने बार जैसे मान लो आपको हर कंटूर से लगभग 5 से 6 जगह से मिट्टी उठानी है और उन सबको मिक्स करके उसका करना है। लेकिन ये ध्यान रखे कि यदि कहीं आपको लगता है कि यहां से पानी आपका रन ऑफ हो गया या कुछ हो गया तो इसका मतलब वो बहुत वेरिएशन दे देगा, फिर उसका अलग से नमूना लेना है।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो,
3: लगता है फोन कट गया।
1: जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब अभी हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी बातें हैं, एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और फिर आपके पास वापिस आते हैं।
4: प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
7: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर किसान की बात कार्यक्रम। आज का विषय है संतुलित उर्वरक प्रबंधन में मिट्टी की जांच का महत्व। और डॉक्टर साहब, एक हमने और भी टॉपिक बोला था कि खेत बचाओ अभियान, तो खेत बचाओ अभियान क्या है, क्योंकि 1 जून से लेकर 30 जून तक ये अभियान आपने, मतलब हमारी भारत सरकार ने शुरू किया है, तो क्या उद्देश्य है इसका?
8: ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी कृषि जागरूकता पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी की सेहत सुधारना, खेती की लागत कम करना और किसानों को टिकाऊ एवं वैज्ञानिक खेती के लिए प्रेरित करना
7: जी।
8: ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। और इसमें जितने भी हमारे जो कृषि विभाग हैं और जिसमें हमारे चाहे ICR के इंस्टीट्यूट हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे जितना कृषि विभाग है, ये इसमें सब एक साथ कनेक्ट होके किसान को ये जागरूक कर रहा है। और जागरूक करने का उसमें सबसे पहला यही है कि हमारा जो खेती है, मिट्टी है इसे विशेषकर, तो इसका जैसे हम कैसे रख रखाव करें, अब तक हम क्या कर रहे हैं। पहले इसमें ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक अपनी बात ही बता रहा है, किसानों से भी पूछ रहे हैं कि आप क्या क्या कर रहे हैं और वो क्या क्या कर रहा है उसमें कहीं करेक्शन की जरूरत है, कहीं सुधार की जरूरत है, तो वो उसको बता के कि आप यहाँ पे ये गलत कर रहे हैं, इसको आप ऐसा नहीं करके ऐसा करिए। तो ये जागरूकता अभियान में मतलब दोनों चीजें हैं कि
7: उसको सब क्या खेत तक जाया जाता है, हमारे कृषि वैज्ञानिक जाकर मतलब डेमो करते हैं, उनको बताते हैं, या संगोष्ठी होती है आपके यहाँ, किस तरीके से उनको जागरूक किया जा रहा है?
8: नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, गांव-गांव जाके। अच्छा। आप यदि देखें डेली, मतलब जैसे अब आप हमारे संस्थान की बात करें
7: जी।
8: तो डेली का 10 टीम जाती है।
7: अच्छा।
8: और 10 टीम लगभग, कोई टीम 4 गांव कवर कर रही है, कोई 2 कवर करती है, उनका जैसे उस कैपेसिटी के अनुसार वहां पे, और वो जो वहां लोकल KVK है उसको साथ में लेके हर गांव में जाना और किसानों को इकट्ठा करके उनके खेत पे भी, इवन कई किसान भाई अपना खेत भी दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि सर हमारे यहाँ ये समस्या है, तो उसको वो देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं और उसका वहीं पे वो निवारण भी बता के उनको आ रहे हैं।
9: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि ये खेत बचाओ अभियान चल रहा है, तो आपको क्या लगता है जब वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक और किसान एक साथ खेत में खड़े होते हैं, तो उसका क्या फायदा मिलता है, क्या लाभ होता है इस तरह के अभियानों में?
8: उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि किसान भाई को कई बार, जैसे आप अभी जैसे हम प्रोग्राम के तहत सुना रहे हैं, कभी हम जैसे गोष्ठी वगैरह में बताते हैं, तो किसान क्या होता है, कभी कभी उसको लगता है कि अच्छा ये एक्सपर्ट है, ये तो बता रहे हैं, लेकिन जब खेत में खड़े होते हैं, जब वो अपना बताता है कि देखो सर मेरे यहाँ ये हो गया, और उसको वहीं पे प्रैक्टिकली करके बताया जाता है, तो उसको फिर इतना विश्वास होता है, इतना वो खुश होता है कि अरे सर ये तो ऐसा हमने खाली सुना था ये, लेकिन अभी हम आप कह रहे हैं तो देख रहे हैं, तो वो उसको बहुत
7: विश्वास करता है
8: जो, हाँ उसको जो सेटिस्फेक्शन होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ऐसे अभी आप सैंपलिंग की बता रहे, जैसे किसान भाई को हम कहते हैं कि ये सैंपल उठाओ ऐसे करो, तो वो कई बार ऐसा नहीं, लेकिन जब हम जाते हैं तो कई बार उसको हम डेमो देते हैं, सैंपल कलेक्शन भी हम कराते हैं अपने हाथों से, तो उनको लगता है कि अरे सर ऐसा तो हमने कभी नहीं किया, हम तो चारों कॉर्नर से उठा लेते थे, तो हम उनको ये बताते हैं देखो इसलिए आपका ये गलत था, क्योंकि कई किसान भाई जब हम फील्ड में जाते हैं हमें बताते हैं अक्सर हमने टेस्ट कराया, रिपोर्ट आया, लेकिन हमें फायदा नहीं हुआ, तब हम उनसे पूछते हैं कि कैसे सैंपल लिया, तो बताता है कि सब चारों कोनों से उठाया, तो हमने कहा यही गलत हो गया।
7: तो मुझे लगता है वाकई में बहुत अच्छा प्रयास है, और हर किसान तक अगर इस तरीके से एक्सपर्ट जाएंगे हमारे कृषि वैज्ञानिक, तो एक खुशी तो होती है, साथ ही साथ विश्वास बहुत तरीके से जमता है।
9: बिल्कुल, और विश्वसनीयता की वजह से इस तरह के अभियान मुझे लगता है कि सफल होते हैं, और इसी वजह से ये खेत बचाओ अभियान जो कि 30 जून तक चलेगा।
7: तो डॉक्टर साहब, इसमें एक और है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो हमारे भारत सरकार की है, तो इसमें कितना उनको लाभ पहुंच रहा है किसान भाइयों को?
8: बिल्कुल, देखो जैसे अभी आपने कहा खेत बचाओ अभियान,
7: हाँ
8: इसमें ये भी एक चीज है कि किसान भाई अपना जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसको भी लेके आता है, कि सर कई बार क्या होता है ना, कई जैसे बहुत किसान तो बहुत अच्छे जागरूक हैं, वो सब चीज समझते हैं, लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे किसान हैं उनके पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, लेकिन उसका मतलब उसको पढ़ना समझना वो अभी भी बहुत सारे किसानों को नहीं आता। तो अब क्या आता है ना, कभी कभी वो एक्सपर्ट से संपर्क में आते हैं तो ठीक है, लेकिन अब खेत बचाओ अभियान में, क्योंकि हर गांव में जब एक्सपर्ट जा रहे हैं तो वो लेके आता है और वो बताता है कि इसमें सर बताइए हमको इसमें क्या करना है, तो उसमें हम बताते हैं कि देखो आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आपका जो टेस्ट वैल्यू है परीक्षण वैल्यू है वो दिया है, इसमें कम है ज्यादा है देखो ये भी लिखा है, आपकी जो तीन जो मेजर क्रॉपिंग सिस्टम है जो आप फसल अपनाते हैं उसका इसमें परामर्श लिखा है, और आपको कितना मतलब कौन कौन सा फर्टिलाइजर कितना डालना है कितना कम करना है वो भी उसमें लिखा है। तो और दूसरी देखो ये जितने अभियान है आपको मैं बताऊं, जो भारत सरकार का ये बहुत बड़ा जो स्कीम था जो हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी बात जो अभी अपन ने एक जो क्वेश्चन पवन जी का देखा था कि किचन गार्डन, मतलब पहले लोग खेतों के बारे में नहीं सोचते थे लेकिन अभी किचन गार्डन का भी वो मिट्टी टेस्ट कराना चाहते हैं, तो ये जागरूकता है लोगों में, ये आ रहा है कि नहीं मिट्टी का भी कोई स्वास्थ्य होता है, तो ये बहुत बड़ा सक्सेस है और लोगों में अवेयरनेस जैसे इससे बहुत ज्यादा आया, और इसीलिए देखो अभी उसी को ये जितने अभियान है उसी की कनेक्टिविटी में,
7: उसी की कनेक्टिविटी में। तो डॉक्टर साहब जैसे कि आज का हमारा विषय है उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करना, तो आज के समय में जैसे जैविक खाद हो गई हरी खाद हो गई रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को?
8: देखो इसका जो सबसे बड़ा है हमारा जो एकीकृत पोषक प्रबंधन जो हम कहते हैं ये इसका बैलेंस में, अब इसमें सबसे पहले क्या होता है ना, हम किसान को ये गाइड करते हैं अब जैसे मिट्टी परीक्षण के आधार पर आपको पता लग गया कि हमें कितना डालना है, अब डालने में आप सबसे पहले आपके पास जो अवेलेबल है लोकल जो आपके पास चाहे कंपोस्ट हो वर्मी कंपोस्ट हो या आपने हरी खाद किया हो तो उससे ऑलरेडी आप कितना पोषक तत्व दे चुके क्योंकि उसका आकलन उससे हो जाएगा। अब आपकी कौन सी फसल आप लेने जा रहे हो, क्योंकि हमने कहा ना कि मिट्टी परीक्षण जांच और फसल की आवश्यकता ये दोनों को करना है तभी आपका बैलेंस होगा। तो बैलेंस करने के लिए अब जब आपने ऑलरेडी पहले यदि आपका पूरा हो गया तो आपको जितने भी हमारे केमिकल फर्टिलाइजर हैं जो रासायनिक उर्वरक जिनको बोलते हैं उनका कम उपयोग करना है। तो हम किसान भाई को यही करते हैं कि ज्यादातर आप पहला आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए जो लोकल रिसोर्स आपके पास क्या है उनको पहले आप पूरा कीजिए, फिर आपको लगता है कि

0: आपके पास अभी कमी पड़ रहा है पोषक तत्व की, क्योंकि आप जो फसल ले रहे हो उसकी आवश्यकता ज्यादा है, तो आप थोड़ा सा केमिकल उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। यदि इस पद्धति से चलें तो हमें हमारी मिट्टी का कोई स्वास्थ्य और कुछ भी खतरा नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं उल्टा चलते हैं। किसान भाई क्या करता है, पहले रासायनिक उर्वरक को प्रायोरिटी देता है और जो हमारी हरी खाद और जितने अपने कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट बोला इनको, मतलब मैं अभी हम गांव-गांव जो जा रहे हैं या पहले से भी हम किसान के संपर्क में हैं, तो कई कई किसान भाई ऐसे हैं 15 साल हो गए 20 साल हो गए कभी उन्होंने कोई कंपोस्ट नहीं डाला, तो आप सोचो उस मिट्टी का स्वास्थ्य क्या होगा। केमिकल से स्वास्थ्य चलने वाला नहीं है।
1: तो डॉक्टर साहब एक सवाल है मेरा यहाँ पे कि जैसे बहुत सारे किसानों में ये मिथ भी है कि ज्यादा रासायनिक खाद डालेंगे तो ज्यादा पैदावार होगी, तो क्या प्राकृतिक जब खेती करते हैं या इस तरह के उर्वरक डालते हैं वर्मी कंपोस्ट वगैरह, तो इससे भी उत्पादन हमारा अच्छा हो सकता है?
0: नहीं हो सकता, नहीं होता है। आप केमिकल से सस्टेन नहीं कर सकते, जो मैडम ने कहा ना कि अनुमान से, जो पहले वो बात सही है, केमिकल में आपको हमेशा अनुमान से प्लस करके चलना है, लेकिन आप जैसे प्राकृतिक जितने भी हमारे जैविक और जो कार्बनिक खादें हैं इनका उपयोग करोगे तो आपको उससे नहीं जाना पड़ेगा और आपको हमेशा जो रासायनिक खादों की कम से कम आवश्यकता होती है, तो और उससे जाओगे तो हमेशा आपका देखो मिट्टी का खराब होगा ना, आपने जो प्रोड्यूस किया उसकी क्वालिटी खराब, अपने वातावरण की क्वालिटी खराब, तो सबको वो डिस्टर्ब करता है।
2: तो डॉक्टर साहब अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे किसान भाई बहनों को?
0: देखो मैं किसान भाइयों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि वो मिट्टी की जांच तो अवश्य कराएं और उसके आधार पे आप सबसे पहले जो हमारे जो भी लोकल अवेलेबल हैं आपके पास, चाहे हरी खाद आप करते हो तो अच्छी बात है, वर्मी कंपोस्ट है आपके पास, गोबर की खाद है, या आपका जैसे लोकली कोई इंडस्ट्री, जैसे इंडस्ट्री स्पेशल जैसे सुगर केन की इंडस्ट्री है तो प्रेसमड वहां निकलता है, वो बहुत अच्छा एक सोर्स है, तो ये सब चीजों का पहले उपयोग करें और उसके बाद आपको लगता है कि कहीं उर्वरक की और पोषक तत्व की कमी है तो ही आप रासायनिक खादों पे जाएं, अदरवाइज इनका कम से कम उपयोग करें।
2: जी तो डॉक्टर मीना आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं, इतनी अच्छी और विस्तृत तरीके से आपने जानकारी दी। और रजनीश अब चूंकि समय खत्म हो रहा है कार्यक्रम का, अपने किसान भाई बहनों से हम विदा लेते हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल, प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर, और आपकी सेवा में प्रस्तुत किया प्रतिमा शर्मा और
1: रजनीश ने यह कार्यक्रम।
2: और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों और भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक तथा अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेता आपसी हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम

0: एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Avignon, France today on a 2-day visit to participate in the G7 summit. This marks the Prime Minister's 7th consecutive appearance at the G7 summit and India's 13th participation in this crucial multilateral event. The G7 summit

मुद्दतें गुजरी मुलाकात हुई थी तुमसे, मुद्दतें गुजरी मुलाकात हुई थी तुमसे, फिर कोई और न आया नजर आईने में। स्वागत करती हूं मैं अपराजिता आप सभी का मनभावन प्रोग्राम में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और ऐसी ही एक मुलाकात लेकर मैं आ गई हूं आप सभी के साथ, आपकी पसंद के गाने आप तक पहुंचाने के लिए। और ऐसी कई मुलाकातें हम कर चुके हैं और आईने में देखिए हमें आप और हम ही नजर आते हैं, तो आपके गीत होंगे और हमारा चैनल होगा। बिल्कुल, आप अपनी पसंद हमें लिखकर भेजेंगे fmgoldaiadelhi@gmail.com पर। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी पसंद के गाने आप तक पहुंचाने की अब से लेकर 4 बजे तक। तो पहला गाना मैं आपको सुनवा रही हूं और इसके बाद आप अपनी रिक्वेस्ट जल्द से जल्द भेजिए हम तक। साजन फिल्म से ये गाना आप सभी के लिए। ईमेल आईडी एक बार फिर से आप सभी के लिए दोहरा देती हूं fmgoldaiadelhi@gmail.com। आप फिल्म का

0: ढेर सारे आपके मैसेजेस हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं आपकी ईमेल्स के साथ। पहली ईमेल अगर मैं ढूंढूं तो मुझे काफी पीछे के पेजेस पर जाना पड़ेगा। इसका मतलब कि बस 5-7 मिनट में ही आप लोगों ने इतने सारी ईमेल्स हमें भेज दी है। पहला संदेश हमारे पास पंकज कुमार का आता है और पंकज हमें मैसेज भेजते हैं दिल्ली से और अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं। इसके बाद मैसेज मिलता है सुजाकर जाधव का, आप जाफराबाद से हमारे साथ हैं और यकीन मानिए जब तक मैं आपकी मेल पर क्लिक करती हूं इतने में वो मेल निकलकर जो नाम पढ़ा होता है दूसरी मेल पर चला जाता है। तो इसीलिए कई बार आपको लगता होगा कि क्या बात है, नाम बोलने के बाद पॉज क्यों आ रहा है, क्योंकि इतनी स्पीड से ईमेल बढ़ रही है। सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, कुमार संचित वायल, कुमार प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना, आप सब प्रोग्राम सुन रहे हैं और लगता है प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं, हम सबको करना चाहिए। बहुत सारे पेड़ों के इमोजीज आपने भेजे हैं और गर्मी में जब धूप निकली हो ना, तो जैसे आज तो धूप छांव का खेल चल रहा है, सुबह बादल थे, कई जगहों पर बहुत तेज बारिश भी हुई, कहीं नहीं हुई, लेकिन वही है कि अब दिन में जब इस समय अगर आप बाहर देखते हैं, अगर मैं यहां की बात करूं, स्टूडियो की बात करूं, तो यहां से जब आप स्टूडियो से बाहर देखते हैं तो बहुत तेज धूप नजर आ रही है, तो पेड़ों की छांव हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसे ही आपके पेड़ों के इमोजीज देखकर मुझे विचार आ गया। बोधराज खोरवाल प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और आप हाफ टिकट फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ है कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। अगला मैसेज हमें रविन्द्र मोहनदास का मिलता है और आप कोई भी गाना सुनना चाहते हैं हमारी पसंद का। किशनगंज बिहार से आप आशा देवी के साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं और आप हमारे एक रेगुलर लिसनर भी हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी भी इसी कड़ी में शामिल हैं और आप तराना फिल्म से एक गाना सुनना चाहते हैं और मिथुन चक्रवर्ती को आप जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बान और आपके परिवार के सभी सदस्य हैं आपके साथ। हरजिंदर सिंह भाटिया भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। सनम तेरी कसम से आप एक गाना सुनना चाहते हैं एंजल सोनू और पप्पी भाटिया के साथ। और इशाक मोहम्मद का भी मैसेज हमें मिला, धर्मवीर से आप एक गाने की रिक्वेस्ट करते हैं। आपके साथ है खदीजा बेगम, अशफाक, आफरीन कौसर, अल्ताफ, निलोफर फातिमा। छत्तीसगढ़ रायपुर से आपके साथ है मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और गौसैया फातिमा। इसी के साथ हमारे पास विजय सुरलकर का मैसेज भी मिल जाता है। गंगा जमुना फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। मुताला महाराष्ट्र से आपके साथ है रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कौन सा गाना आप तक पहुंच रहा है, तो इस गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास होली चौक उत्तम नगर से आई है। जयराम खोरवाल, सचिन, अमन और दीपांशु खोरवाल अनोखी अदा फिल्म से एक बहुत ही मजेदार गाना सुनना चाहते हैं, पहुंचा रहे हैं आप तक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगर आपने बिल्कुल अभी ट्यून इन किया है तो ये एक रिक्वेस्ट बेस्ड शो है जिसमें आप अपनी रिक्वेस्ट किए हुए गाने सुन सकते हैं, यानी कि उम्मीद तो रख ही सकते हैं। आप हमें ईमेल लिखकर भेजेंगे और क्या पता आपकी ही पसंद का गाना इसके बाद हम यहां सुनवाएं।
1: क्या है दिलों का न पूछो सनम आपका।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं मन भावन अपराजिता के साथ आपके अपने आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपके बहुत सारी ईमेल्स हमारे पास पहुंच गई हैं, तो अगला मैसेज पढ़ते हैं। निसार अली हमें लिखकर भेजते हैं कुछ, और धनौरी तेलीवाला से आप हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, और आप खुश और स्वस्थ रहने का मैसेज देते हैं। वाह क्या बात है। और साथ ही में कहते हैं कि किसी भी गाने के साथ आपका नाम पढ़ लिया जाए। सुरेंद्र संधू का मैसेज हमें मिलता है, और आपके साथ है अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश, शिखा संधू, प्रतिशा और मैक्स। और आप कहते हैं कि किसी भी फिल्म में यानी कि किसी भी गाने के साथ आपका नाम हम पढ़ दें। अनिल मोहन प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ है उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। सिद्धार्थ गुंडाने का भी मैसेज हमें मिला है अमरावती से।

आप अर्चना ताई, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गुंडानी के साथ अभिलाषा फिल्म से एक गाने की रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेजते हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया का मैसेज हमें मिला है, आपके साथ है एंजल सोनू पप्पी भाटिया, और आप जमशेदपुर से मैसेज भेज रहे हैं और साथ ही राजकुमार फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। दिग्दर्शन गौर का भी मैसेज हमें मेरठ से मिलता है, आपके साथ है कविता अनिल जैन, संजय ढींगिया, राधा नामदेव, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई, सत्य पे सत्ता, जंगली, हीरा पन्ना या नूरी। अच्छा, और भी लिस्ट लंबी है। आप कहते हैं कि इनमें से कोई भी फिल्म से हम गाना सुनवा दें, सौदागर, कहो ना प्यार है, एक दूजे के लिए, प्रेम रोग। भाई क्या बात है, आपने पूरी प्लेलिस्ट बना के दे दी, इसमें तो हमारा पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा। एक एक गाना सब फिल्मों से है ना, गाने सभी बढ़िया हैं इन फिल्मों में। और अगला मैसेज हमें परमिंदर सिंह का मिलता है, आप पंजाब से प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपके साथ है लखनपाल रंधावा, हरप्रीत कौर और रूबल। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आराधना फिल्म से एक गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास पहुंची है, और इस गाने को सुनना चाहता है कौन ये भी बताना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं सोच रही हूं कि इस ईमेल को जब तक ढूंढती हूं तब तक मैं आपको गाना सुनवा देती हूं, क्योंकि मैंने गाना पढ़ा कि आप अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं। जी, प्रकाश वर्मा इस गाने को सुनने की रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेजते हैं, और आपके साथ हमारे पास मास्टर अशोक कुमार का भी मैसेज आता है, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप, आप सबने इस गाने की रिक्वेस्ट की है, तो ये गाना हम पहुंचा रहे हैं आप तक।

0: फिलहाल लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक पर से आकर आप ही के पसंद के गाने सुनवाएंगे आपको, आप ही के अपने आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
5: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
7: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
6: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
7: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
6: और विनर्स को क्या मिलेगा?
7: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
6: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
0: तो भाई देखिए, अगला मैसेज हमारे पास जो पहुंचता है वो है सुदर्शन, अनीता और सिमरन मुखी का, सोनीपत शांति नगर से। और आप परिंदा फिल्म से एक गाना सुनना चाहते हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है तुलसी मस्कीन का। आप दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। वीना चैतन्य चंडीगढ़ से हैं आपके साथ, और राहुल, रचिता खुराना और केशु खुराना भी आप ही के साथ हैं। यूनिस खत्री का भी मैसेज हमें मिलता है और आप सुनना चाहते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं अनोखी अदा से तो जो

गाना सुना वो आपको बहुत पसंद आया, अक्रम तबरेज और फरजाना ऐसा लिखकर भेजते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया अपने दोस्त को कहना चाहिए जिसने इस गाने की रिक्वेस्ट भेजी। अफरोज शेख का भी मैसेज हमें मिलता है, आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं ऐसा आप हमें सुपौल से लिखकर भेजती हैं। साथ ही मैसेज आता है बबलेश पवार का, और आपने बहुत बड़ा हमें संदेश लिखकर भेजा है और मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। आप तारीफ के कुछ शब्द लिखकर भेजते हैं, आजाद देश के गुलाम फिल्म से आप ये गाना सुनना चाहते हैं, आपके साथ है डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा भी प्रोग्राम को सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमारे पास अंकित कांगड़ा का आता है, रोहतक से, आपके साथ मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोर्ड, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा हैं। और आप ही के साथ एक और मैसेज आया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, मस्कीन दादा अपना नाम बताते हैं आप, और प्रथम सोनी, आप सब लोग जो है एक गाना सुनना चाहते हैं डिस्को डांसर फिल्म से, जो मैं आपको अगला गाना यहां सुनवाने वाली हूं। तो सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश, गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी, आप सबकी पसंद का गाना, आइए हम सब मिलकर सुनते हैं।

संतोष वसाने का मैसेज हमें मिलता है नांदुरा से। आपके साथ उषा ऋषिकेश अनिकेत और सागर कटक हैं। नासिक से आपके साथ हैं विशाल गवली, सोनाली समर्पण और भक्ति गवली। लगान फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। डीकेपी परिहार का मैसेज आता है भोपालगढ़ राजस्थान से। आप हैं धर्मेंद्र कपिल और ईशा छीपा और पूजा परिहार। साधना गोयल प्रोग्राम को सुन रही हैं। रजनीगंधा फिल्म से गाना सुनना चाहती हैं बहादुरगढ़ हरियाणा से। सतीश अनेजा का मैसेज मिलता है पन्ना की तमन्ना है ये गाना सुनना चाहती हैं। आपके साथ है बिमला अनेजा। साथ में मैसेज आया है दिग्दर्शन गौर का। ताज मोहम्मद भी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। आपके साथ है गुलाम साबिर राही महराज जहां हरिद्वार से आप हमारे साथ हैं। और मैसेज आता है हमारे पास गौरी शंकर वर्मा का। आप कोहरा फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं और नांगलोई से प्रोग्राम को सुन रहे हैं। गिरीश बम भी हमारे साथ हैं वैशाली बम अजिंक्य जीत रिया और अतुल के साथ। और याराना फिल्म से अपने गाने की रिक्वेस्ट लिख भेजिए। वडोदरा से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। पंकज शर्मा का मैसेज मिलता है हमें और आप हमारी पसंद का कोई गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ करनाल से हैं सुधीर नूतन किरण ठाकुर। गणेश सुतार भी मैसेज भेजते हैं हमें। चेतन सुतार सारिका सुतार कोल्हापुर से प्रोग्राम सुन रहे हैं। बब्बल का मैसेज आता है हमारे पास मोहाली पंजाब से। बब्बल मल्होत्रा आपके साथ है ओम प्रकाश मल्होत्रा भी और साथ ही किशन वंजनी प्रोग्राम सुन रहे हैं और इज्जत फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं नीलम स्वाति किशु के साथ रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। आदिनाथ वाघ का मैसेज हमें मिलता है और आप मन मौजी फिल्म से खुद से एक मैसेज सुनना चाहते हैं यानी कि खुद से आपने हमें संदेश भेजा है। आपके साथ हैं अशोक देशमुख भी और पीएस नुवांकर किशन वंजनी सतीश अनेजा बोधराज खोरवाल के साथ। शीशपाल वर्धन का भी मैसेज हमें मिला है गाजियाबाद से। आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि अगला गाना किसकी पसंद का है। हीरो फिल्म से गाने की रिक्वेस्ट आई है हमारे पास उत्तम कुमार भगत श्वेता कीसु तासु अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। आप सब ये गाना सुनना चाहते हैं तो चलिए सुनते हैं एफएम गोल्ड पर।

0: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
4: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
5: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
5: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: अजीम वकार, विजय महोबिया, मूसा शेख, मुकेश कश्यप, पुरुषोत्तम सिंह, उत्तम सिंह जंगेल, रोशन जहां, मोहम्मद फरमान, अतर सिंह करदम, यूनिस सैयद, स्वर्ण सिंह, उग्रसेन यादव, सोमदत्त, प्रकाश बोरगांवकर, जगन्नाथ पटेल और इसी के साथ नरेंद्र डोम, भाई मूसा शेख, आप सभी के संदेश हमें मिले। और अंशरु वली, बेताब रेडियो नाम से भी एक मैसेज आया जिसमें वसीम अकरम का संदेश आता है हम तक। और इसी के साथ हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो शामिल करने का मन तो बहुत हो रहा है, लेकिन देखिए समय कुछ और कहता है। लेकिन जाने से पहले ज्यादा से ज्यादा संदेश शामिल करना चाहती हूं मैं। यूनिस खत्री, अल्तमश खत्री, जगराम साहू, अहमद फूलवाले, अतर सिंह करदम, दारा सिंह, पीएस नुआंकर, सतीश अनेजा, उत्तम कुमार भगत, भारत भूषण, आप सभी के संदेश हमें मिले इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्तमश खत्री, पांडू चंदन, रामेश्वर, श्रीकृष्ण बाठे, राजू मिगलानी, यूनिस सैयद, सलीम अख्तर, गुरमीत सिंह, ताज मोहम्मद, पंकज कुमार, प्रवीण रंपारा और मोहम्मद इरशाद, भूषण खेरा, आप सभी ने हमें संदेश लिखकर भेजे, एसएम जावेद और कुछ नाम ऐसे भी हैं जो जाहिर सी बात है छूट भी जाएंगे क्योंकि बहुत सारी आपकी ईमेल्स आती हैं। कृष्ण वंजनी, सुरेश राठौर, तुलसी मस्कीन, अफरोज शेख, बबलेश पवार, अंकित, अशोक डाले, मस्कीन दादा, आर कुमार, भारत भूषण, जाकिर, स्वर्ण सिंह, आफताब अंसारी, आप सभी को मैसेज भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले ये जो एक और गाना रह गया है ये सुनना चाहते हैं प्रेम पुजारी फिल्म से, विजय रतनमाला और कुमकुम जी।

मैं आपके साथ रहने वाली हूँ 6 बजे तक, लेकिन फिलहाल मन भावन से मुझे दीजिए कुछ समय के लिए विदा। इस गीत के बाद आप सुन सकेंगे समाचार, और उसके बाद एक बार फिर मैं मिलूंगी आपसे यही FM गोल्ड पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन कल शुरू हुआ। श्री मोदी एवियां जाने के लिए स्विट्जरलैंड के जनेवा में उतरे। हवाई अड्डे पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने हार्दिक अभिवादन किया और परस्पर साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। संक्षिप्त बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी जनेवा से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित एवियां के लिए रवाना हुए। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन में भारत की निरंतर उपस्थिति प्रमुख वैश्विक चुनौतियों से निपटने और शांति, सुरक्षा, सतत विकास तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान देने में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। ये सम्मेलन भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक मंच पर विकासशील और अल्पविकसित देशों की आवाज तथा चिंताओं को बुलंद कर सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज शाम प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पोस्ट किए गए संदेशों में बदलाव करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची K में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ

0: नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप में सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का मुकाबला उरुग्वे से होगा। उधर पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और महाराष्ट्र में बिजली चमकने तथा तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Manoj Singh Rana.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। आइए सुनते हैं फिर तेरी कहानी याद आई से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज।

पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है।

0: है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: with an age limit of 50 years, relaxable up to 62 years for retired government employees. Applications must be submitted online via the NDMA website within 20 days of the release of this advertisement in the Employment News. For details, do refer to the website at www.ndma.gov.in. And now we have the Employment News in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। UMDAE सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज मुंबई आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सहायक प्रोफेसर सूक्ष्म जीव विज्ञान, सहायक प्रोफेसर प्रतिरक्षा विज्ञान, रीडर कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान, एसोसिएट प्रोफेसर अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान, रीडर अति तीव्र प्रकाश रसायन, एसोसिएट प्रोफेसर भौतिक रसायन विज्ञान, सहायक प्रोफेसर कार्बनिक अकार्बनिक रसायन विज्ञान, रीडर बीज गणित संख्या सिद्धांत और लाई, सहायक प्रोफेसर विश्लेषण असतत गणित और एसोसिएट प्रोफेसर सैद्धांतिक भौतिकी, सहायक प्रोफेसर क्वांटम संघनित पदार्थ, सहायक प्रोफेसर फोटोनिक्स प्रायोगिक। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए वेबसाइट www.cbs.ac.in। ये विज्ञापन रोजगार समाचार पत्र के 13 से 19 जून 2026 के अंक में भी देखा जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 15 जुलाई 2026। भारत सरकार का उपक्रम राइट्स लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। प्रबंधक सिविल तथा अभियंता सिविल दोनों ही पदों के लिए एक एक रिक्ति उपलब्ध है। विस्तृत विवरण के लिए देख सकते हैं आप राइट्स की वेबसाइट www.rights.com। ऑयल इंडिया लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। उप मुख्य रसायनज्ञ एक पद, उप मुख्य भूविज्ञानी एक पद, उप मुख्य इंजीनियर एक पद, उप मुख्य भू भौतिकीविद एक पद, उप मुख्य अभियंता 5 पद और अर्थशास्त्री 1 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.oil-india.com/advertisement-list। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 28 जून 2026। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में लेखाकार के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। केंद्र सरकार के अधिकारियों से इस पद के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत विवरण और आवेदन पत्र की जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वेबसाइट www.ncm.nic.in। विकास आयुक्त कार्यालय कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र काकनाड कोचीन कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। कुल 1 पद उपलब्ध है। आवेदन संबंधी नियम शर्तों योग्यता आरक्षण आदि की पूरी जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.csez.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी प्यारी

0: प्यारी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, फिर चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या लेकर आए हैं आज वो हमारे लिए कुछ खास। इसके अलावा आप तो जानते हैं कि खेल गतिविधियों पर रहती है हमारी बराबर नजर, और साथ ही हम याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के इस सफर में आज आपका हम सफर हूं मैं मुनीश शर्मा, और मेरे साथ हैं मनोज सिंह राणा। नमस्कार मनोज।
1: नमस्कार मुनीश, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स हु हैव ट्यून्ड इनटू अवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा। इन दिस प्रोग्राम वी विल रिमेम्बर दोज पर्सनैलिटी हु वर बोर्न और दोज हु डाइड ऑन दिस डे, दैट इज द 16th ऑफ जून, which is the 167th day of the year. In addition, we'll provide you with a roundup of national, regional, business and sports news. Munish, first, let's begin with the headlines.
0: बिल्कुल मनोज, हम शुभारंभ करते हैं, आइए मुख्य समाचार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियों में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
1: Prime Minister Modi praises Varanasi exhibition in Bratislava, emphasizes role of art and culture in strengthening ties.
0: और नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। संदेश संपादन की सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद।
1: India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure.
0: और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में कर लिया है प्रवेश।
1: And now listeners, it's time for our first segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national level today. We'll talk about Vikasit Bharat Youth Parliament 2026. Yuva, or the youth, is one of the four core demographics that the vision of Vikasit Bharat looks to empower. Today we discuss a topic that lies at the very heart of our nation, the role of citizens, especially young citizens, in strengthening India's democracy. Recently, while interacting with participants of the Viksit Bharat Youth Parliament 2026 in New Delhi, Lok Sabha Speaker Om Birla emphasized the importance of greater public participation in democracy. Munish, he also pointed out that despite being home to the world's largest population, diverse cultures, multiple languages and varied geographical conditions, India has successfully emerged as the world's largest democracy after independence, with increasing involvement of its people in the democratic process.
0: बिल्कुल मनोज, और उन्होंने ये भी कहा, यानी श्री बिरला ने ये याद दिलाया कि लोकतंत्र जो है वो भारत की कार्य संस्कृति और सोच का एक अहम हिस्सा रहा है। देश के भविष्य को आकार देने और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं में समावेशी भागीदारी बहुत जरूरी है। उनका संदेश समयोचित है, महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र को अक्सर केवल सरकार के कैसे रूप के तौर पर समझ लिया जाता है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। हालांकि चुनाव बेशक महत्वपूर्ण है, लेकिन लोकतंत्र तो वोट डालने की प्रक्रिया से कहीं आगे तक फैला हुआ है। क्यों मनोज?
1: जी मनीष, And the Viksit Bharat Youth Parliament is a platform for such young voices to engage in national discussions and shape the vision for Viksit Bharat at 2047. It fosters leadership, civic participation and policy discussions, enabling students to deliberate on key national issues. A point that Mr. Om Birla also observed, that India's democracy is not merely a system of governance, but a vibrant tradition of dialogue, consensus, participation and public involvement. And this brings us to an important question, Munish. Why is youth participation so essential for a healthy and functioning democracy?
0: देखिए, दरअसल इसका जवाब एक सीधी सी बात से शुरू होता है। युवा हमारे देश का वर्तमान भी हैं और भविष्य भी हैं, और आज बनाई जाने वाली नीतियां

0: नेताओं के फैसले और समाज की प्राथमिकताएं ही उस भारत को आकार देंगी जो आज के युवाओं को कल विरासत में मिलेगा। जब युवा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं तो वो अपने साथ एक नए नजरिए, नए विचार और पुरानी सोच को चुनौती देने का जज्बा भी लेकर के आते हैं। वो अक्सर तकनीकी तरक्की, पर्यावरण के लिए जागरूकता, सामाजिक पहल और समुदाय से जुड़ने के कामों में सबसे आगे रहते हैं और उनकी ऊर्जा और रचनात्मक सकारात्मक बदलाव लाने में एक बड़ी ताकत बन सकती है।
1: And with one of the world's largest young populations, India possesses an extraordinary demographic advantage. Young people are not merely the leaders of tomorrow, they're the change makers of today. Across the country, youth are innovating, building startups, volunteering for social causes, participating in skill development programs, and contributing fresh ideas for nation building. At the same time, when they participate in the democratic process, the participation teaches young people important values and life skills. It encourages them to listen respectfully to differing opinions, think critically, analyze issues logically, and engage in constructive debate. These experiences, Munish, really help the youth help nurture informed, responsible, and empathetic citizens that they become.
0: Indeed, Manoj, and herein lies the importance of youth parliament. Chunki isse hi hame pata lagta hai ki aisi pehel kyon bahut ahem hai. Viksit Bharat Youth Parliament ke mahatv par baat karte hue, Shri Birla ne ise yuvaon mein loktantrik sanskriti ko badhava dene wala ek sashakt manch bataya. Unhone kaha ki aisi pehel se netritv, kartavya bodh, tarkik soch और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने जैसे गुण विकसित होते हैं। यूथ पार्लियामेंट में हिस्सा लेने वाले सिर्फ भाषण ही नहीं देते बल्कि वो तैयारी, रिसर्च, टीमवर्क और सम्मानजनक असहमति का महत्व भी सीखते हैं। वो खुद अनुभव करते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं आखिर काम कैसे करती हैं और टकराव के बजाय चर्चा से और सहयोग से आम सहमति कैसे बन सकती है।
1: That's right, and democracy thrives when young citizens participate actively and responsibly, voting in elections, engaging in constructive public discussions, understanding public policies, participating in local governance, volunteering for community initiatives, and holding institutions accountable are all essential democratic practices. In fact, most importantly, when the youth becomes eligible, they can vote thoughtfully and independently, guided by facts, values, and the larger interests of society.
0: दोस्तों, इतिहास ने हमें बार-बार दिखाया है कि देशों को आकार देने और सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने में युवाओं ने किस तरह से अहम भूमिका निभाई। उनका साहस, आदर्शवाद और दृढ़ संकल्प अक्सर बड़े बदलाव लाने की प्रेरणा देते हैं। हालांकि सार्थक भागीदारी के लिए जागरूकता, धैर्य और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की भी जरूरत होती है। आज के दौर में जब फौरन बातचीत और जानकारी तक पहुंच आसान है, युवा नागरिकों पर भी एक अहम जिम्मेदारी है तथ्यों और गलत सूचनाओं के बीच फर्क करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सम्मान से बातचीत करना और सार्वजनिक चर्चाओं में सकारात्मक योगदान देना।
1: And this constructive contribution is through the voice. But democracy is strengthened not by the loudest voices, but by informed, inclusive, and constructive participation. Dear listeners, India's democratic journey has been nothing less than remarkable. From the early years after independence to becoming the world's largest democracy, the country's success has been built on faith and participation of its people. As India moves forward on its path towards becoming a developed nation, the involvement of its youth will be indispensable. Their aspirations, ideas, and commitment to public service can help address national challenges and unlock new opportunities for growth and innovation.
0: Viksit Bharat Yuva Sansad 2026 mein Lok Sabha Speaker Om Birla ka sandesh hame ye yaad dilata hai ki loktantra sirf नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो हर नागरिक की जिम्मेदारी है। चाहे सोच समझकर वोट देना हो, समाज सेवा हो, लोगों के बीच बातचीत हो या फिर जिम्मेदार नेतृत्व,

0: हर इंसान की इसमें भूमिका है और भारत के युवाओं के लिए ये भूमिका बेहद अहम है। आखिरकार वो सिर्फ आने वाले कल के नेता नहीं है, बल्कि वो आज के भारत को आकार देने में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं।
1: Let us therefore encourage our young citizens to ask questions, seek knowledge, participate with integrity and uphold the values enshrined in our constitution. By doing so, they'll help ensure that India's democracy remains vibrant, resilient and inclusive for generations to come. Thus, the Viksit Bharat Youth Parliament is far more than a program. It is a movement that channels the energy, ideas and aspirations of India's youth into a national conversation. After all, the road to a developed India or a Viksit Bharat will not be built by governments alone. It will be shaped by collective efforts of millions of citizens, especially the young minds who dream, innovate and act.
0: तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व महासागर दिवस तो हमने हाल में मनाया ही था, और हम आपको बता दें कि आज है एक ऐसा दिन जो समुद्र के कछुओं को समर्पित है। और कैसे ये मनाया जा रहा है दिन, ये जानेंगे हम मनोज से।
1: जी मनीष, वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, सम ऑफ द ओशंस ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिमार्केबल ट्रैवलर्स, द सी टर्टल्स। इट इज द वर्ल्ड सी टर्टल डे, ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जून द 16th. But sea turtles face many threats: plastic pollution, discarded fishing gear, accidental capture in fishing nets, coastal development, boat strikes and climate change all endanger their survival. The question arises, Munish, why do we celebrate this on 16th of June? And the credit for this goes to Dr. Archie Carr, often regarded as the father of sea turtle conservation. World Sea Turtle Day is celebrated the same day as Dr. Carr's birthday. So on this World Sea Turtle Day, let's celebrate these resilient ocean voyagers. Let's do our part to ensure that sea turtles continue their ancient journey for generations to come.
0: और दोस्तों, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का क्या कुछ है खास उनके पास।

0: aimed at preserving Odisha's linguistic heritage, cultural identity, and historical authenticity, the Odisha government has approved the correction of distorted English spellings of 64 places across 26 districts. The decision was taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Mohan Charan Maj.
1: Collectors identified places where the officially used English spellings differed from their authentic Odia names. Based on reports received from district administrations, public representatives and citizens, a high-level committee headed by eminent Odia author Dr. Pratibha Rai examined the proposals and recommended revised spellings for 64 places covering 26 districts. On the revision of spellings, Srimati Anu Garg, Chief Secretary of Odisha,
2: when the Britishers had started writing it, they were not able to pronounce the typical Odia words. As a result, the English version was always misspelled. We got many requests from districts, from public representatives, which were then forwarded to a committee constituted by the government, and that committee has now given some recommendations.
1: With the changes in spelling, every name will now echo the language, history and soul of Odisha. For Parikrama, this is Nirmalya Behra for Akashvani Katak.
3: Dosto, Mukhyamantri Yogi Adityanath ne bite 14 June 2026 ko गोरखपुर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2023 के नवीन अनुपूरक पुष्टाहार योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश इस योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इस योजना के तहत 7 श्रेणी के लाभार्थियों को 10 तरह की रेसिपी उपलब्ध कराई जाएगी। इन 7 श्रेणी के लाभार्थियों में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, कुपोषित बच्चे और गर्भवती तथा धात्री महिलाएं योजना के केंद्र बिंदु हैं। योजना के माध्यम से अलग अलग श्रेणी के लाभार्थियों को शिशु अमृत और शिशु आहार, बाल पुष्टिकर, आरोग्य पोषण, बाल संजीवनी, सक्षम पोषण और संपूर्ण मातृ आहार नाम से रेसिपी उपलब्ध कराई जाएंगी।
4: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 जून 2026 को सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2023 के नवीन अनुपूरक पुष्टाहार योजना के 7 श्रेणी के लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार दिया। इस योजना से प्रदेश के करीब 1.3 करोड़ बच्चे और 22 लाख से अधिक गर्भवती एवं धात्री महिलाएं लाभान्वित होंगी। श्री योगी ने योजना के शुभारंभ अवसर पर 4 बच्चों को अन्नप्राशन और 3 गर्भवती की गोद भराई कर सुपोषण का संदेश दिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों एवं माताओं के स्वास्थ्य व पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि नवीन पुष्टाहार में आयु वर्ग के अनुसार पौष्टिक व गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री शामिल की गई है, जिससे बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होगा, साथ ही गर्भवती व धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मुख्यमंत्री श्री योगी ने उम्मीद जताई कि नवीन अनुपूरक पुष्टाहार योजना से प्रदेश में कुपोषण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। गोरखपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव मिश्र ने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को कैलोरी एवं प्रोटीन के साथ 11 अन्य आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से बने नवीन अनुपूरक पुष्टाहार को उपलब्ध कराया जाएगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार गोरखपुर से वेद प्रकाश पाठक।
0: In our Parikrama, let us travel from north to the northeast, where Nagaland's aspiration to emerge as India's Kiwi capital has received a significant boost with a major international collaboration. The state government is moving forward with plans to establish the country's first ever center of excellence for Kiwi fruit in partnership with New Zealand. The initiative is expected to strengthen scientific cultivation, improve productivity and enhance farmers' income. Our Kohima correspondent has filed a report.
5: Nagaland's ambitious plan to transform its kiwi sector is gaining momentum, with concrete steps towards setting up India's first center of excellence for kiwi fruit. The project has entered a crucial phase following the recent visit of an 11-member delegation from New Zealand, which held discussions and conducted assessments to advance the initiative. The delegation comprised scientists and technical experts from New Zealand's Bioeconomy Science Institute, representatives of the New Zealand Embassy in New Delhi, and officials from the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The Center of Excellence is proposed to be set up at Futsero in Peg District and will function as a hub for scientific research, farmer capacity building, technology transfer and the promotion of modern cultivation practices.

0: As part of the initiative, a weather monitoring station is being installed at the site, which will provide real-time data on weather conditions, soil health, and water parameters, enabling farmers to adopt precision farming techniques and make informed decisions to improve both productivity and fruit quality. The collaboration is also expected to create opportunities for farmer exchange programs, allowing growers from Nagaland to gain first-hand exposure to advanced cultivation methods and best practices in New Zealand, one of the world's leading producers of kiwi fruit. Nagaland is already the second largest kiwi fruit producing state in India. With international expertise, scientific innovation, and modern agricultural technologies, the Center of Excellence is expected to raise production standards, strengthen market competitiveness, and increase income opportunities for farmers, bringing Nagaland closer to its vision of becoming the kiwi state of India. For Parikrama, this is Mary Mayase, Akashvani News, Kohima.
1: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में आयोजित पत्रकार परिषद में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और जनहितकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए देश के आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनने का विश्वास व्यक्त किया। आइए जानते हैं हमारे प्रतिनिधि से।
2: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना तथा कचरे से जैव ईंधन अर्थात बायोफ्यूल निर्माण को बढ़ावा देने संबंधी प्रयासों का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि
3: जहां तक महिलाओं के बारे में सशक्तिकरण के बारे में है, मैं महिला बचत गट की जो समूह है उनकी परिस्थितियां बदल गई है। कुछ मोटे तौर पर मैं कुछ परिवार में विशेष रूप से जो बेनिफिट मिले हैं, आयुष्मान भारत में जो गरीब परिवार है जो अपने स्वास्थ्य विषयक तकलीफों का उपचार नहीं कर सकते थे, उन सबको 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का फायदा मिला है और 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का कवरेज मिला हुआ है। हमारी पीएम उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ महिलाओं को कनेक्शन मिला है परिवारों को। विशेष रूप से जनधन योजना में करीब 58 करोड़ लोगों ने पहली बार बैंक में खाता खोला है और एक प्रकार से उस खाते खोलने के बेनिफिट भी उनको मिले हैं। स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय और स्वच्छता में 12 करोड़ शौचालय बने और नागपुर शहर में तो हमने स्वच्छता के बारे में एक अच्छा रिकॉर्ड प्रस्तावित किया है कि हमारे यहाँ जो प्रकल्प हो रहा है कचरे का, कचरे को सेग्रीगेट करके हम उससे बायो सीएनजी बना रहे हैं।
2: इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विकसित भारत की संकल्पना का उल्लेख करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देश तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत और अधिक सक्षम, आत्मनिर्भर तथा समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
1: और आइए दोस्तों, अब चलते हैं खेल के मैदान में, जाने वहां की हलचल। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया और इस जीत के साथ ही भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में पहुंच गया है शीर्ष पर। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होना है। वहीं पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का मुकाबला होगा जर्मनी से।
4: In some business news, extending their rally for a third consecutive session, domestic benchmark equity indices ended today's trade with gains of more than 0.5%. The Sensex jumped 544 points or 0.7% to close at 76,808, while the Nifty rose 135 points or 0.6% to settle at 23,989. For more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
1: और आइए दोस्तों, अब हम याद करें महान स्वतंत्रता सेनानियों को और उसके बाद हम जिक्र करेंगे उन महान व्यक्तित्वों का भी है आज जिनकी पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन।
5: The 16th of June is the death anniversary of freedom fighter Chittaranjan Das. C.R. Das was born on the 5th of November 1870 in Kolkata. Das completed his graduation from Presidency College in 1890. The same year, he went to England to qualify for the ICS, which was dominated by the British.
6: Unfortunately, he failed. As a result, he opted to join the legal profession. While in England, Das campaigned for Dadabhai Naroji to help

और दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं शब्दों के उस जादूगर को जिन्होंने अदबी महफिलों से लेकर बॉलीवुड के सिनेमा के पर्दे तक अपनी गजलों से मोहब्बत और संजीदगी का एक नया दौर शुरू किया। आज आधुनिक उर्दू शायरी के आला तरीन शायर और प्रख्यात शिक्षाविद कुंवर अखलाक मोहम्मद खान की जयंती है, जिन्हें लोग प्यार से शहरयार के नाम से भी याद करते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के आंवला में जन्मे शहरयार साहब ने अपनी रूहानी शायरी से करोड़ों दिलों पर राज किया। और सुनते हैं एक उनकी गजल का एक छोटा सा टुकड़ा फिल्म गमन से।

और दोस्तों अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। आज्ञा दीजिए मुझे यानी मुनीश शर्मा और मेरे साथी मनोज को। परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की यात्रा पर फ्रांस के इवियॉन शहर पहुंच गए हैं। इवियॉन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि भारत अधिक टिकाऊ और समृद्ध ग्रह के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले श्री मोदी इवियॉन जाने के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा पहुंचे। हवाई अड्डे पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन ने उनका स्वागत किया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की यह लगातार 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज शाम प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना विषय पर एक उच्च स्तरीय सत्र में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। दोनों नेता पारस्परिक हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया है। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आकांक्षाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सीरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सीरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची K में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान यस बैंकों के ऋणों की कथित धोखाधड़ी पूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि यह तलाशी अभियान कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों और यस बैंक के बीच कथित मिलीभगत से जुड़े धन शोधन मामले में सबूत जुटाने के लिए चलाया जा रहा है। जांच संकटग्रस्त संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सर्कुलर लेनदेन, नीलाम की गई संपत्तियों का कम मूल्यांकन, बढ़ा चढ़ाकर या धोखाधड़ी से किए गए दावे और कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में लेनदारों के मतदान अधिकारियों और पारदर्शिता से संबंधित मुद्दों के संबंध में है। हिमाचल प्रदेश में स्वगणना अवधि पूरी होने के बाद जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत गृह सूचीकरण और आवास जनगणना के लिए जमीनी अभियान आज से प्रारंभ हो गया। राज्य में जनगणना कर्मियों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण का कार्य अगले महीने की 15 तारीख तक जारी रहेगा। मंत्रालय ने बताया कि केरल और नागालैंड में स्वगणना सुविधा प्रारंभ हो चुकी है और ये इस महीने की 30 तारीख तक उपलब्ध रहेगी। इस बीच महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और झारखंड के साथ साथ दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में गृह सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुका है। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Avignon on a two-day visit to participate in the G7 summit, which got underway yesterday. After arrival in Avignon, the Prime Minister, in a social media post, said that he is looking forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues. He added that India remains committed to advancing collective efforts for a more sustainable and prosperous planet. Our correspondent covering the Prime Minister's G7 visit has filed this report.
3: This marks the Prime Minister's 7th consecutive appearance at the G7 summit and India's 13th participation in this crucial multilateral event. This G7 summit holds immense strategic significance for India, as the Prime Minister will strongly amplify the voice and concerns of the Global South on the world stage. India's regular participation in the summit underscores its growing role in addressing key global challenges and contributing to international efforts to peace, security, sustainable development and economic growth. Ankit Kumar for Akashvani News, Avignon, France.
2: On the sidelines of the summit, the Prime Minister is scheduled to hold bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, and President of United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later tonight, he will attend a gala dinner hosted by President Macron. A key engagement during the visit will be PM Modi's meeting with US President Donald Trump tomorrow. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across sectors. The Supreme Court today sought response from the center and states on a plea alleging the misuse of the Unique Identification Authority of India issued Aadhaar cards as proof of citizenship, domicile and residential address. The plea sought directions to restrict its use strictly for identity verification only. A bench of Chief Justice Suryakant and Justice V. Mohana issued notices to the center and all states and union territories. The petition contended that the existing verification mechanism under Form 6 is inadequate and might allow individuals without proper supporting documents to be included in the electoral database. Ahead of the re-examination of National Eligibility Cum Entrance Test or NEET UG 2026, which is scheduled for 21st June, the government has restricted online messaging and social media app Telegram till the 22nd of this month. The National Testing Agency or NTA has welcomed the decision. In a statement, the NTA said that the platform has also been directed to disable the message editing feature for already posted messages until the 30th of this month. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of preparations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in the context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses, and advanced contingency plans for low-rainfall districts. The meeting focused on ensuring that all necessary steps are taken well in advance to safeguard

वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। नमस्कार, स्वागत करती हूं मैं अपराजिता एक बार फिर आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं आ गई हूं लेकर कुछ नए सवाल अपने साथ गाते गुनगुनाते में, जहां हम पूछते हैं आपसे कुछ पहेलियां, देते हैं आपको बहुत सारे हिंट्स जिन्हें सुनकर, जिन कड़ियों को जोड़कर आप ढूंढ निकालते हैं फिल्मों के नाम और फिर लिख भेजते हैं हमें अपने सही जवाब। तो ये सिलसिला शुरू करते हैं, पहले सुनते हैं कल हो ना हो फिल्म से एक गाना और फिर मैं देती हूं आपको हिंट्स, आप दीजिए जवाब।

आज का पहला सवाल जुड़ा है यश चोपड़ा की उस फिल्म से जिसने रिलीज होते ही उस साल सबसे ज्यादा बिजनेस किया। इस फिल्म को अपनी स्क्रीन प्ले यानी कि पटकथा, कहानी, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी और कॉस्ट्यूम्स के लिए बहुत पसंद किया गया। फिल्म ने फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में कई नॉमिनेशंस अपने नाम किए और 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीते भी। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। पहले फिल्म की हीरोइन का रोल जो है वो श्रीदेवी को ऑफर किया गया, लेकिन किया किसी और ने। जी हां, ध्यान से सुनिएगा। और इसी तरह फिल्म की सेकेंड फीमेल लीड का रोल पहले मनीषा कोइराला, जूही चावला, काजोल, इन सब हीरोइन्स को ऑफर किया।

गया, लेकिन ये रोल भी किया किसी और ने। कई बार क्या होता है, आप लोग सिर्फ नाम सुनते हैं और सोचते हैं मैं इनकी बात कर रही हूं। मैंने कहा इन सबको ऑफर किया गया लेकिन किया किसी और ने, है ना। तो अगर इतने हिंट्स के बाद आप पहचान चुके हैं यश चोपड़ा की ये कौन सी फिल्म है जिसकी आज यहां बात हो रही है, या यूं कहें कि पहला सवाल इसी फिल्म से है, अगर आप पहचान चुके हैं तो आपको अपनी फिल्म का नाम, यानी कि जो पहचान कर आपने नाम सोचा है उस फिल्म का नाम, आप इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com। और आप पूरी ईमेल में ना इसे टाइप करें, यानी कि बॉडी ऑफ द कॉपी में ना लिखें, सब्जेक्ट में आप फिल्म का नाम लिखकर जल्दी से इसे भेज दें। ऐसा मैं इसलिए कहती हूं ताकि जल्द से जल्द आप अपने आंसर हम तक भेज सकें। तो ईमेल आईडी मैं बता चुकी हूं और सवाल आपसे पूछ चुकी हूं। अब आपको पहचानना है फिल्म कौन सी है, जल्दी से टाइप कीजिए और लिख भेजिए अपने जवाब। मैं सुनवा रही हूं आपको बॉम्बे फिल्म से एक बहुत ही खूबसूरत गाना। गुमसुम गुमसुम गुपचुप।

बिल्कुल सही सही पहचान दिया है आप लोगों ने पहले सवाल का जवाब, और पहला सही जवाब लिखकर भेजा है नागेंद्र ठक्कर ने। इसके बाद नवीन भाटिया साहब मोतीनगर से लिखते हैं, तीसरे नंबर पर प्रणव शिंदे आते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके बाद भी बहुत सारे सही जवाब आए हैं, बस मैं ये कह सकती हूं कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का फर्क हो गया होगा। इदरिस सैफी, सुदर्शन, अनीता सिमरन मुखी, जगदीश बजाज, आप सब दिल्ली से सही जवाब लिखकर भेजते हैं। अजंक्य बम, अंजलि, अथर्व निमकर वडोदरा से सही जवाब लिखते हैं। उग्रसेन यादव, संदेश कोथावले, बबलेश पवार, आप सबने भी बिल्कुल सही सही बताया। प्रकाश गोगिया और पंकज मोहड़ अमरावती से बताते हैं सही जवाब। वैशाली और गिरीश बम ने भी जीत और रिया के साथ वडोदरा से सही जवाब लिखकर भेजा है। तो आप सभी ने पहचान लिया है कि फिल्म का नाम है दिल तो पागल है, बिल्कुल। और जैसा कि नाम आप जानते ही हैं, तो आप जाहिर सी बात है पहचान चुके हैं कि इसमें एक्टिंग किसने की है। जी शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर। आपको इस फिल्म से गाना जरूर सुनवाऊंगी, सभी गाने एक से बढ़कर एक हैं। अगला जो सवाल है आपके लिए वो 1995 की फिल्म से है। ये जो फिल्म है इसे डायरेक्ट किया राम गोपाल वर्मा ने, और इस फिल्म को भी फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में, जैसे कि दिल तो पागल है की बात हमने की, काफी नॉमिनेशंस मिले थे। इसी तरीके से इस फिल्म की जिसकी अब हम बात कर रहे हैं, इसे 14 नॉमिनेशंस मिले फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में, और 7 फिल्म फेयर पुरस्कार इस फिल्म ने जीते भी। और अगर इन पुरस्कारों की बात करें तो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर इसमें शामिल रहा, स्पेशल ज्यूरी अवार्ड और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड यानी कि फिल्म फेयर अवार्ड भी इसमें रहा। फिल्म का हर एक गाना एक से बढ़कर एक रहा। अब आप कहेंगे अपराजिता हर बार ही फिल्मों के बारे में जो भी लेकर आती है ऐसे ही बोलती है, लेकिन सच में अगर आप ढूंढेंगे और मैं जब जिक्र करूंगी इस फिल्म का, जब आप आंसर बता देंगे तो मैं बताऊंगी आपको कि कितने बढ़िया गाने हैं फिल्म में। और इसी तरीके से दिल तो पागल है में भी एक से बढ़कर एक गाने हैं। फिलहाल मैं अपने अगले क्वेश्चन की बात करती हूं, तो इसका भी गाना एक से बढ़कर एक है। अगर आप पहचान चुके हैं फिल्म का नाम, तो आपको fmgold@delhi.com पर फिल्म का नाम सब्जेक्ट में लिखकर भेज देना है जल्द से जल्द। जल्द से जल्द इसलिए ताकि मैं आपको पहला, दूसरा और तीसरा जो है इसमें देखना चाहती हूं आपके नामों को, है ना। हर बार ज्यादातर जो है कुछ ही श्रोता हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आते हैं, तो मैं चाहती हूं कुछ नाम चेंज हो, कुछ स्पीड अप करें, आपको जल्दी लिखकर भेजें, है ना। करेंगे ना ऐसा, बिल्कुल कीजिए। तब तक मैं आपको दिल तो पागल है का एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनवा रही हूं। वैसे सभी गाने प्यारे हैं, तो अब बात करते हैं इस फिल्म की। बहुत सारे गाने हैं इसमें, सभी गाने सुनवाने का मन करता है। दिल तो पागल है का टाइटल ट्रैक भी बहुत अच्छा है, अरे रे अरे ये क्या हुआ, भोली सी सूरत। हाँ वैसे मैं आपको भोली सी सूरत सुनवाने वाली हूँ। उसके बाद है ढोलना, ले गई प्यार कर, कोई लड़की है जब वो हंसती है, एक दूजे के वास्ते, बहुत सारे बहुत

0: फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापस आकर जानेंगे कि किसने सबसे पहले सही जवाब लिखकर भेजा है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल अपराजिता के साथ।
1: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
2: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
3: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
2: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी

0: यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
1: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

क्या बात है। शंकर महादेवन की आवाज में मिशन कश्मीर से अभी हमने ये इतना खूबसूरत गाना सुना। तो अब बारी है फिल्म के नाम लेने की, यानी कि जिसने सही जवाब दिया है उन लोगों के नाम लेने की। तो पहला सही जवाब मैं देख पा रही हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जब स्क्रॉल कर रही हूं आपके मैसेजेस तो बहुत सारे सही जवाब पहुंचे हैं। तो इसके लिए हमारे सभी लिसनर्स को बहुत बहुत बधाई। तो पहला सही जवाब इस बार, वही क्या बात है, मोटिवेशन से फर्क बहुत पड़ता है। अब प्रणव शिंदे जो हैं इन्होंने बाजी मार ली है और इनका पहला सही जवाब यानी कि पहला नंबर पर आया है इनका जवाब। आपका जवाब पहले नंबर पर आया है। दूसरे नंबर पर है नवीन भाटिया साहब मोती नगर से, और उसके बाद मुक्ता बरगोटा, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा तीसरे नंबर पर। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद नागेंद्र ठक्कर, संदेश कुठावले, राजेश माणकलाल शाह, परिमल झा, बबलेश पवार हमारे साथ हैं बाड़मेर राजस्थान से, कुशाग्र अग्रवाल और आदित्य ने भी सही जवाब लिखा है, इदरिस सैफी ने लिखा है सही जवाब, और मुला हेड़ा गांव एनसीआर से हमें ये जवाब लिखकर भेज दिया है। गुफरान बसित हैं, इन्होंने भी सही पहचाना है। जगदीश बजाज विकासपुरी से सही आंसर कर भेजते हैं, और साथ ही अमरावती महाराष्ट्र से सही जवाब लिखते हैं पंकज मोढ़ो, और उग्रसेन यादव, गौरव गुरनानी, दर्श धावलिया, और सही जवाब देते हैं राजा आर, सुदर्शन, अनीता, सिमरन मुखी सोनीपत से, मोहम्मद सईद अबासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान बुलंदशहर से सही जवाब देते हैं। वैशाली बम ने भी बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। आपके साथ जीत और रिया भी हैं वडोदरा से। राकेश कुमार ने सही जवाब लिखकर भेजा है। कुछ नए नाम जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राकेश और सरिता आपने भी बिल्कुल सही पहचाना। रवि और अंजू हैं, आपका भी जवाब बिल्कुल सही है। और उमेश साहब ने सूरत से बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। क्या बात है, जगह जगह से जवाब आ रहे हैं। डीबी राणा साहब दिल्ली से, गिरीश बम वडोदरा से, और धीरज पांडे हमें सही जवाब लिखकर भेजते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और फिल्म आप पहचान चुके हैं तो बिल्कुल आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूं कि फिल्म में एक्टिंग की जैकी श्रॉफ, आमिर खान और उर्मिला मातोंडकर ने, और जैकी राजकमल के किरदार में नजर आए। आमिर खान ने मुन्ना का किरदार निभाया और उर्मिला मिली जोशी के रोल में इसमें नजर आई। बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म रही। गाने, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आप सुन चुके हैं, सुनते आए हैं, तो आप जानते होंगे, आप बिल्कुल सहमत होंगे मेरी बात से कि इस फिल्म के गाने भी एक से बढ़कर एक हैं। तो मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन अब अगला सवाल आपसे पूछ लेती हूं। जो अगला सवाल है वो अब्बास मस्तान की फिल्म से है।

कर भेज देंगे। समीर साहब की कलम से निकला एक बेहतरीन गाना सुनाने का वायदा मैं यहाँ पर आपसे करती हूँ। तो पहले मैं आपको रंगीला फिल्म से गाना सुनवाती हूँ, ये भी एक बहुत ही सुंदर गाना है।

0: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

बिल्कुल, सफर अब अपने अंजाम पर पहुंचने वाला है और उससे पहले जरूरी है कि आपके नाम, जिन्होंने सबसे पहले हमें अपने आज के आखिरी सवाल का सही जवाब लिखकर भेजा है, उन्हें शामिल कर लिया जाए। तो पहला सही जवाब, अच्छा, इस वाले सवाल में बहुत सारे मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आए हैं। जैसे बाकी सवालों में आपके दिमाग में क्लैरिटी दिख रही थी, यानी कि हमारी स्क्रीन पर दिख रहा था कि सारे सही जवाब हैं या फिर 10% ऐसे हैं जो नहीं है सही, तो इस बार मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज हैं ऐसा मैं कहना चाहूंगी। और पहला सही जवाब है गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार का। इसके बाद सही जवाब हमें जो दिया है वो नवीन भाटिया साहब ने दिया है मोती नगर से। और तीसरा सही जवाब जगदीश बजाज ने दिया है विकासपुरी से। अक्सर सही जवाब जो होते हैं वो सब एक साथ आते हैं, ज्यादातर जब आप स्क्रीन पे देखते हैं तो 1, 2, 3 ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन अभी बीच बीच में जैसे सही जवाब है सोल्जर, तो बहुत सारे लोगों ने बाजीगर, बादशाह, अजनबी सब मिक्स करके जो है भेज रखी है। लेकिन जिन्होंने सही जवाब दिए उनके नाम मैं अब शामिल कर लेती हूं। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर जिन्होंने सही जवाब दिए उन्हें मुबारकबाद, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने आज के भी इस हमारे गाते गुनगुनाते में शुरू से लेकर अंत तक हमारा साथ दिया और जवाब देते रहे, इसमें पार्टिसिपेट करते रहे। तो एक जो है ना हौसला अफजाई होती है, अगर आप सवाल पूछे कोई जवाब ही ना दे तो हमें लगेगा देखिए कोई जवाब ही नहीं दे रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो सही जवाब दिया है गिरीश बम ने, अजिंक्य और जीत भी है आपके साथ वडोदरा से, अजीत भावसर हैं आपके साथ, प्रमिला भावसर हैं, और इसके बाद सही जवाब देने वालों में बस यही नाम है क्योंकि बाकियों ने बाजीगर या अजनबी फिल्म का नाम लिखकर भेज दिया है। तो सोल्जर ये जो फिल्म है इसमें एक्टिंग किसने की, बॉबी देओल, प्रीति जिंटा और राखी भी इस फिल्म में रही। और गानों का जैसे मैंने आपको जिक्र किया, बॉबी, वैसे मैं बता दूं आपको, बॉबी देओल इसमें राजू मल्होत्रा और विक्की सिन्हा का रोल प्ले करते हुए नजर आए, प्रीति जिंटा प्रीति सिंह की किरदार में नजर आई, और राखी गुलजार ने गीता मल्होत्रा यानी कि बॉबी देओल की मां का किरदार निभाया। तो गाने बढ़िया हैं इस फिल्म के भी जैसा मैंने आपको कहा था, और एक गाना आपको जरूर सुनवाऊंगी, सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर, ये है मेरे ख्वाबों में जो आए, मेरा दिल जिगर से गुजरी है, हम तो दिल चाहे तुम्हारा, महफिल में बार बार तेरा रंग बल्ले बल्ले मेरी सांसों में समाए। बहुत ही खूबसूरत गाने इस फिल्म के हैं, तो आप तक पहुंचा रही हूं एक ऐसा ही गाना जो आपको मैं ऐसी उम्मीद करती हूं कि बहुत पसंद भी आएगा, जसविंदर नरूला और सोनू निगम की आवाज में।

इसी के साथ अपराजिता को दीजिए यहीं विदा। अपना और अपनों का खूब खास ख्याल रखिए और आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए। अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये सातवीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमरीका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान येस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ येस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जी हाँ, ये सफर है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल का 100.1 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर, जिसे आप सुनते हैं। और आज आकाशवाणी गोल्ड के इस सफर में आपका हम सफर हूं मैं सुनील। शाम के 6:11:15 हो चुके हैं और सदाबहार गीतों के सफर के साथ आपके भी घर तक का जो सफर शुरू हो चुका है, आपके कार्यस्थल से लेकर आपके घर तक का, उस सफर में हम रहते हैं आपके हम सफर। और इस सफर में आप क्या कुछ अनुभव करते हैं इन गीतों को सुनकर, ये तो आप ही जानते हैं, आपका दिल ही जानता है।

यहाँ शाम का ये आलम है और शोक नजर की इन बिजलियों से जरा बचकर, क्योंकि कहा गया है कि जुबान से कुछ कहना और जुबान से कुछ न कहना और सब कुछ कह जाना, जुबान से कुछ न कहना और सब कुछ कह जाना बड़ा मुश्किल है, नजरों की इन अदाओं को समझ पाना। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम में आज आपके साथ हूं मैं सुनील, और पूरी कोशिश हमारी ये रहती है कि आपके जो सफ़र है, आपके घर तक का जो सफ़र है शाम के इस आलम में, उसमें आपके हम कदम हम चलते रहें और आपको हिदायत देते रहें। क्योंकि रोड पर जब हम चलते हैं तो कई मरतबा ऐसा होता है सबको जल्दी होती जाने की, ऐसे में थोड़ा सा दिल थाम के चलिए जनाब, क्योंकि ये सफ़र जो है ये बहुत खुशगवार होना चाहिए।

तो साहब आप भी दिल थाम के जरा घर तक पहुंचिए और हमारा जो समय है फिलहाल यहाँ पर ये आगाह हमें कर रहा है कि अब संस्कृत में समाचारों का समय हो चला है, तो हम बढ़ते हैं समाचारों की ओर और आप पढ़िए अपने घर की ओर। लेकिन आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल का साथ हरगिज हरगिज ना छोड़िएगा।

0: Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Karubari Khabron ke saath Market Mantra hazir hai. श्रोताओं आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर भी नजर डालेंगे साथ ही चर्चा करेंगे। आज चर्चा करने के लिए हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन।
0: A warm welcome, सिद्धार्थ।
2: गुड इवनिंग।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं मगर इससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज सेंसेक्स जंप्स ओवर 500 पॉइंट्स Nifty settles at nearly 24,000 level. Asian stock markets, market indices end mixed and global crude oil prices decline.
1: घरेलू शेयर बाजार में बढ़त सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा बढ़ा निफ्टी लगभग 24,000 के स्तर पर बंद हुआ एशियाई शेयर बाजार में मिलाजुला रुख रहा और कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक स्तर पर गिरावट आई

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब जान लेते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा व्यवहार किया। श्रोताओं, देश के प्रमुख शेयर सूचकांक लगातार तीसरे सत्र में अपनी बढ़त जारी रखते हुए आज आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 554 अंक यानी 0.7% बढ़कर 76,808 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 135 अंक यानी 0.6% की बढ़त के साथ 23,989 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग आधे प्रतिशत की बढ़त हुई। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में कमी और रुपए की मजबूती ने निवेशकों का उत्साहवर्धन किया।
0: Extending their rally for a third consecutive session, domestic benchmark equity indices ended today's trade with gains of more than 0.5%. The Sensex jumped 544 points or 0.7% to close at 76,808, while the Nifty rose 135 points or 0.6% to settle at 23,989. In the broader market, on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 as well as the Small-Cap 100 indices gained 0.4%. The further decline in global crude oil prices and a strengthening rupee boosted investor sentiments.
1: Sensex mein shamil 30 mein se

0: किस कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में एचसीएल टेक 3.5% से अधिक, जबकि बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी और हिंदुस्तान यूनिलिवर में 2% से अधिक तथा टीसीएस में 1.7% की वृद्धि हुई। वहीं दूसरी ओर खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इंडिगो लगभग 1%, अल्ट्राटेक सीमेंट और मारुति 0.8% तथा टाटा स्टील में 0.7% की गिरावट आई।
1: Among the sectoral indices on the BSE, 19 out of 25 sectors ended in the green. Realty advanced 2.3%, focused IT as well as IT rose 1.7%, and FMCG gained 1.1%. In contrast, metals slipped by 1.2%, commodities and hospitals both lost 0.5%, and auto dipped 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,368 companies advanced, 1,886 declined and 153 remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे मजबूत होकर ₹94.56 पर बंद हुआ। डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में दिन के कारोबार में 99.59 पर कारोबार कर रहा था। सिद्धार्थ, वैश्विक संकेतों की हम बात करते हैं जब भी बाजार को हम देखते हैं तो, और इतने सारे अच्छे सकारात्मक संकेत जो सीधे तौर पर हमें बाजार की एक जो ट्रेजेक्ट्री है जो ग्रीन में जाकर के एंटर करती हुई नजर आ रही है उस पर दिख रही है, लेकिन आप इसे कैसे आंकते हैं?
2: नहीं प्राची, मुझे लगता है जो सबसे बड़ा कारण है जो हम कल भी देखा बाजार में और आज भी देखा, जो बढ़त देखी कल बहुत तेज बढ़त थी, आज भी तकरीबन 0.5% बाजार में जो है बाजार बढ़त के साथ बंद हुए, तो उसका सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है जो ईरान और जो अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध था, जो युद्ध विराम हुआ है, जो समझौता हुआ है, मुझे लगता है इमीडिएट फैक्टर वही है, वहीं से ये बॉयंसी आ रही है। और उसके साथ साथ जो आपने अपनी रिपोर्ट में भी बोला कि जो जैसे ही ये खबर आई उसके बाद हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल के जो दाम है उनमें बहुत तेजी से कमी आई है, साथ साथ जो हमारा रुपया है उसमें भी सुधार हुआ है। और क्रूड ऑयल हमारे लिए सीधे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, हमारी जो इकोनॉमी है उस पे, चूंकि हम बहुत मतलब तकरीबन 90% अपनी जो एनर्जी नीड्स हैं खासकर जो क्रूड ऑयल है वो इम्पोर्ट करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे लिए ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है उससे, और पॉजिटिव के साथ साथ मैं कहूंगा राहत वाली खबर है। तो मुझे लगता है जो इमीडिएट मार्केट में हम इफोरिया देख रहे हैं वो जो ये कल ट्रंप साहब ने जो घोषणा की कि अब अमेरिका और ईरान के बीच
0: संधि।
1: So you talk about this euphoria. What happens on Friday then, when the deal is signed in Switzerland?
2: See, Rajesh, I think it will further cement the confidence of the market once the deal is actually signed black and white. So I think it will further cement, because still there is some kind of, I would say, people are still speculating whether this truce or this agreement will sustain it, whether it will hold on, whether as the claim is that the Strait of Hormuz will immediately open and things will start getting normal. Even the European nations have expressed doubt that this kind of agreement will be able to implement the agreement, the claims which is being made by Donald Trump and also by the Iranian side that things will become normal immediately. So I think once the agreement is signed in black and white, I think that will further boost the confidence of the market.
1: So India has relatively been insulated from the Middle East conflict. Would you agree with me on that?
2: No, Rajesh, I would say that we have been insulated.
1: To a large extent.
2: Yeah, no, what I would say that we have managed the crisis very well. We have not been insulated. We have been impacted, hugely impacted, because we were almost our 40-50% of our own energy needs, and the energy needs of the across the world was being supplied by through the Strait of Hormuz. So which was obviously, which had been impacted, which had come to a standstill. Mm-hmm. There were very few here and there ships moving out of Strait of Hormuz. But yes, I would say despite that, the situation,
1: the management has
2: yeah
1: been
2: the
1: good.
2: Way we managed, especially if you look at, I'll give you some examples. Like we were before the crisis started, our sourcing of crude or our energy needs was around 15-19 nations. Now the list is to 40 nations. We are in a fast way moving towards renewable energy, especially focus on solar batteries. So I think those kind of things have also, this kind of situation or the challenge which came, we have also evolved. And especially if you look in the initial days when the West Asia crisis started, we saw there was a lot of panic in public, especially with supply of gas cylinders. So the way the country came together, the government as a whole, the people at large, so everybody contributed, and we were able to manage these last 108 days initial hiccups, but overall we've been able to manage it well. And the impact on the economy also, yes, there has been impact, especially like fertilizer and all, because the prices went up. It will have an impact in this current financial year, especially fiscal impact. But yes, we've been able to minimize it, I would say.
1: So how exposed is the Indian economy to an escalation scenario?
2: See, if the war is again, the situation war escalates, or the war again situation goes out of control, because yes, there have been doubts being raised by Israel. They are not towing the line that this agreement between US and Iran. But I would say, as far as our own thing, I think the worst is behind us in terms of crude oil supplies. We have looked at new sources. We are getting oil from Venezuela, US, and many other countries, plus in terms of also our LNG supplies, LPG supplies. We've also raised a lot of production of both LNG and LPG in the country also. So I think even fertilizer prices across the world have also crashed. I would say the right word is they've really gone down, though they were at very elevated levels. And we have also kind of procured fertilizer for our own agriculture needs at very high prices in recently, but that is also important, because to ensure that our agriculture or the kharif sowing is not affected. So I think obviously we continue to be we are open to, if there is escalation, we will have some kind of impact.
0: सिद्धार्थ, हॉर्मूज के जलडम्बरू मध्य में जब इतनी रुकावटें हैं, तो हमने एक नई सिरे से जो तेल की आयात पर जो दिक्कतें हुई हमें, हमारे देश ने, और बल्कि वैश्विक स्तर पर सभी को दिक्कत हुई, लेकिन अब आगे के लिए हमारा देश, हमारी जो सरकार है, वो किस तरीके के विकल्प ढूंढ रही है कि हम, क्योंकि हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, हमारी डिपेंडेंसी है काफी हद तक तेल के इम्पोर्ट्स पर, तो हम उसे कैसे पाने की कोशिश करेंगे, क्या लक्ष्य लेकर के, किस तरीके से?
2: नहीं प्राची, अगर आप पिछले 2-3 महीनों में सरकार के प्रयासों को देखेंगे, तो इसका जवाब उसी में निहित है, मतलब उसी में हमको मिल जाएगा. मतलब जो हमने अपने जो क्रूड ऑयल के जो स्रोत हैं या जहां से सप्लाई हम लेते थे, उसको हमने डाइवर्सिफाई किया. हमने और तकरीबन अब आज 40 ऐसे देश हैं जिनसे हम अपनी क्रूड ऑयल या गैस की जो हमारी जरूरतें हैं उनको हम मीट करें. उसके साथ साथ हमने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अपने प्रयास और तेज कर दिए हैं. और इस बीच में सरकार ने
0: घरेलू स्तर पर
2: जी और उसके साथ साथ कोल गैसिफिकेशन, कोल से कैसे हम गैस बनाएं, क्योंकि कोल का बहुत बड़ा भंडार हमारे पास है. चौथा, हम कैसे एथेनॉल को और पेट्रोल में ज्यादा मिला के उसकी जो मांग है उसको कम करें, तो उससे भी बहुत, उस पर भी सरकार के बहुत प्रयास हैं. अभी हमने देखा है जो हायर ग्रेड ऑफ एथेनॉल ऑयल पेट्रोल है, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल या डीजल, वो अभी आया नहीं है बाजार में, लेकिन आने की बात हो रही है, तो उसमें हमने ड्यूटी माफ कर दी है. तो इस तरह से कई तरह से सरकार के प्रयास हैं कि कैसे एक तो हम अपनी सप्लाईज को सिक्योर करें और डाइवर्सिफाई करें, साथ साथ अपने देश में भी, जैसे बैटरी चलित वाहन, जैसे ईवी हम कह रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर है. तो इस तरह से कई इस सिचुएशन से कम ये हमें समझ में आया कि इस चैलेंज से कैसे मीट करना. और शायद तभी मुझे लगता है, चूंकि हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या के ऊपर इतने बड़े पैमाने पे वेस्ट एशिया का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला.
1: So to the Indian equity investors, we've just gone through this geopolitical turmoil, so to speak. There's also the US-China tension still simmering in the background. In such a scenario, what should the portfolio allocation be for the Indian equity investors?
2: See, portfolio allocation, as anybody says, I think it should be diversified. You should be diversified in terms of your investments. And referring to the, you also talked about

0: are concerned, I would say you should diversify, and some, I think, in looking at these kind of situations, obviously you should also have something in terms of equity. You can also make some investments into metals, gold. Plus, I would say also go to banks, put some money in form of fixed deposit, and obviously mutual funds also we keep telling our investors. So I think you should stay diversified. That is the best, I would say, वे टू गो.
1: सिद्धार्थ, ये तो आपने विस्तृतीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन की बात कही, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी हमारे श्रोता और जो निवेशक जो हमारे शो को भी सुनते हैं उनके बिहाफ पे, कि अभी ऐसे कौन से चुनिंदा सेक्टर्स आपकी नजर में होंगे जहां पर हमें निवेश करना चाहिए?
0: नहीं, देखिए, मुझे लगता है प्राची, मैं बहुत ज्यादा इस सोच का नहीं हूं कि केवल इस किसी खास सेक्टर में ही आप इन्वेस्ट करें तभी आपको
1: नहीं, मतलब आज की परिस्थितियों को देखते हुए
0: मुझे लगता है कि उससे ज्यादा है कि हर सेक्टर में मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है. हाँ, अगर आप मुझे फौरी तौर पे मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा आप एफएमसीजी में करिए, आप जो है रिन्यूएबल में करिए, बिकॉज दीज आर एफएमसीजी हमेशा मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हमेशा, बिकॉज वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन बेस डूइंग ग्रोइंग इकोनॉमी, तो ऑब्वियसली बहुत उसमें अपॉर्चुनिटीज होती हैं. रिन्यूएबल एक क्षेत्र है, डिफेंस जहां पे हम बहुत बड़ी एक पावर के तौर पे अब उभर रहे हैं, तो मुझे लगता है. लेकिन इसके साथ साथ मेरा हमेशा ये मानना है कि आप ऐसी कंपनियों का चुनाव करें जिनका मैनेजमेंट अच्छा हो, जिनकी ऑर्डर बुक अच्छी हो, जिनकी बॉटम लाइन टॉप लाइन आप देखें, तो और उनकी कॉरपोरेट गवर्नेंस का रिकॉर्ड देखें, उसको बारीकी से देखें और ऐसी कंपनियों में निवेश करने की कोशिश करें.
2: मूविंग ऑन, कंट्रीज फिस्कल पॉलिसी इज इवॉल्विंग to support domestic growth and strengthen economic resilience amid rising global uncertainties triggered by the ongoing West Asia conflict. According to a report by Standard & Poor's, India's risk management approach is transitioning from providing immediate economic buffers to building long-term strategic resilience. Despite the challenges, the report said, India's policy response reflects a broader emphasis on resilience and strategic autonomy. So that fiscal measurements, industrial policy adjustments, and the efforts to diversify energy sources are being deployed simultaneously by the government. And these, I'm certain, are adding towards the country's fiscal policy that is getting strengthened.
0: See, Rajesh, as far as our fiscal policy is concerned, I would say since 2014, when Prime Minister Narendra Modi took over, I think we were characterized as fragile, among the fragile five economies of the world. But today, we continue to be the fastest growing economy of the world. And if you look at our broad fundamentals, you look at inflation, you look at our debt to GDP ratios, I think we are doing extremely well on those fronts. You look at our, despite the West Asia crisis, despite high energy prices, we continue to have a very robust forex reserve. So I think and still almost 108 days of West Asia conflict, and this year the government had announced a new roadmap to bring down its debt to GDP ratio by almost 50% by 2031. So we have still officially not given up on that. And though I am sure, as the finance minister said a few days back, that they will be reviewing after, because we will, at least in this financial year, we will definitely feel the impact of West Asia on our on the Indian economy, on our fiscal, we'll have a fiscal impact also. But if you look at the trajectory, the focus of the government is to reduce the debt to GDP ratio. The fiscal deficit has been continuously coming down if you look at last 12 years, and government has not deviated from that path, and neither there is any intent to deviate. Obviously, there will be some adjustment in these extraordinary times. Any economy, any country will have to factor in. So that would be a miss of 1 year or something like that. But overall, the trajectory is to bring down the fiscal deficit.
1: श्रोताओं, अभी तो हमने घरेलू बाजार की बात की, अब आइए रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में आज मिला जुला रुख रहा. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 2% से अधिक, ताइवान का ताई एक्स लगभग 1% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 8% बढ़ा। जापान का निकेई 0.5

0: 1% बढ़कर 69,405 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले निकेई दिन के कारोबार में 70,020 अंकों के सबसे ऊंचे स्तर पर भी आया। बैंक ऑफ जापान के ब्याज दरों को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाने के फैसले से निवेशकों का भरोसा बढ़ा। बैंक ने येन की कमजोरी और तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता जताई थी। इस कदम से नीतिगत दर 1995 के बाद पहली बार 1% पर पहुंचा। वहीं दूसरी ओर हांगकांग का हैंग सैंग लगभग 1.5% और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.1% नीचे आया। बात यूरोपीय सूचकांकों की करें श्रोताओं, तो यहां सकारात्मक दिशा में कारोबार हुआ। फ्रांस का कैक 0.7%, जर्मनी का डैक्स तथा लंदन का फुटसी अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.5% से ऊपर कारोबार करता नजर आया।
1: Moving on, the Wall Street rallied yesterday following the announcement of US-Iran peace agreement. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index soared over 3% to close at 26,684, and the S&P 500 advanced more than 1.6% to end at 7,554. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average climbed 0.9% to close at a record high of 51,671. Siddharth, the Federal Reserve's policy meeting is set to begin tonight under the new chairman, Kevin Warsh. And what should we expect from the Kevin Warsh's first show?
2: See, Rajesh, I think if we look into the background of his appointment, Mr. Donald Trump, obviously the American president, was not happy with Jerome Powell, his predecessor. So I think the expectation was that he would come and cut the interest rate. But yes, the West Asia crisis, I think the entire world is facing this, the pressure from inflation. I think if you look at the European Central Bank, they've also raised interest rates, as our colleague Prachi just said, mentioned Japan. So they've also raised interest rates because there is every economy is facing this pressure on prices, inflation. And I think as far as Fed Reserve is concerned, I think Kevin Warsh is likely to maintain a status quo. And what we are also getting to hear is also that he would be not giving those kind of future guidances. He would be limiting his interactions, his communications, and leaving more space for the Fed to not to take decisions rather than give out future guidances.
1: Okay, very, very quick comment on Bank of Japan's decision to raise interest rates by 25 basis points.
2: Rajesh, I think it was widely expected, and I think they have also said that the Japanese central bank will continue to buy the bonds also, and they would given a very clear picture. They will continue to buy around 2 trillion worth of bonds, and they've given a very, so I think, and obviously the hike in interest rate was widely expected. It was also, the market had their own Nikkei, or I would say their own markets had factored in the hike in interest rate, and it is basically to deal with the inflationary pressures in Japan.
0: आगे बढ़ते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में कृषि से जुड़ी एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और खरीफ 2026 सीजन के लिए देश भर में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संभावित अलनीनो की स्थिति को देखते हुए उन्होंने कपास का उत्पादन बढ़ाने, दालों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम बारिश वाले जिलों के लिए पहले से आपातकालीन योजनाएं तैयार करने पर विशेष जोर दिया। श्री चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम बारिश या असमान बारिश की संभावनाएं हैं, वहां पहले से ही पूरी तैयारी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के साथ मिलकर फसलवार आपातकालीन योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, ताकि मौसम की किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में किसानों को तुरंत विकल्प, सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
1: News just in, French President Emmanuel Macron welcomes Prime Minister Narendra Modi at the venue of G7 Summit 2026 in Evian, France. Siddharth, India is not a G7 member, yet Modi has attended 7 straight summits. What does this say about India's evolving status in the global order?
2: I think we have all, now, Rajesh, it wouldn't be wrong on my part to say that we've almost become permanent at the all the G7 meetings. And it also shows the leadership of Prime Minister, his acceptance as a global leader, our growing economic power, and the world willing or very anxious, or I would say very keen to engage with us and make investments into India, India as a growing economic power. So I think it is a demonstration of that.
0: सरकार ने हर दो हफ्ते में होने वाली अपनी समीक्षा में डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एसएईडी बढ़ा दी है. आज से डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि एटीएफ एक्सपोर्ट पर लेवी 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है. पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 1.05 रुपए प्रति लीटर पर बनी हुई है. घरेलू इस्तेमाल के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा ड्यूटी में दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वेस्ट एशिया में चल रहे संकट को देखते हुए केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित कराने की कोशिशें कर रही है, और इस बीच ये बदली हुई ड्यूटी लागू की गई है.
1: Global crude oil prices fell to their lowest level in 3 months today as market participants assess the prospects of a resumption in oil supplies through the Strait of Hormuz. Brent crude decreased 2.7% to $80.89 per barrel, while West Texas Intermediate crude declined 3.1% to $78.25 per barrel at the time of the last report. And this is a good news for India, and hopefully we will reach the pre-war levels soon, or Rajesh, will it take time?
2: No, I think, Rajesh, if the truce holds on, if the agreement between US and Iran holds on, I think the prices have already fallen very sharply, and I think, as you rightly said, I think they should fall further, and we may reach pre-war levels, because there is huge supplies of crude around the world, and I think it would be a huge relief for the Indian economy in terms of the inflation pressure which is looming on us.
1: Why, as well as also India, all over the world, yeah, economies plus, will benefit.
2: Yeah, that is true, but for us, obviously, because we are huge importers, or basically 90% of our energy needs are imported, so it also brings around our import bill, and also puts gives a relief on in terms of the fear of inflation rising.
1: Okay, in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading on a flat note at 1,53,250 rupees per 10 grams, while silver was trading nearly 0.5% down at 2,51,480 rupees per kilogram a short while ago.
0: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना लगभग सपाट होकर 1,53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, और जुलाई अनुबंध वाली चांदी आधा प्रतिशत गिरकर 2,50,296 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. सिद्धार्थ, सोने और चांदी के भाव पर आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी समय की बाध्यता को देखते
2: नहीं प्राची, मुझे लगता है सोने पे सेंट्रल बैंक्स का जो आकर्षण है वो बना हुआ है, तो मुझे लगता है जो करंट लेवल्स हैं वो बने रहेंगे. जो एक थोड़ी सी हमने पिछले 4-5 दिन पहले देखी थी, एक शार्प गिरावट आई थी, उसके बाद फिर वापस उसने अपना स्तर पा लिया है, और मुझे लगता है जो सेंट्रल बैंक्स का जो वोट है वो, और वो उनके तरफ अभी भी गोल्ड की तरफ उनका आकर्षण बना हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये प्राइजेस घटेंगी, इसी लेवल्स के आसपास रहना चाहिए.
0: और अगर हम वहीं चांदी की बात करें तो
2: चांदी का ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल यूज है, तो जो हमने इधर तेजी देखी और चाया, तो चांदी में भी मुझे लगता है इस तरह की अब वो जो प्राइस लेवल्स हैं, करंट प्राइस लेवल्स मुझे लगता है शुड सस्टेन.
1: सो सिद्धार्थ, एवरी $10 दैट फॉल्स इन क्रूड इज सेट टू बेनिफिट इंडियाज फिस्कल पोजिशन सिग्निफिकेंटली. एट करंट क्रूड लेवल्स, व्हाट डज दैट मीन फॉर इन्फ्लेशन एंड द आरबीआई रेट स्टैंड्स, एलबीएट briefly, if you could answer.
2: Rajesh, I don't think we should now expect, if this truce or this agreement holds, I don't see a case for a rate hike, and I think RBI rightly has also in the last monetary policy held on the interest rates, and as far as obviously, and our import bill, obviously it will be a big relief to the Indian economy.
0: सिद्धार्थ कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
2: आप दोनों को भी धन्यवाद.
1: थैंक यू सिद्धार्थ फॉर बीइंग विद अस. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज, सेंसेक्स जंप्स ओवर 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट नियरली 24,000 लेवल, एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड मिक्स्ड, एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन. That's all we have in this edition of Market.

0: मंथरा टिल टुमारो गुड बाय।
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की ये लगातार 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। एवियों में इस समय सम्मेलन का आउटरीच सत्र चल रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में आज अमरीका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने का प्रयास किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जा रही सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी अब यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UGC परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता को बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेशों को भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इसमें गांवों में अब कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट को वापस ले लिया गया है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर ही किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छाया श्रमिक योजना के अंतर्गत दार्जिलिंग पहाड़ियों और तराई डुअर्स क्षेत्र में बंद पड़े 25 चाय बागानों को फिर से खोलने के प्रयास किए जाएंगे। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनन से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनन पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल इस समझौते को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इसराइल की अपनी प्राथमिकताएं हैं और वो लेबनन में बफर जोन में तब तक बना रहेगा जब तक आवश्यक होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल होंगे आमने सामने। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Manoj Singh Rana. Prime Minister Narendra Modi is participating in a high-level working session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity at the G7 Summit in Evian, France. The session is being attended by leaders of the G7 nations, partner countries and key representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting just commenced after French President Emmanuel Macron formally welcomed the Prime Minister and leaders of other partner countries, followed by a group photograph of the participating leaders. Earlier today, the Prime Minister arrived in Evian on a two-day visit to participate in the summit, which got underway yesterday. On the sidelines of the summit, the Prime Minister has a packed diplomatic schedule. He is scheduled to hold bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, and the President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later tonight, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. A major focus of the Prime Minister's engagement at the summit will be his meeting with US President Donald Trump tomorrow. The two leaders are expected to hold wide-ranging discussions on bilateral cooperation across sectors, while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. U.S. allies at the Group of Seven summit of major industrialized nations worked today to push the war in Ukraine up the agenda of President Donald Trump after more than 4 years of the conflict. Host President Emmanuel Macron of France said he will seek to persuade Trump to continue supporting Ukraine and increase pressure on Russia to help reach a peace agreement. As the U.S. under Trump has cut back aid to Ukraine, France and its European allies are now the biggest providers of military and financial support to Kyiv. Ukrainian President Volodymyr Zelensky also joined G7 leaders for a morning working session, but talks wrapped quickly as leaders gathered for just 75 minutes. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has launched Unified Payments Interface UPI at Nice Messina in France. In a social media post, Mr. Goyal said that by bringing India's world-class digital payments platform to one of France's premier retail destinations marks another significant step in UPI's global expansion. He added that the initiative showcases India's ability to deliver trusted, seamless and interoperable digital solutions at scale. The minister further noted that the launch is strengthening the economic and technological ties between India and France, reflecting the growing depth an ambition of strategic partnership between the two countries. India and Japan have adopted the rules of implementation for the Joint Crediting Mechanism, JCM, under Article 6.2 of the Paris Agreement for enhancing cooperation in climate action, greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. According to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the rules of implementation were adopted on the 8th of June this year, following the Memorandum of Cooperation signed between the two countries last year for the JCM. The mechanism provides a framework for collaboration on mitigation projects that reduce or remove greenhouse gas emissions while supporting sustainable development in India. West Bengal Chief Minister Shubhendu Odhikari today announced that the historic Eastern Frontier Rifles EFR will soon be revived with more than 1,000 Gorkha youths to be recruited into the force. Addressing a public rally at Kursiong in Darjeeling, Mr. Odhikari paid tribute to the valour and sacrifices of Gorkha soldiers in defending the nation. Mr. Odhikari further announced that recruitment to the state police force would soon be opened, creating employment opportunities for a large number of Gorkha youths. He added that at least 30% of seats in state recruitment would be reserved for women.

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
2: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
1: जी,
2: विश्वास और जन कल्याण
1: जी,
2: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा। ये पहली बार हुआ है, वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
1: जी।
2: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
1: बिल्कुल।
2: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
1: जी,
2: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बता रहा है।
1: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
2: विषय यह उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
1: जी।
2: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका

0: हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
1: जी।
0: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
1: जी।
0: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अकाल सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो, तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर की दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, आप खुद भी ईवी में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
0: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है, जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है
1: जी।
0: अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस डे रहा है, अखबारों में भी आया है
1: जी।
0: लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं वहां पीएम 2.5 और पीएम 10 ये दो जो तत्व है, मतलब पीएम 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और पीएम 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है इसको एयर पार्टिकल कहते हैं, वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है, व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में है उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहां के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है, व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाएं।

0: प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना बीपी है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं, नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव-गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
0: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
1: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में केपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
0: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का

0: 19.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
1: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
0: जी।
1: और नेचर का ये नियम होता है कि जहां प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सर्वाइव करते हैं
0: जी।
1: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टीमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता, उसका भी हमने वापस से री इंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टीमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टीमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
0: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
1: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहां ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नजदीक है। अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या

0: हमें वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं, उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
1: जी।
0: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था, तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था और जिसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहां पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता, है ना, पक्षियों को छांव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूं कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है। जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना, लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए, और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है, और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी, और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार, आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
1: जी,
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे
1: जी?
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो, लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है, लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
1: जी।
0: आप एक बात बताइए
1: जी,
0: कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहां से आती है
1: जी।
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
1: जी?
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
1: जी,
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है।
1: जी, हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की। तो जो भारत ने वर्ष 2000

0: 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की यानी कि नेट जीरो इमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए। सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
1: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
0: जी।
1: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नई एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वन क्षेत्र बड़ा है तो वो नेट जीरो के लिए है।
0: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इम्पोर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
1: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
0: जी।
1: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
0: जी।
1: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
0: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
1: पहला तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज्यादा से ज्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं, तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
0: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय आतंकी अपराध मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली मजिस्ट्रेट कार्यालय में सिटीजन लाउंज कम न्यू एज लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की दौड़ में आगे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी के सत्य मार्ग पर स्थापित मॉड्यूलर वर्षा जल संचयन प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा की और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के सुव्यवस्थित समन्वित और संतुलित विकास को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक का आयोजन किया गया। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आज पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी अपराध मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस ऑपरेशन में 7 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जो पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते अवैध हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी और वितरण में शामिल थे और बाद में इन्हें दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में आपूर्ति करते थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से 5 अत्याधुनिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 41 जिंदा कारतूस, आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य और एक स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान अवैध कारोबार से प्राप्त धन के लेनदेन से जुड़े कई बैंक खातों के विवरण भी जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के जरिए दिल्ली एनसीआर में कई संभावित आतंकी घटनाओं को समय रहते विफल कर दिया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली मजिस्ट्रेट कार्यालय में सिटीजन लाउंज कम न्यू एज लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये केंद्र नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुविधाजनक, आधुनिक और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में यहां कंप्यूटर सुविधाएं, करियर परामर्श सत्र, कौशल विकास कार्यक्रम, विशेषज्ञ व्याख्यान और मार्गदर्शन कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। एक रिपोर्ट।
1: सिटीजन लाउंज कम न्यू एज लर्निंग सेंटर में आने वाले नागरिकों के लिए एसी वेटिंग रूम, आरामदायक बैठने की व्यवस्था, समाचार पत्र, पुस्तकें और पत्रिकाओं सहित रीडिंग कॉर्नर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और अन्य आगंतुकों को अपनी बारी की प्रतीक्षा के दौरान व्यवस्थित और सुविधाजनक वातावरण मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि आने वाले समय में इसे प्रतीक्षालय तक सीमित न रखकर इसे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए एक ज्ञान और कौशल विकास केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यहां कानून, प्रशासन, करियर मार्गदर्शन, प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य विषयों से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही डिजिटल संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर भी स्थापित किए जाएंगे। इससे युवाओं को नई जानकारी, कौशल विकास और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझने का अवसर प्राप्त होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की दौड़ में निरंतर आगे बढ़ रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आज का नया भारत संकल्प और गति के साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, बोगीबील ब्रिज और चिनाब ब्रिज जैसी परियोजनाएं देश की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग क्षमता और बढ़ती आर्थिक शक्ति का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए की गई पहल ने कनेक्टिविटी के नए आयाम स्थापित किए हैं। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज अर्बन एक्सटेंशन रोड UER2 पर पिछले 12 वर्षों में हुए विकास कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित प्रगति पथ यात्रा के दौरान लोगों को इन उपलब्धियों की जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी के सत्य मार्ग पर स्थापित मॉड्यूलर वर्षा जल संचयन प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि जल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत

0: बनाना और उसका विस्तार करना पर्यावरण अनुकूल राजधानी के निर्माण के लिए आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
1: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि इस प्रकार की मॉड्यूलर वर्षा जल संचयन प्रणालियां भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर जल भराव की समस्या को कम करने तथा दिल्ली में शहरी जल प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समीक्षा के दौरान श्री संधू ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष से प्रणाली की संरचना, परिचालन दक्षता और दीर्घकालिक स्थिरता संबंधी विशेषताओं पर विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने आगामी मानसून को देखते हुए शहर में ऐसे पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ अवसंरचना परियोजनाओं को तेजी से अपनाने और उनका विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: तरनजीत सिंह संधू ने खान मार्केट में चल रहे सुधार कार्यों का निरीक्षण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि खान मार्केट जैसे प्रतिष्ठित सार्वजनिक और वाणिज्यिक स्थलों की उन्नति, नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने, यातायात और पैदल यात्री प्रबंधन को सुदृढ़ करने तथा आगंतुकों, पर्यटकों और स्थानीय व्यापारियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के सुव्यवस्थित, समन्वित और संतुलित विकास को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक का आयोजन हुआ। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच संस्थागत समन्वय को मजबूत करने, क्षेत्रीय आवागमन तथा संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने, विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और एनसीआर से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। दिल्ली के मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय ने आज दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए श्री उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड राजधानी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है, क्योंकि ये नागरिकों की बुनियादी जरूरतों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देशभर में हर घर तक जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे प्रयासों के साथ साथ यमुना, गंगा और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ 2026 सीजन के लिए देशभर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। कृषि मंत्रालय ने कहा कि अल नीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक रिपोर्ट।
2: समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, ताकि मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार कल नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करना, स्वयं सेवकों की सहभागिता बढ़ाना और देश भर में नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के

0: ये पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहलों का भी अनावरण करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान के दौरान देश भर में जागरूकता और सामुदायिक जन सहभागिता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इनमें सामूहिक प्रतिज्ञा अभियान, जागरूकता रैलियां, साइकिल रैलियां, युवा नेतृत्व वाले अभियान, पोस्टर निर्माण, निबंध प्रतियोगिताएं, वेबिनार, विशेषज्ञों के साथ संवाद और नुक्कड़ नाटक शामिल है। अपर्णा और शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
1: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की मीडिया प्रभारी और प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा ने कहा है कि योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर एक समग्र समाधान प्रदान करता है। आकाशवाणी से एक विशेष बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया में बुजुर्ग आबादी में वृद्धि हो रही है, जिससे स्वस्थ वृद्धावस्था एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य प्राथमिकता बन गई है। डॉक्टर रीमा ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायामों का समूह नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश की 108वीं जयंती के अवसर पर विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने कम आयु में स्वयं को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने सादगी और सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीते हुए दिल्ली के विकास, किसानों के कल्याण और राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर काम किया। राजधानी में आज सुबह के समय बारिश हुई और आसमान में हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान रह सकता है 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह दावा निराधार है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय आतंकी अपराध मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली मजिस्ट्रेट कार्यालय में सिटीजन लाउंज कम न्यू एज लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की दौड़ में आगे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने राजधानी के सत्य मार्ग पर स्थापित मॉड्यूलर वर्षा जल संचयन प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के सुव्यवस्थित विकास को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक का आयोजन। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। एमियाओ में इस समय सम्मेलन का आउटरीच सत्र चल रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के

0: साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमरीका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर प्राथमिकता दिलाने का प्रयास किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्द समाप्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि यह सम्मान केवल उनके लिए नहीं बल्कि देश की समस्त जनता के लिए है।
1: मोदी जी ने भी कहा कि यह सम्मान केवल मेरे लिए नहीं है। स्लोवाकिया ने जो हाईएस्ट नागरिक सम्मान दिया है, यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों के लिए है और ये आज गर्व का विषय है कि स्लोवाकिया के इस अवार्ड को मिलाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को 33 ऐसे सर्वोच्च नागरिक अवार्ड दूसरे देशों के वो मिले हैं। इससे हमारे देश का कहीं न कहीं मस्तक ऊपर हुआ है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी कार्य है जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखनी ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल इस समझौते को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इसराइल की अपनी प्राथमिकताएं हैं और वह लेबनान में बफर जोन में तब तक बना रहेगा जब तक आवश्यक होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को हराया। भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और रात के 8:10 और ये समय आपके पसंदीदा प्रोग्राम मधुरिमा का है। और आज मधुरिमा में हम बात करने वाले हैं राग खमाज की।
1: शील शील कहाँ खोई हुई हो?
2: मिलन की इन खूबसूरत घड़ियों में इंतजार की वो कभी ना भूलने वाली घड़ियां याद आ गई, जब मैं तुम्हारे लिए तड़पा करती थी, तुम्हारा इंतजार किया करती थी।
1: मैं भी तो तड़पा करता था, मैं भी तो इंतजार किया करता था।
2: उस इंतजार में भी एक अजीब मजा था। आओ रवि, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूर रहकर इंतजार की उन खूबसूरत घड़ियों में एक बार फिर से जी कर देखें, जिन्होंने हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया। तुम वहां चले जाओ रवि, दूर उस पार, और मैं वहां चली जाती हूँ, दूर उस पार। जाओ ना।

0: राग खमाज की हम आज बात करने वाले हैं प्रोग्राम मधुरिमा में। और राग खमाज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय राग है। ये खमाज थाट का आश्रय राग यानी कि जनक राज है। अपनी चंचल प्रकृति के कारण इसका उपयोग विशेष रूप से ठुमरी, दादरा, गजल और फिल्मी गीतों में किया जाता है। राग जो खमाज है इसकी जाति शाड़व संपूर्ण है। आरोह में इसके 6 स्वर और अवरोह में भी 6 स्वर लगते हैं। वादी स्वर इसका गंधार है, संवादी स्वर निषाद है। रात्रि का दूसरा पहर इसके गायन का सबसे उपयुक्त समय बताया जाता है। इसमें आरोह में ऋषभ यानी कि रे वर्जित है। इसकी विशेषता यह है कि इसके आरोह में शुद्ध निषाद और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
6: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
0: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल प्रोग्राम चल रहा है मधुरिमा, और मधुरिमा में आज बात राग खमाज की।

राग खमाज की हम बात कर रहे हैं और राग खमाज में हमने आपको बताया कि इसका वादी स्वर गांधार और संवादी स्वर निषाद है। रात्रि के 9 से 12 बजे तक का इसका जो गायन का समय है, इसमें ऋषभ वर्जित है। ये एक बहुत ही चंचल और श्रृंगार रस से परिपूर्ण राग है। इस राग में बड़ा ख्याल नहीं गाया जाता, बल्कि ठुमरी, टप्पा, तराना और गजलें मुख्य रूप से गाई जाती हैं। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ मधुरिमा प्रोग्राम रात के 8:23 और 18 सेकंड

कार्यक्रम मधुरिमा में राग हमाज की हम बात कर रहे हैं। इस राग में धैवत से मध्यम की संगति बहुत सुंदर लगती है और राग की खूबसूरती को ये बढ़ाती है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं और इस अंतिम गीत के साथ कार्यक्रम मधुरिमा को हम यहीं संपन्न भी करते हैं।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और श्रोताओं, हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ कार्यक्रम में है हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और वो सब कुछ अधिक डिटेल्स के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल के मैदान की हर बात। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस और सेनेगल आमने सामने, कल खेले गए सभी चार मुकाबले ड्रॉ। भारतीय टीम FIH हॉकी विमेंस नेशन कप में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। मकाऊ बैडमिंटन ओपन 2026 आज से शुरू हुआ। थरुन मन्नेपल्ली और ईशा रानी बरुआ करेंगे भारतीय चुनौती का नेतृत्व। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम कल अपने दूसरे ग्रुप मुकाबले में नीदरलैंड से खेलेगी, और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल

0: नौ में खेला जाएगा। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं वायरल फुटबॉल फीवर के साथ, जहां पूरी दुनिया के ऊपर फुटबॉल का ये खुमार सर चढ़ के बोल रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज अमेरिका के न्यू जर्सी में ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात्रि 12:30 बजे से शुरू होगा। वहीं एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 3:30 बजे के करीब खेला जाना। इससे पहले कल फीफा विश्व कप में कई उलटफेर देखने को मिले। विश्व कप में 68 साल बाद एक ही दिन खेले गए 4 मुकाबले ड्रॉ रहे।
1: फीफा विश्व कप 2026 में कल इस सत्र का सबसे बड़ा उलटफेर देखा गया, जहां केप वर्डे ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए विश्व कप की प्रबल दावेदार स्पेन को गोल रहित बराबरी पर रोक दिया और इस मैच के हीरो केप वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्हा रहे, जो एक ढाल की तरह गोल कोस्ट पर डटे रहे और कई गोल बचाकर टीम की रक्षा की। इस मुकाबले के बाद वोजिन्हा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: For this moment, for this dream, a lot of generation in the past was dreaming with this. They didn't achieve many of ex-football players from national team. And now the dream come true. All of us, we are happy because we work a lot.
1: एक और ड्रॉ मुकाबले ग्रुप जी के पहले मैच में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जहां दोनों टीमें 2-2 के बराबरी पर रही। कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेला गया ये मैच बेहद रोमांचक रहा, जहां न्यूजीलैंड ने एलिजा जेस्ट के 2 गोलों की बदौलत पहले 2-0 की बढ़त बनाई, लेकिन ईरान ने शानदार पलटवार करते हुए 2 गोल दागे और मुकाबले को ड्रॉ करा दिया। दिन का तीसरा ड्रॉ मुकाबला सिएटल स्टेडियम में बेल्जियम और मिस्र के बीच देखने को मिला, जहां कांटे की टक्कर वाला ये मुकाबला 1-1 के बराबरी पर समाप्त हुआ। मिस्र विश्व कप में अपनी पहली जीत के करीब पहुंच गया था, लेकिन बेल्जियम के वैकल्पिक खिलाड़ियों के त्वरित जवाब ने उसे निराश कर दिया। मिस्र के इमाम अशूर को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। अमेरिका के मियामी स्टेडियम में सऊदी अरब और उरुग्वे के बीच ग्रुप एच का पहला मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। वहीं सऊदी अरब के लिए अब्दुल्लाह अल अमरी ने 41वें मिनट में रिबाउंड पर गोल किया, जबकि उरुग्वे के मैक्सी अराउजे ने 80वें मिनट में बराबरी का गोल दाग दिया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो ये फीफा का मंच है, जहां रोमांच, उम्मीदें, जज्बा और हुनर हर संभावना को नतीजे में बदलने की क्षमता रखता है। और अब यूएस के बाद चलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने एफआईएच हॉकी विमेंस नेशन कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज पूल ए के मुकाबले में जापान को 2-1 से हराकर अंतिम 4 में जगह पक्की की।
3: भारत ने पहले ग्रुप मैच में अमेरिका पर मिली रोमांचक जीत का सिलसिला आज ऑकलैंड के नॉर्थ हार्बर नेशनल हॉकी सेंटर में भी जारी रखा और एफआईएच हॉकी विमेंस नेशंस कप के अपने दूसरे पूल ए मैच में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। कप्तान सलीमा टेटे ने 33वें मिनट और लालरेम सियामी ने 49वें मिनट में भारत के लिए गोल किया। जापान के लिए एकमात्र गोल हिरा मित्सू ए ने 35वें मिनट में किया। मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। तीसरे क्वार्टर में भारत ने 33वें मिनट में मिले एक पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर अपना खाता खोला। नवनीत कौर के शॉट को निक्की प्रधान ने सलीमा की तरफ धकेला, जिससे कप्तान ने बिना कोई मौका गंवाए गोल पोस्ट में भेजकर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके ठीक 2 मिनट बाद जापान की हिरा मित्सू ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। मैच के आखिरी क्वार्टर में 49वें मिनट में सुशीला चानू पुखरामबम ने सर्कल के किनारे से गोल की और एक तेज पास दिया, जिसे एक बेहतरीन गोल में बदलते हुए लालरेम सियामी ने भारत को जीत दिलाई। कप्तान सलीम टेटे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम इस जीत के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गई है। भारत के 6 अंक हो गए हैं। भारत अब टूर्नामेंट के अपने आखिरी पूल ए मैच में 18 जून को उरुग्वे से भिड़ेगा। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार खेल से वापस एक बार फॉर्म में वापसी का शंखनाद कर दिया है। और अब बात बैडमिंटन की। मकाऊ बैडमिंटन ओपन 2026 आज से शुरू हो गया है। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय बैडमिंटन टीम का हिस्सा थरून मन्नेपल्ली और ईशा रानी बरुआ मकाऊ में देश की चुनौती की अगुवाई करेंगे।

0: युवा भारतीय बैडमिंटन टीम मकाऊ ओपन में देश की अगुवाई के लिए तैयार है। आगे आने वाली एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों को देखते हुए कई दिग्गज खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता से आराम दिया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई ओपन में सेमीफाइनल तक का सफर तय करने वाली दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी का स्टार जोड़ी शामिल है। इन बड़े खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में टीम का पूरा दाबोदार युवा और उभरते खिलाड़ियों पर है। पिछले साल मकाऊ ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली थरूर मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स टीम की अगुवाई कर रहे हैं। अनुभवी किरण जॉर्ज, ऋत्विक संजीवी और शंकर सुब्रमण्यम भी इस दल का हिस्सा है, जबकि रौनक चौहान ने आज अपने दोनों क्वालिफायर मुकाबले जीतकर मुख्य ड्रॉ जगह बना ली है। महिला सिंगल्स की कमान ईशा रानी बरुआ के हाथ में है, जिन्हें अनमोल खरब और तस्मीन मीर का साथ मिलेगा। आकर्षि कश्यप, रक्षिता रामराज, श्रेयंसी बली शेट्टी, मानसी सिंह, श्रेया लेले और अश्मिता चालिहा भी भारतीय महिला सिंगल्स टीम का हिस्सा है। अगर डबल्स की बात की जाए तो भारत की एकमात्र पुरुष डबल्स जोड़ी और तीनों महिला डबल्स जोड़ी आज पहले ही दौर में बाहर हो गई। मिक्स्ड डबल्स में पांच भारतीय जोड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल है। पीवी सिंधु एकमात्र भारतीय सेटलर है जिन्होंने मकाऊ ओपन जीता है। सिंधु ने लगातार 2013 से 2015 तक लगातार तीन बार ये खिताब जीता था। अमीषा स्पोर्ट्स कैन।
1: तो नए जज्बे के साथ भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन के कोर्ट पर धमाल मचाने को तैयार हैं। और अब बात की जाती है फिट इंडिया की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कल मुंबई के वर्ली सर्किल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि यह आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। मुंबई के सुरमय समुद्र तट के मनोरम दृश्यों के बीच विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 250 साइकिल चालक श्री मांडविया के साथ साइकिल चलाते हुए फिट इंडिया का संदेश देते हुए नजर आएंगे। इस आयोजन के साथ ही 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक समारोह का शुभारंभ भी हो जाएगा। और अब बात की जाए क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के महासंग्राम की, जो कि इंग्लैंड और वेल्स में चल रहा है। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम कल अपने दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करने वाली भारतीय टीम इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है।
2: आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद हरमनप्रीत की विमेंस इन ब्लू के हौसले बुलंद हैं। दूसरे मुकाबले में भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ग्रुप ए का ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से लीड्स के हेडिंगले मैदान में खेला जाएगा। एक तरफ जहां भारत ने 64 रन की विशाल जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है, वहीं दूसरी तरफ नीदरलैंड्स को अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा। हरमनप्रीत की आर्मी के लिए इस मैच की राह काफी हद तक आसान नजर आ रही है। पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाली उप कप्तान स्मृति मंधाना से टीम को फिर एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी और टीम को अपनी दूसरी सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा से इस मैच में बड़े स्कोर की चाह रहेगी। कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष की नज़र अच्छी शुरुआत को एक बड़े स्कोर में बदलने पर होगी, जबकि पहले मैच में कुछ खास न कर सकी जेमिमा रॉड्रिक्स और भारती फुलमाली नीदरलैंड्स के सामने वापसी करते हुए फॉर्म हासिल करना चाहेंगी। पहले मैच में अपनी शानदार गेंदबाजी से पाकिस्तान को पस्त करने वाली दीप्ति शर्मा पर भी सबकी नजरें रहेंगी, जिनको श्री चरणी का भरपूर साथ मिलेगा। अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल भी गेंदबाजी के मोर्चे पर टीम को मजबूती देती नजर आएंगी। इस दौरान BCCI ने टीम के लीड्स पहुंचने का एक वीडियो साझा किया। इसमें अपनी साथी अरुंधति रेड्डी के बारे में उप कप्तान स्मृति मंधाना ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: Me to do the right things in terms of my preps and doing the right things on the ground.
2: भारतीय टीम के लिए ये मौका बेंच पर बैठे अपने खिलाड़ियों को आजमाने के लिए भी अच्छा अवसर है। दूसरी तरफ अपना पहला T20 विश्व कप खेल रही नीदरलैंड्स ने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा मुकाबला खेला था, लेकिन टीम को हार का सामना करना पड़ा। टीम की उम्मीदों का दारोमदार कप्तान और विकेटकीपर बेबेट डी लीडे के कंधों पर है, जिन्होंने पिछले मैच में अर्धशतक की पारी खेली थी। उनके अलावा टीम को आयरिस ज्वेलिंग, हेदर सीजर्स, सिल्वर सीजर्स और कैरोलिन डी लैंग से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों का सामना करने से पहले भारतीय टीम की नज़र नीदरलैंड्स पर एक बड़ी जीत दर्ज कर ग्रुप में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और हरमनप्रीत की आर्मी के

0: दूसरी तरफ शुभमन गिल एंड ब्रिगेड भी एक ऐसी ही बड़ी जीत की राह में लखनऊ पहुंच चुकी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल लखनऊ में खेला जाना है। शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम इस श्रृंखला को अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी, तो वहीं मेहमान टीम अफगानिस्तान की नजर यह मैच जीतकर श्रृंखला में वापसी करने पर होगी।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे से लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। धर्मशाला में अफगानिस्तान के ऊपर शानदार जीत दर्ज करने के बाद शुभमन गिल की मैन इन ब्लू कल सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम बल्लेबाजी, गेंदबाजी और खेल के हर मोर्चे पर मजबूत नजर आ रही है। कप्तान शुभमन गिल का बल्ला IPL के बाद न्यू चंडीगढ़ में टेस्ट मैच और फिर पहले एक दिवसीय मैच में भी रनों का पहाड़ खड़ा करता नजर आया, जिनको इन फॉर्म KL राहुल का बखूबी साथ मिल रहा है और दोनों खिलाड़ी लगातार रन भी बना रहे हैं। हिटमैन रोहित शर्मा पर भी दर्शकों की नजरें होंगी। रोहित पहले एक दिवसीय मैच में दुर्भाग्यशाली रहे थे और 16 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए थे। पिछले कुछ एक दिवसीय मुकाबले को देखें तो रोहित का बल्ला शांत नजर आया है। ऐसे में 2027 विश्व कप की राह तलाश रहे रोहित शर्मा से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर भी अच्छे फॉर्म में है, जबकि वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों क्षेत्र में मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो धर्मशाला में अपना डेब्यू करने वाले स्पिनर हर्ष दुबे और तेज गेंदबाज गुरनूर बरार से भी टीम को उम्मीदें होंगी, जिन्होंने अपने पहले मैच में 3-3 विकेट चटकाए थे। अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी में उनका साथ देते दिखेंगे। ये श्रृंखला भारत के लिए 2027 विश्व कप की तैयारियों की शुरुआत मानी जा रही है। ऐसे में इस टीम की नजर हर मैच में अपना मनोबल बढ़ाने और बेहतर कॉम्बिनेशन तलाशने पर होगी। अगर मेहमान टीम अफगानिस्तान की बात की जाए तो उनकी नजर किसी भी हालत में इस मैच को जीतकर श्रृंखला में वापसी और बराबरी करने पर होगी। पहले मैच में शतक बनाने वाले रहमानुल्लाह गुरबाज अच्छी लय में हैं। राशिद खान, अजमतुल्ला उमरजई और इब्राहिम जादरान से भी मेहमान टीम को उम्मीदें होंगी। अगर ये खिलाड़ी चलते हैं तो भारत के लिए काफी हद तक मुसीबत बन सकते हैं, लेकिन भारतीय टीम की नजर तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए चेन्नई पहुंचने से पहले ही सीरीज अपने नाम करने पर होगी। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम की नजर होगी कि तीसरे मैच से पहले श्रृंखला को अपने नाम कर लिया जाए। वहीं दर्शकों की नजर होगी कि इस बार धर्मशाला की तरह बारिश इस खेल में कोई खलल डालती हुई नजर न आए। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक नई दिल्ली में होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के 400 से अधिक शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत की पहली और एकमात्र तलवारबाज ओलंपिक खिलाड़ी CA भवानी देवी की अगुवाई में 12 महिला और 12 पुरुष खिलाड़ियों वाली 24 सदस्यीय भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव और अपनी राय हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियॉन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियॉन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: कानूनी सहायता टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक

0: योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि यह दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देशभर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना।

0: इंडिया फ्रॉम द पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ,
1: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
0: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
2: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
3: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार जेसीएम के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमरीका ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियॉन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited.

0: states are now having an SIR. So why is it Bihar had an SIR? So why is it that West Bengal had so much problems? Because you had created a vote bank and you didn't want that vote bank to be removed from the voting list. And that, I think, is very, very dangerous, not only because it sort of destroys the very concept of democratic politics, but unless your voters list is clean, your electoral process cannot be clean. So it is very important for the hygiene of elections to have clean voter lists. And this is something which most people understand, but politicians who exploit illegal aliens in the country for their political purposes or as voters who will vote for them, and thus it's a guaranteed vote, they are causing enormous damage to the security of the country, to the future of the country. And most importantly, they are sort of bleeding the idea of democracy, electoral democracy, for their own petty interests.
1: कंचन जी, एक और जो मुद्दा रहा ये बंगाल के इलेक्शन में, महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा रहा. आरजी कार को लेके बहुत सारे रेबल एमपीज जो टीएमसी के, उन्होंने रिकॉर्ड पे बोला है कि उस वक्त जिस तरीके से कंडक्ट किया गया वो ठीक नहीं था.
0: खैर, उस वक्त तो ये रेबल, तथाकथित रेबल एमपीज और एमएलएस, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा था. ये एक विषय जरूर बन गया था, महिला सुरक्षा, ये हैड बिकम अ वेरी बिग इशू ओवर देयर. आरजी कार केम टू symbolize कि the condition which prevailed in West Bengal. एक ड्यूटी पर डॉक्टर, उसको अस्पताल के अंदर शी इज रेप्ड एंड देन मर्डर्ड, एंड देन द कैलस रिस्पॉन्स ऑफ द अथॉरिटीज, द हॉस्पिटल अथॉरिटीज, द पुलिस एंड द गवर्नमेंट. एंड ममता बैनर्जी वॉज होम मिनिस्टर, शी वॉज ऑल्सो द हेल्थ मिनिस्टर. And of course, she was the chief minister. In all three roles, she failed to respond to that tragedy. And Arjit Kar, believe me, was a ghastly tragedy, but there were various many other such incidents. Yeah. In the rural areas where young girls were picked up, you have Sondesh Khali incident where women were abused, sexually abused in party offices, all the details which are now coming out about student union offices, that those were actually houses of illicit pleasure. Yeah. So this is the kind of architecture you had put into place to stay in power. Obviously, people won't accept.
1: So, Kanchan ji, going forward, West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has now announced a series of investigations. You know, he has set up committees to look into excesses across the spectrum. One is what you just said, and also the extortion rackets, the cut money rackets that were going on. That will help.
0: It is important that there should be fair investigation, fair prosecution and fair justice. Because अगर आपने जो जिन्होंने भी ये गलतियां की हैं, ये अन्याय किया है, इनको अगर सजा नहीं मिलता है, इफ दे आर नॉट पनिश्ड, देन टुमारो यू विल फाइंड अनदर सेट ऑफ एक्सप्लॉयटर्स कमिंग इन टू प्ले. सो ये जरूरी है. दूसरी बात जो है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो डिटेल्स अब उभर के आ रही हैं, किस किस्म की एक्सप्लॉयटेशन होती थी, किस किस्म का तोलाबाजी हो रहा, किस किस्म का कट मनी. यू सी, दीज आर ऑल थ्री थिंग्स. तोलाबाजी इज कोई अगर रेड़ी भी लगाता है, ठेला लगाता है, उसका दिन में 100 रुपए का, या कोई ऑटो चलाता है तो उसका दिन में 100 रुपए का रोजगार होता है, तो आप उससे जाकर 50 रुपए उगा लीजिएगा. दैट इज तोलाबाजी. कट मनी है कि अगर कोई काम हो रहा है, सरकार काम करवा रही है, पंचायत का काम है, कुछ है, जो भी है, उसमें जो ठेका जिसको मिल रहा है, रास्ता बनाने का, ड्रेन बनाने का, टैप लगाने का, आप उससे उसका जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है, उसका एक परसेंटेज आप उससे निकाल लीजिएगा, रंगदारी टैक्स जिसे कहते थे. सो दैट वॉज कट मनी. एंड देन यू हैड सिंडिकेट्स. आप घर बना रहे हैं तो आपको अपना ईंटा, बालू, सीमेंट, लोहा पार्टी के लोगों से खरीदना पड़ेगा, और उन्हीं के रेट पर खरीदना पड़ेगा, उनका जो ब्रांड है, उनका जो भी है, वही लेना पड़ेगा, आपका कोई इसमें ऑप्शन नहीं है. या आप अपना घर बेच रहे हैं, समझिए आपके पास मकान है जिसका वैल्यू 10 करोड़ है, वो लोग आकर बोलेंगे, सिंडिकेट कहेगी, जी ये मकान हम लोग तय करेंगे, आप कितने में बेचोगे, किसको बेचोगे, और 1 करोड़ का बिकवाएंगे, बाकी 9 करोड़ से वो लोग आधा 4.5 करोड़ अपने जेब में ले लेंगे.
1: सो एन एब्सोल्युटली एक्सप्लॉइटेटिव,
0: इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट, इट वाज अ मॉन्यूमेंटल, क्या कहें, इट वाज अ फैक्ट्री ऑफ करप्शन, इट वाज एन इंडस्ट्री ऑफ करप्शन, इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट.
1: एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी. अपने विक्ट्री स्पीच में प्रधानमंत्री ने May 4 को एक बात का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि इंडिया की जो गोल्डन एज जब थी तो 3 भाग हमारे देश के उस गोल्डन एज के पिलर्स थे, अंग, बंग और कलिंग. तो अंग मतलब बिहार पहले भाजपा की विक्ट्री में आ चुका था, उसके बाद ओडिशा भाजपा जीत चुकी थी, और अब बंगाल की बारी थी, वो अब May 4 को रिजल्ट में हो गया. तो कितना इम्पोर्टेंट आप इस स्टेटमेंट को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करना है तो ये 3 भागों को विकसित करना जरूरी है, क्योंकि ये पिछड़ गए हैं भारत की विकास यात्रा में.
0: ये बात सही है, और अंग बंग कलिंग जो आप कह रहे हैं, बट उसमें आप असम को भी जोड़िए, जो अपने जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको भी जोड़िए. और जब तक ईस्ट में डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक ईस्ट की इकोनॉमिक कहानी एक कॉम्पिटिटिव स्टोरी नहीं बनेगी, तब तक भारत अपने आप को विकसित भारत नहीं कह पाएगा. अगर आप भारत के मानचित्र को देखें, वेस्ट इंडिया काफी डेवलप्ड है, साउथ इंडिया भी काफी डेवलप्ड है, ईस्ट इंडिया बस एक ही जगह रह जाता है जहां पर अभी तक कुछ खास काम नहीं हो पाया. मिडिल इंडिया, आप अगर मध्य प्रदेश को देखें, मध्य प्रदेश की जो रिकवरी स्टोरी है, बीमारू प्रदेश से आज कहां पहुंच गई है. अगर आप छत्तीसगढ़ को देखें, नया प्रदेश है और इतनी डिप्राइव्ड जोन थी कि उसको अलग स्टेट बनाना पड़ा, आज छत्तीसगढ़ कहां पहुंच गया, और वेस्ट बंगाल वहीं का वहीं पड़ा रह गया. तो हमें आगे का देखना पड़ेगा, एंड वेस्ट बंगाल कैनॉट जस्ट बी अ पोटैटो इकोनॉमी. That we produce the country's most largest amount of potatoes.
1: Like you heard Kanchan Gupta ji, that the destiny of India is inextricably linked to the destiny of Bengal, because you would recall that it was from Bengal that the British also began experimenting with their divide and rule policy, because they realized very early that if they have to capture the soul of India, they must first break Bengal. So that's the importance of West Bengal to the fate and destiny of our country. Thanks for joining us, Kanchan ji. Thank you.
2: In this special program, you were listening to a discussion on West Bengal after BJP's historic mandate, governance, development and future priorities. Participants were Kanchan Gupta, senior journalist and political analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के वियो में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई जिम्मेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर कर रहे हमारे संवाददाता अंकित कुमार की एक रिपोर्ट।
1: इस सम्मेलन में भारत की मौजूदगी पूरी तरह रणनीतिक है। कई G7 अर्थव्यवस्थाएं जिस तरह से बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों और सप्लाई चेन की चुनौतियों का सामना कर रही हैं, वे अब भारत को सिर्फ एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीकी नवाचार के लिए एक बेहद भरोसेमंद और आधारभूत भागीदार के रूप में उभरा है। भारत के दृष्टिकोण से यह G7 शिखर सम्मेलन अपने राष्ट्रीय हितों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का एक अहम अवसर है। नई दिल्ली का मुख्य जोर व्यापार, नवाचार और मजबूत सप्लाई चेन में गहरे सहयोग पर है, और यह ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया सक्रिय रूप से विश्वसनीय आर्थिक भागीदारों की तलाश कर रही है।
0: शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम

0: भी है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह के दौरान कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरूआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स EFR का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की है कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। मध्य भारत की यह पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा कि यह दावा निराधार है। इकाई ने कहा कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से संचालित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। मौसम विभाग ने कल उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, कराईकल के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के 400 से अधिक शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत की पहली बार एकमात्र तलवारबाज ओलंपिक खिलाड़ी CA भवानी देवी की अगुवाई में 24 सदस्यीय भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi today participated in the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the ongoing G7 summit in Evian, France. External Affairs Ministry informed that during the meeting, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. Mr. Modi said that the world should move from donor-recipient to partnerships based on solidarity and equality. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Maake Naam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family. Earlier today, the Prime Minister arrived in Evian on a 2-day visit to participate in the summit, which got underway yesterday. After his arrival in Evian, Mr. Modi in a social media post said that he is looking forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues.

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कनाडा और ब्रिटेन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। ईरान ने कहा, अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में केवल अस्थायी सीट को बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज किया, इसे विफलता की ओर बढ़ता कदम बताया। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहल पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त ऋण तंत्र के लिए नियम अपनाए। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान आज एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण विषय पर आयोजित इस बैठक में G7 देशों, साझेदार देशों तथा विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल

0: शामिल हुए। बैठक से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी और अन्य नेताओं का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर सामूहिक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि भारत और G7 देश वैश्विक विकास, सतत प्रगति और मानव कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की यात्रा पर आज एविया पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत बेहतर और समृद्ध भविष्य के लिए वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिक ब्यौरा प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर कर रहे हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन में भारत की मौजूदगी पूरी तरह रणनीतिक है। कई G7 अर्थव्यवस्थाएं जिस तरह से बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों और सप्लाई चेन की चुनौतियों का सामना कर रही हैं, वे अब भारत को सिर्फ एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीकी नवाचार के लिए एक बेहद भरोसेमंद और आधारभूत भागीदार के रूप में उभरा है। भारत के दृष्टिकोण से यह G7 शिखर सम्मेलन अपने राष्ट्रीय हितों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का एक अहम अवसर है। नई दिल्ली का मुख्य जोर व्यापार, नवाचार और मजबूत सप्लाई चेन में गहरे सहयोग पर है, और यह ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया सक्रिय रूप से विश्वसनीय आर्थिक भागीदारों की तलाश कर रही है। विश्व दर्पण के लिए एविया फ्रांस से अंकित कुमार।
0: G7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा और ब्रिटेन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कल होने वाली मुलाकात को सम्मेलन के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की संभावना है। प्रमुख औद्योगिक देशों के समूह G7 के एविया शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 वर्षों से अधिक समय से जारी रूस यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने का प्रयास किया। सम्मेलन के मेजबान और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी अब यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की भी सवेरे की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता केवल 75 मिनट के लिए ही हुई और निर्धारित समय से पहले ही समाप्त हो गई। यूक्रेन पर यह चर्चा अमेरिका द्वारा ईरान के साथ 3.5 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने संबंधी समझौते की घोषणा के तुरंत बाद हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे राष्ट्रपति से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे और अब यूक्रेन के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के अमेरिका पर पड़ने वाले प्रभावों को अपेक्षाकृत कम बताया, लेकिन संघर्ष में हुई बड़ी संख्या में मौतों पर दुख व्यक्त किया। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो इसके परिणाम स्वरूप भयानक तबाही मच सकती है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर खतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक में उन्होंने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल इस समझौते को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इसराइल की अपनी प्राथमिकताएं हैं और वो लेबनान में बफर जोन में तब तक बना रहेगा जब तक जरूरी होगा। इस बीच अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंडल ऐतिहासिक शांति समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर करने के लिए शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वथा ने

0: ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
1: UNSC reform would be grossly inadequate.
2: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे
1: हैं।
0: भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहल पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र JCM के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। ये पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत और जापान दोनों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC लक्ष्यों की प्राप्ति में भी योगदान देगा। दक्षिणी जिम्बाब्वे के ट्रायंगल में आज बस और ट्रेन की आपसी टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 25 घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना रेलवे क्रॉसिंग पर हुई जब एक मालगाड़ी बस से टकरा गई। जिम्बाब्वे राष्ट्रीय रेलवे के प्रवक्ता एंड्रयू कनाम्बुरा ने कहा कि बस चालक ने रेलवे क्रॉसिंग पार करने से पहले रुककर आने वाली ट्रेन की जांच नहीं की। उन्होंने कहा कि यह रेलवे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन था जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के 400 से अधिक शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत की पहली और एकमात्र तलवारबाज ओलंपिक खिलाड़ी CA भवानी देवी की अगुवाई में 12 महिला और 12 पुरुष खिलाड़ियों वाली भारतीय टीम प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 3:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के बीच खेले गए मुकाबले भी 1-1 से ड्रॉ रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कनाडा और ब्रिटेन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में केवल अस्थायी सीट को बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज किया, इसे विफलता की ओर बढ़ता कदम बताया। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am R. Raghu with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France. Holds bilateral meeting with heads of Canada and UK. Scheduled to meet US President tomorrow. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. New Delhi and Tokyo adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction. And India announced squad for Senior Asian Fencing Championship 2026. Prime Minister Narendra Modi today participated in the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the ongoing G7 summit in Avignon, France. External Affairs Ministry informed that during the meeting, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 10:31 और 17 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हर सिंगार का सदाबहार गीतों की ये महफिल जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं उन चुनिंदा रोमांटिक गीतों को जो आपके दिल के बेहद करीब है और इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त फिरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदा। तो आइए आज की इस बेहद खूबसूरत सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार का आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म चरस से। चरस फिल्म के इस नगमे से जिसमें आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब की और लता जी की, ये दोनों ही आवाजें ऐसी आवाजें हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गईं और हम सबके दिल में बस गई। इसी फिल्म का ये एक बहुत ही प्यारा नगमा जिसे लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने।

किया जा तेरी याद आई। ये नगमा था फिल्म चरस से और ये फिल्म आई थी 1976 में। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था रामानंद सागर साहब ने और साथ ही साथ उन्होंने इस फिल्म को लिखा भी था। उनके साथ थे वेदराही। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अजीत, अमजद खान, सुजीत कुमार वगैरह। और बात जब यादों की चली है तो याद तो उसकी आती है जिसे आप अपने दिल में बिठा कर रखते हैं, और ये वो शख्स बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा शख्स होता है जिसे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और इसीलिए उसकी याद बार बार आती ही आती है। और जब याद किसी की आती है तो फिर पुराने वक्त का भी जिक्र होता है, पुरानी बातों का भी जिक्र होता है, क्योंकि वो पुरानी यादें हैं, वो पुरानी बातें हैं जो आपके दिल के बेहद करीब थी। वो शख्स आपके दिल के बेहद करीब था जिसे आप मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। हाँ, वो बात अलग है कि अब वो भले ही आपके पास नहीं है और वो आपके करीब नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको अपने दिल में बिठा कर रखे हैं। और शायद ये इसलिए होता है जब आपको इश्क होता है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, और वो इसलिए आपके दिल का करीब में होता है क्योंकि वो आपको अपना समझता था, आप उसको अपना समझते थे। तो ऐसी ही बातों के साथ, ऐसे ही खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में, जिसमें सदाबहार नगमों के साथ हम हाजिर हैं आपके लिए बेहद खूबसूरत गीतों को लेकर। और अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, जिसका नाम है फर्ज। और यह फिल्म आई थी 1967 में। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था जितेंद्र, बबीता, सज्जन, आगा, राजा नाला, कालेश्वर राव, मोहन चोटी, मुकरी, कंचन, अरुणा ईरानी, डेविड अब्राहम वगैरह ने। इस फिल्म में एक बहुत ही प्यारा नगमा है जो अपने प्यार का इजहार कुछ अलग तरीके से करता है, भले ही सामने वाला उसे माने या ना माने। आवाजें हैं लता जी और मुकेश साहब की। तो आइए वही नगमा हम आपको सुनवाते हैं फिल्म फर्ज से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें

के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हर सिंगार में, सदाबहार गीतों की वो महफिल जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, बार बार इसके नगमों को पसंद करते हैं और बार बार गुनगुनाते भी हैं। तो ऐसे ही सदाबहार नगमों के साथ हम हाजिर हैं, सदाबहार रोमांटिक नगमों के साथ हाजिर हैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हर सिंगार में। तो हर सिंगार की इस महफिल में अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से जिसका नाम है इज्जत, और ये फिल्म आई थी 1968 में, जिसका निर्देशन किया था टी प्रकाश राव साहब ने, और इसमें मुख्य किरदार निभाने वालों में धर्मेंद्र जो इस फिल्म में डबल रोल में दिखे थे, और साथ थी तनुजा, जयललिता, बल्ला सानी, महमूद, लक्ष्मी छाया, मनमोहन कृष्ण, मोहन शेट्टी वगैरह। और खास बात यह है कि इस फिल्म में दक्षिण भारतीय अभिनेत्री जे जयललिता की एक पहली और एकमात्र हिंदी फिल्म थी जिसमें उन्होंने पूर्ण भूमिका निभाई थी। ये उनकी कुल मिलाकर दूसरी हिंदी फिल्म थी, इससे पहले उन्होंने मनमौजी में जो 1962 में आई थी मात्र 3 मिनट का रोल निभाया था और बहुत ही थोड़ी सी छोटी सी भूमिका के लिए वो दिखी थी। ये वही अभिनेत्री हैं जो बाद में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री भी बनी और जनता की सेवा भी की, और उन्हें वहां की जनता अम्मा कहकर संबोधित करती थी। तो ये वो फिल्म, बेहद खूबसूरत फिल्म थी। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब ने। आवाजें हैं हम सबके प्यारे मोहम्मद रफी साहब और लता जी की।

ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये नगमा था फिल्म इज्जत से, आवाजें थी मोहम्मद रफी साहब और लता जी की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में सदाबहार गीतों के साथ हम हाजिर हैं एक और बहुत ही खूबसूरत नगमा अगली फिल्म से, और वो फिल्म है थोड़ी सी बेवफाई। ये फिल्म आई थी 1980 में, इसका निर्देशन किया था इस्माइल श्रॉफ ने, और इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में राजेश खन्ना, शबाना आजमी, एके हंगल, उर्मिला भट्ट, गायत्री, सिद्धार्थ रे, पद्मनी कोलापुरे, देवेन वर्मा, प्रीति गांगुली, श्रीराम लागू, इस तरीके से बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म में बहुत ही अहम किरदार निभाया था, और ये फिल्म अपने आप में बेहद खूबसूरत फिल्म थी। इस फिल्म के गीतों को लिखा है गुलजार साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है खयाम साहब ने। तो आइए इसे फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आपके लिए हर श्रृंगार के इस दिलकश महफिल में।

0: किशोर कुमार साहब और लता जी की इन्हीं आवाजों के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। हर सिंगार से अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद आप सुनेंगे एक स्पेशल प्रोग्राम, और उसके पश्चात ठीक 11:40 पर हमारी और आपकी मुलाकात होगी गीत मेरे मन मीत में। तब तक के लिए इजाजत दें, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में

0: चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark Inam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. He emphasized that for international partnerships needed to prioritize dialogue and diplomacy.

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जनकल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
2: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
1: जी,
2: विश्वास और जनकल्याण
1: जी,
2: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जनकल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा। ये पहली बार हुआ है, वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
1: जी।
2: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में

0: आरसीपी प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
1: बिल्कुल।
0: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
1: जी,
0: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बताता है।
1: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
0: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
1: जी।
0: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
1: जी।
0: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
1: जी।
0: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अकाल सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो। तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर की दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पे बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, आप खुद भी ईवी में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
0: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है, जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है
1: जी।
0: अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है
1: जी।
0: लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं वहां पीएम 2.5

0: 5 और PM10, ये दो जो तत्व है, मतलब PM2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है जिसको एयर पार्टिकल कहते हैं वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है। व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में हैं उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहां के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है। व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: जी, प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है, और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना, कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना BP है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं, नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में केपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। पर अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
0: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
1: जी।
0: और नेचर का ये नियम होता है कि जहां प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सर्वाइव करते हैं
1: जी।
0: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टीमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता उसका भी हमने वापस से री इंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टीमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टीमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया, और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे, और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
0: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहां ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है, और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है। और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है, और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है, और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है, अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं, उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
1: जी।
0: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था जिसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहां पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता, है ना, पक्षियों को छांव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूं कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है। जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना, लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए, और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है।

0: धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
1: जी,
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे
1: जी?
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
1: जी।
0: आप एक बात बताइए
1: जी,
0: कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहां से आती है
1: जी।
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
1: जी?
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
1: जी,
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है
1: जी। हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
1: जी।
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नई एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इम्पोर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
0: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। पर मैं उम्मीद करता हूं कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
1: जी।
0: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
1: जी।
0: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल

0: यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज्यादा से ज्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं। तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:39:17 और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में हम हाजिर हैं सुनहरे दौर के उन बेहद खूबसूरत नगमों के साथ जो आपके दिल के बेहद करीब है। हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम युग यानी गोल्डन एरा आमतौर पर 1940 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक माना जाता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये दौर 1965 तक का है। इस दौर में कहानी, संगीत, अभिनय, सामाजिक विषयों और सिनेमाई कला ने नई ऊंचाइयां छुई। इसे हिंदी फिल्म उद्योग का सबसे प्रभावशाली और यादगार समय माना जाता है। उसी दौर से हम आपके लिए चुनकर लाए हैं कुछ चुनिंदा नगमों को जो बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारे हैं। उन्हीं नगमों में से एक नगमा सबसे पहले फिल्म चोरी चोरी से, और यह फिल्म आई थी 1956 में, जिसका निर्देशन किया था अनंत ठाकुर ने और जिसको लिखा था आगाजनी कश्मीरी ने। इस फिल्म ने मुख्य किरदार निभाया नरगेश, राज कपूर, प्राण, गोपी, भगवान, डेविड, मुकरी, राज मेहरा, जॉनी वॉकर, इंदिरा बंसल वगैरह ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है जिसको लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और बेहद खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए सुनते हैं इसी बेहद खूबसूरत फिल्म का ये बहुत ही प्यारा नगमा जिसे लिखा है दरअसल शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे साहब की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 16.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत में। और गीत मेरे मनमीत में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है और से बार बार आप सुनते भी हैं, सुनना भी चाहते हैं और गुनगुनाते भी हैं। ये वो दौर था जब बेहद खूबसूरत फिल्में बना करती थी और उनके नगमे उस फिल्म की पहचान हुआ करती थी और साथ ही साथ उस फिल्म के कलाकार बेहद महत्वपूर्ण माने जाते थे क्योंकि वो नाम ही था, वो कलाकार ही थे जो फिल्मों को हिट बनाते थे। उन्हीं दौर में उन्हीं कलाकारों ने अलग अलग तरीके से अपनी एक अलग पहचान बनाई जिसमें दिलीप कुमार साहब, राज कपूर, देवानंद, मधुबाला, नरगिस, मीना कुमारी, वहीदा रहमान वगैरह उस दौर में बहुत ही मशहूर रहे अपने फिल्मों के जरिए और अपने अभिनय के जरिए। और बात जब दिलीप कुमार साहब की चली है तो गहरी भावनात्मक अभिनय शैली के लिए वो प्रसिद्ध थे और इसीलिए उनको ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता था। तो आइए दिलीप कुमार साहब की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म नया दौर का अगला नगमा हम आपको सुनवाते हैं और ये फिल्म आई थी 1957 में। बी आर चोपड़ा साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म ने मुख्य किरदार निभाया था दिलीप कुमार, वैजयंतीमाला और अजीत, जीवन, जॉनी वॉकर, चांद उस्मानी, नासिर हुसैन वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है साहिद लुधियानवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है ओपी नैयर साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में।

फिल्म नया दौर के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फिरोज को अब दीजिए इजाजत, फिर होगी हमारी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर बल दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों तथा व्यापार सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में

0: आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि इन फैसलों से दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लगभग 4 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुवाहाटी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल को इस वर्ष की विश्व के सबसे सुंदर हवाई अड्डों की सूची में शामिल होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गर्व की बात है और यह इसकी बढ़ती वैश्विक पहचान को दर्शाता है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अफ्रीकी संघ की वर्चुअल शिखर बैठक में भाग लिया। बैठक में इबोला प्रकोप से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर चर्चा हुई। श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने अफ्रीका के प्रयासों के समर्थन के लिए $1 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भारत पहले ही 45 टन चिकित्सा सामग्री भेज चुका है और जरूरत के अनुसार आगे भी मदद देने को तैयार है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसियन शहर के पास स्थित बर्गिन स्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnership, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark Inam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvjan Hitaye, Sarvjan Sukhaye has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people, and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnership should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international laws was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. He emphasized that for international partnerships, it is needed to prioritize dialogue and diplomacy for ensuring peace and stability. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held a series of bilateral meetings with world leaders including Canadian Prime Minister Mark Carney, British Prime Minister Keir Starmer and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan on the sidelines of the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs said that during their meeting, Prime Minister Modi and his Canadian counterpart Mark Carney welcomed the positive momentum in India-Canada relations and reaffirmed their commitment to building a forward-looking strategic partnership. During his talks with British Prime Minister Keir Starmer, Mr. Modi said the past year had been outstanding

सरगोशी करती हुई हवाओं के बीच चांदनी में नहाई हुई इस रात में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आज अंजू आपके साथ, कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

मोहब्बत में न जाने कैसी अनहोनी हो गई, मोहब्बत में न जाने कैसी अनहोनी हो गई, और पता ही नहीं चला कभी मोहब्बत हो गई। यूं पलट कर देखा मुझे उसने, यूं पलट कर देखा मुझे उसने कि बिन मौसम ही ये बरसात हो गई।

खूबसूरत हैं आंखें तेरी, तू रात में जागना छोड़ दे। खूबसूरत हैं आंखें तेरी, तू रात में जागना छोड़ दे, देखना खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे।

देखो ना, आता नहीं था हमें इकरार करना, न जाने कैसे सीख गए प्यार करना। रुकते थे न दो पल कभी किसी के लिए, और न जाने कैसे सीख गए यूं लंबा इंतजार करना।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

हमारे जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है, हम उन्हें बता दें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ अंजू। चुप रहते हैं कि कोई खता ना हो जाए, चुप रहते हैं कि कोई खता ना हो जाए, हमसे कोई अपना रुसवा ना हो जाए। बड़ी ही मुश्किल से कोई अपना बना है,

दिल में रहकर दिल पर वार करते हो, क्यों ये सितम बार बार करते हो। तुम्हें पता है कितनी मोहब्बत है तुमसे, फिर भी औरों के लिए मुझे नजरअंदाज करते हो।

एहसास मोहब्बत के लिए तो बस इतना ही काफी है, एहसास मोहब्बत के लिए तो बस इतना ही काफी है कि तेरे बगैर भी मैं तेरे साथ ही रहती हूँ।

कहते हैं कि प्यार का असर जरा देर से होता है, और आपको लगता है कि हम कुछ नहीं सोचते आपके बारे में, पर हमारी तो हर बात में जिक्र ही आपका होता है।

कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 1:10 पर। फिर आपसे आपके साथ रहेंगे कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच सुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों और व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से भी मुलाकात की और दोनों देशों की पुरानी मित्रता को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ बैठक में व्यापार, वाणिज्य और भविष्य की प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देशभर की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एनसीआर के नियोजित और संतुलित विकास, परिवहन और संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच बेहतर समन्वय

समय हुआ है 1:11:03 और ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। तो चलिए आज चलते हैं गुजरे दौर के कुछ बहुत ही मधुर गीत सुनते हैं। मैं हूं अंजू आपके साथ, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अभी आपने बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म मधुमति से सुना, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। जरा सुनो कभी इन खामोशियों को भी, सुनकर देखो कभी इन खामोशियों को भी, सुनकर देखो तुम्हें पुकारता है मेरा दिल हर सांस के साथ।

0: देखो जरा, चांद भी हैरान है हमारी इस रात की रौनक को देखकर। चांद भी हैरान है हमारी इस रात की रौनक को देखकर, जो गुजर रही है चुपके से तेरे कांधे पर सर रखकर।
1: ये रातें, ये मौसम।

हर धड़कन में बस एक ही सवाल होता है, हर धड़कन में बस एक ही सवाल होता है कि न जाने क्यों ये दिल तेरे लिए ही बेकरार होता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

0: दिस इज स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 1:28:16। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने, मैं हूं आपके साथ अंजू।
1: तुम्हारे हाथों में मेहंदी रचेगी, तुम्हारी मुरादें भर आएंगी, तुम्हारे सपने सच्चे हो जाएंगे। उस दिन दीदी,

तुम मानो या ना मानो, पर तुम पर हक सिर्फ मेरा ही है। तुम मानो या ना मानो, पर तुम पर हक सिर्फ मेरा ही है, क्योंकि तुमसे ही शुरू होती है मेरी दुनिया और तुम्ही पर शुरू होता है मेरा सवेरा।

पहली बार देखा तो खो गए, बस एक पल में ही तुम्हारे हो गए। दिल ने धड़कना तुमसे ही सीखा, तुम मिले और हम मुकम्मल हो गए।

सूनी पड़ी है राहें और उदास है आंगन, अब तो घर आ जाओ, तरस रहा है मन। दीवारों को भी अब तुम्हारी याद सताती है, हवा भी आकर बस तुम्हारा ही पता पूछती है।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम् यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों और व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की और दोनों देशों की पुरानी मित्रता को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ बैठक में व्यापार, वाणिज्य और भविष्य की प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ मौसम के लिए देशभर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वो जल्दबाजी में बुआई ना करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वो बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एनसीआर के नियोजित और संतुलित विकास, परिवहन और संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच बेहतर समन्वय पर भी विचार विमर्श किया गया। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक डिजिटल रूप से बदले गए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल पी आर शंकर ने नए सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की नियुक्ति की आलोचना की है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो एआई की मदद से तैयार किया गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आर एस रघु। Prime Minister Narendra Modi addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark Naam campaign. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnership should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held a series of bilateral meetings with world leaders, including Canadian Prime Minister Mark Carney, British Prime Minister Keir Starmer, and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan on the sidelines of the G7 summit. Ministry of External Affairs said that during their meeting, Prime Minister Modi and his Canadian counterpart Mark Carney welcomed the positive momentum in India-Canada relations and reaffirmed their commitment to building a forward-looking strategic partnership. During his talks with British Prime Minister Keir Starmer, Mr. Modi said the past year had been outstanding for India-UK relations. In a social media post, he said the trade deal between the two countries has opened several new avenues for economic cooperation. Prime Minister Modi also met UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. In a social media post, Mr. Modi said the two leaders discussed India-UAE cooperation across various sectors and explored ways to further strengthen the comprehensive strategic partnership. Prime Minister Modi also met President of Kenya, William Ruto. Mr. Modi said that India and Kenya share a long-standing partnership anchored in the aspirations of the Global South. He reiterated that both India and Kenya remain committed to working together for the well-being of the people. Prime Minister Modi also met Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi. Prime Minister Modi reaffirmed that India deeply values its long-standing friendship with Egypt. Mr. Modi also met Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Prime Minister Modi emphasized that India and Japan will continue to deepen ties in diverse sectors with a priority on trade and investment. He also met South Korean President Lee Jae-myung. He said both the nations are working together in trade, commerce and many other futuristic sectors. Today, a key engagement during the summit will be PM Modi's meeting with US President Donald Trump. UN and Home Minister Amit Shah yesterday chaired a review meeting on the rehabilitation of slums in New Delhi. During the meeting, Mr. Shah said the Delhi slum and JJ cluster rehabilitation and relocation

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है कार्यक्रम रात सुरमई का और स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि रात के 2:11:19 हो चुके हैं। मैं हूं अंजू आपके साथ और लेकर आई हूं कार्यक्रम रात सुरमई। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

बस यूं ही आंखें चार हुई थी उनसे, बस यूं ही आंखें चार हुई थी उनसे। क्या पता था कि इसी को लोग मोहब्बत कहते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

तेरी यादों के साए में कट रही है ये जिंदगी, तेरी यादों के साए में कट रही है ये जिंदगी। हम तो आज भी खड़े हैं उसी मोड़ पर तेरे इंतजार में।

क्या बताऊं तुम्हें कि ये मोहब्बत कितनी गहरी है तुमसे, क्या बताऊं तुम्हें कि ये मोहब्बत कितनी गहरी है तुमसे, बस बस इतना समझ लो कि सांसों की टूर बस तुम तक ही ठहरी है।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आगे का सफर आपके साथ रहेंगी अर्चना बिसारिया, कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूंगी, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों और व्यापार सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ मौसम के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स EFR का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इसमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अफ्रीकी संघ की वर्चुअल शिखर बैठक में भाग लिया। बैठक में इबोला प्रकोप से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर चर्चा हुई। श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने अफ्रीका के प्रयासों के समर्थन के लिए $1 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में NCR के नियोजित और संतुलित विकास, परिवहन और संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा परिषद और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 24 जून तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के अनुसार अब हर वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और नियमित कक्षाएं 25 जून से शुरू होंगी। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा।

3:11 होने को है। दोस्तों, आपने इस वक्त ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और इस समय आप सुनते हैं कार्यक्रम हमराही। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपसे कहूं कि चलो आपको इस समय हिमालय की वादियों में ले चलते हूं। सुनने में शायद आपको कुछ अटपटा लगेगा, लेकिन दोस्तों, संगीत एक ऐसा माध्यम है जहां मीलों की दूरी मिनटों में तय हो जाती है। जी हां दोस्तों, आपको सुनवाते हैं कश्मीर की कली फिल्म का वो गीत जिसे सुनते ही आंखों में आपको नजर आएंगे बर्फीले पहाड़, घाटी और सेबों के बागान, बादलों के बीच मुस्कुराते चेहरे। ये वही गीत है जो फिल्मों में उस पुराने जमाने की खुशबू लेकर आपके सामने आ जाते हैं। यकीन के साथ कह सकती हूं कि ये गीत आपको भी ताजगी से भर देगा, और अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो खुद ही सुन लीजिए ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों कहते हैं प्यार का इजहार जब मासूमियत और सादगी के लफ्जों में ढल जाए तो वो सीधा दिल तक पहुंचता है। कुछ ऐसा ही एहसास लेकर आया है फिल्म नाखुदा का ये बेहद खूबसूरत नगमा, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने। ये सिर्फ एक प्रेम गीत नहीं बल्कि उन अनकहे जज्बातों की मीठी दस्तक है जो किसी खास के आने से पूरी दुनिया को और भी हसीन बना देती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज

0: सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों 3:30 हुए हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरी यानी अर्चना बिसारिया के साथ। दोस्तों, कुछ आंखें सिर्फ देखती नहीं बल्कि दिल की गहराइयों तक उतर जाती हैं, और जब मोहब्बत का एहसास उन आंखों में छलकने लगे तो शब्दों की जरूरत ही कहाँ रह जाती है। ऐसी ही एक दिलकश भावनाओं से सजा है फिल्म धनवान का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि जब प्यार दिल में उतरता है तो तारीफ भी शायरी बन जाती है और हर मुस्कान किसी गीत का मुखड़ा। फिल्म धर्मात्मा का ये सदाबहार नगमा भी कुछ ऐसे ही मीठे एहसासों को अपने साथ लेकर आया है। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में इस गीत को हर दौर के श्रोताओं ने अपना चहेता बना लिया है। ये गीत खूबसूरत भावना का उत्सव है, जब किसी अपने की मौजूदगी जिंदगी को और भी रंगीन बना देती है।

दोस्तों, प्यार की सबसे प्यारी बात यही है कि वो बिना किसी शोर के चुपके से दिलों को एक ऐसे बंधन में बांध देता है जिसकी डोर विश्वास, अपनापन और मधुर एहसासों से बनी होती है। फिल्म धरती कहे पुकार की ये ऐसा ही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे आवाज दी है मुकेश और लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मोहब्बत की दुनिया में कुछ बातें अल्फाजों से नहीं बल्कि खामोशियों से कही जाती है। कभी निगाहें बोलती हैं, कभी धड़कने और कभी दिल की खामोश आवाजें। आइए अब आपको सुनवाते हैं ऐसा ही एक गीत जिसे हमने लिया है फिल्म फासले से, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

दोस्तों, प्यार की कहानियां हर दौर में लिखी जाती हैं, लेकिन हर प्रेम कहानी का अपना एक रंग, अपना एक अंदाज होता है।

दोस्तों, मोहब्बत की दुनिया में कभी कभी एक पुकार ही काफी होती है, दिल से निकली हुई एक आवाज जो सीधे किसी अपने के दिल तक पहुंच जाती है। और जब इस एहसास को सुरों का साथ मिलता है तो एक ऐसा नगमा जन्म लेता है जो बरसों बाद भी उतना ही ताजा लगता है। कुछ ऐसा ही है प्रोफेसर फिल्म के इस गीत में, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

दोस्तों, प्रेम केवल आज का नहीं होता, ये समय की सीमाओं से परे एक ऐसा एहसास है जो जन्म जन्मांतर तक दिलों को जोड़ने का विश्वास देता है। जब दो आत्माएं एक दूसरे से गहरे जुड़ जाती हैं, तो मिलन की कहानी केवल एक जीवन की नहीं रह जाती। इसी भाव को बेहद खूबसूरती से अभिव्यक्त किया है फिल्म मिलन के इस गीत ने, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की।

0: G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों और व्यापार सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की और दोनों देशों की पुरानी मित्रता को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। वहीं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ बैठक में व्यापार, वाणिज्य और भविष्य की प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और एनएमबीए पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहलों का भी अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियांग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने बताया कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। इस आयोजन के साथ ही 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक समारोह का शुभारंभ भी होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Evian, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Maak Inaam campaign. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people, and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held a series of bilateral meetings with the world leaders, including Canadian Prime Minister Mark Carney, British Prime Minister Keir Starmer, and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan on the sidelines of G7 summit. Ministry of External Affairs said that during the meeting, Prime Minister Modi and his Canadian counterpart Mark Carney welcomed the positive momentum in India-Canada relations and reaffirmed their commitment to building a forward-looking strategic partnership. During his talks with British Prime Minister Keir Starmer, Mr. Modi said, "The past year had been outstanding for India-UK relations." In a social media post, he said, "The trade deal between the two countries has opened several new avenues for economic cooperation." Prime Minister Modi also met UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. In a social media post, Mr. Modi said, "The two leaders discussed India-UAE cooperation across various sectors and explored ways to further strengthen the comprehensive strategic partnership." Mr. Modi also met President of Kenya William Ruto. Mr. Modi said that India and Kenya share a long-standing partnership anchored in the aspirations of the Global South. He reiterated that both India and Kenya remain committed to working together for the well-being of the people. Prime Minister Modi also met Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi. He reaffirmed that India deeply values its long-standing friendship with Egypt. Mr. Modi also met Japanese Prime Minister Sanae Takayuki. He emphasized that India and Japan will continue to deepen ties in diverse sectors with a priority on trade and investment. Prime Minister Modi also met South Korean President Lee Jae-myung. He said that both nations are working together in trade, commerce, and many other futuristic sectors. Today, a key engagement during the summit will be PM Modi's meeting with US President Donald Trump. Union Home Minister Amit Shah yesterday chaired a review meeting on the rehabilitation of slums in New Delhi. During the meeting, Mr. Shah said, "Delhi Slum and JJ Cluster Rehabilitation and Relocation Policy 2026 has been finalized and directed the Delhi government to notify it at the earliest." India Meteorological Department IMD has forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh for today. Iran yesterday said that the deal to end the war with the United States would also require Israel to withdraw from Lebanon. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Israel's continued occupation of southern Lebanon would violate the Memorandum of Understanding reached between the United States and Iran. And that is the end of this news bulletin.

4:10:57 हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप लोगों ने ट्यून किया हुआ है। और दोस्तों, ये वक्त है कार्यक्रम अरुणिमा का, और आज इस अरुणिमा कार्यक्रम को पेश कर रही हूं मैं, आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। एक बार फिर से आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी के सफर में ऐसे भी पल आते हैं जब राहें धुंधली लगने लगती हैं और मन को किसी सहारे, किसी विश्वास की जरूरत होती है। लेकिन सच तो यह है कि आशा और विश्वास ही वो दीपक है जो अंधेरों में भी मंजिल का रास्ता दिखाते हैं। आपको सुनवाते हैं सुबह फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। ये गीत सिर्फ रिश्तों की बात नहीं करता, बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में उम्मीद और विश्वास का होना कितना जरूरी है। जब हम अपने सपनों पर भरोसा रखते हैं, जब परिस्थितियां कठिन होने पर भी मन में आशा की लौ जलाए रखते हैं, तब कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती।

दोस्तों, प्यार सिर्फ दो रिश्तों के बीच का रिश्ता नहीं होता, बस बल्कि जीवन को खूबसूरती जीने का एक नजरिया भी है। जो इंसान अपने काम से प्यार करता है, अपने सपनों से प्यार करता है, लोगों से प्यार करता है, वही जीवन के हर रंग को खुलकर महसूस कर पाता है। अब आपको सुनवा रहे हैं संगम फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, आवाज मुकेश और लता मंगेशकर की है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, जिंदगी हर दिन एक जैसी नहीं होती। कभी खुशियों की धूप होती है तो कभी चुनौतियों की छांव। लेकिन इस बदलते मौसम के बीच अगर कोई चीज हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है तो वो है एक मुस्कान और सकारात्मक सोच। आइए अब आपको सुनवाते हैं ऐसा ही एक गीत जिसे गाया है जगजीत सिंह ने। ये गीत हमें यही संदेश देता है कि परिस्थितियां जैसी भी हों, जीवन से प्यार करना और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना ही हमारी असली जीत है। क्योंकि मुस्कुराहट केवल हमारे चेहरे की पहचान नहीं बल्कि हमारे आत्मविश्वास और उम्मीद का आईना भी होती है।

4:34 और 24 सेकंड हुए हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। दोस्तों, जीवन की चुनौतियों से दूर भाग जाना कभी समाधान नहीं होता। असली साहस तो परिस्थितियों का सामना करने में ही है, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कठिन रास्तों से घबराते नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं।

जिंदगी के सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब मन सवालों से भर जाता है। कभी हालात समझ नहीं आते, कभी किस्मत की उलझने हमें परेशान करती हैं। लेकिन इन्हीं सवालों के बीच इंसान अपने भीतर झांकना भी सीखता है और जीवन के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश भी करता है।

जी हाँ दोस्तों, जहां उलझने होंगी वहां समाधान भी जरूर निकलेगा। दोस्तों, हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जीवन का सफर चलता रहता है। कभी परिस्थितियां हमारे परीक्षा लेती हैं, तो कभी अनुभव हमें नई समझ देकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, विश्वास और धैर्य बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है।

कहते हैं जीवन की खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और प्रेम सहानुभूति तथा सद्भाव से जीवन वास्तव में समृद्ध बनता है। जब हम दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी तलाशना सीख जाते हैं तब जीवन का हर पल और अधिक अर्थ

होता है। सफलता केवल ऊंचाइयां छूने में नहीं बल्कि मन की शांति और संतोष पाने में भी है, और ये संतोष हमें मिलता है सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म और रिश्तों में अपनापन बनाए रखने से। तो आइए जीवन के इसी सुंदर संदेश को अपने दिल में उतारते हुए सुनते हैं आशा की भोसले की आवाज में ये।

तो कार्यक्रम में चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि जिंदगी का दूसरा नाम ही है चलते रहना। राह में कभी खुशियां मिलेंगी, कभी मुश्किलें, तो कभी सफलता साथ देगी तो कभी असफलता। कुछ नया सिखाकर आगे बढ़ने की ये सब चीजें हमें प्रेरणा देती रहेंगी। लेकिन जो रुक गया वो मंजिल से दूर हो गया, और जो चलता रहा उसने एक दिन अपने सपनों को साकार कर दिया। आज अरुणिमा कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे यानी अर्चना बिसारिया को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टरों के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केन्द्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने कहा कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों से जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। NTA ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। इस आयोजन के साथ ही 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक समारोह का शुभारंभ भी होगा। फीफा विश्व कप 2026 में फ्रांस ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप आई मुकाबले में फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। वहीं लॉस एंजलिस में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ। मियामी में उरुग्वे और सऊदी अरब ने 1-1 से ड्रॉ खेला, जबकि सेटल में खेले गए ग्रुप जी मुकाबले में बेल्जियम और मिस्र की टीमें भी 1-1 की बराबरी पर रहीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आर एस रघु। The French city of Evian remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors, while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Besides his meeting with the U.S. President, Prime Minister Modi is also

सुबह के 5:11 होने को हैं दोस्तों। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ अर्चना।

ना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सावन की घटा फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी।

0: दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे आवाज दी है अनूप जलोटा और लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे गाया है आशा भोसले और दिलराज कौर ने। फिल्म का नाम है सत्ते पे सत्ता।